0: आजादी को भी जिंदा रखता है।
1: श्रोताओं, सत्यदेव दुबे सिर्फ पर्दे के पीछे से धागे हिलाने वाले सूत्रधार नहीं थे, उनके भीतर एक ऐसा अभिनेता भी छुपा था जो मंच की खुशबू पाते ही जाग उठता था। अक्सर जब थिएटर की रिहर्सल खत्म होती या शाम को दोस्तों और शागिर्दों की महफिल जमती तो लोग उनसे कुछ सुनाने की जिद कर बैठते। दुबे जी मुस्कुराते, उनके चेहरे की कड़कड़ाहट पल भर में गायब हो जाती और उनकी आंखें किसी गहरे दार्शनिक सोच में डूब जाती। वे हमेशा धर्मवीर भारती के अंधा युग के उस पात्र की पंक्तियां सुनाते जो उनके दिल के सबसे करीब था, अश्वत्थामा, एक ऐसा पात्र जो भटक चुका था, जो कुंठित था, लेकिन जिसके भीतर सत्य को जानने की छटपटाहट थी। जब दुबे जी अपनी बुलंद और भारी आवाज में हाथों को हवा में लहराते हुए ये संवाद बोलते तो कमरे में बैठा हर शख्स अपनी सुध-बुध खो बैठता था।
0: यह मेरा नहीं, यह उस युग का अंधापन है जिसमें हम सब जीते हैं, जिसमें हम सब मरते हैं। मैंने तो सिर्फ उस प्रतिशोध को चुना जो इस समूचे ब्रह्मांड के माथे पर लिखा था। अब न कोई न्याय है, न कोई धर्म है, सिर्फ एक अंतहीन रात है और मैं हूं। इन पंक्तियों को बोलते हुए उनकी आवाज में जो दर्द, जो गुस्सा और जो दार्शनिक ठहराव होता था, वह सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता था। उन्हें ऐसे जटिल पात्र बहुत पसंद थे जो सफेद या काले नहीं होते थे, बल्कि इंसानी स्वभाव के भूरे रंगों को दर्शाते थे। वह कहते थे कि नाटक का असली मजा तब है जब वह आपको अंदर से बेचैन कर दे। आज भी जब थिएटर की पुरानी गलियों में अंधा युग का जिक्र होता है तो लोगों के कानों में अश्वत्थामा के रूप में गूंजती सत्यदेव दुबे की वह बुलंद आवाज आज भी सजीव हो उठती है।
1: इसी वैचारिक आजादी और कड़े अनुशासन की पाठशाला से दुबे जी ने अभिनेताओं की एक ऐसी अद्वितीय पौध तैयार की जो आगे चलकर न केवल थिएटर के स्तंभ बने बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और दिग्गज अभिनेता कहलाए। उनके तराशे हुए हीरो में अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, रत्ना पाठक शाह, अमोल पालेकर और सतीश कौशिक जैसे नाम शामिल थे जिन्होंने अभिनय की परिभाषा ही बदल दी। रंगमंच की इसी धुरी पर काम करते हुए 70 के दशक में सत्यदेव दुबे की मुलाकात मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल से हुई। ये मुलाकात भारतीय समानांतर सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। दोनों की कलात्मक ट्यूनिंग इतनी बेहतरीन थी कि श्याम बेनेगल के शुरुआती और सबसे प्रभावशाली फिल्मों की आत्मा दुबे जी के शब्द ही बने। दुबे जी ने बेनेगल की कालजयी त्रयी, अंकुर, निशांत और मंथन के संवाद और पटकथा लिखी जिन्होंने भारतीय सिनेमा को यथार्थवाद का एक नया चेहरा दिया। इसके बाद 1977 में आई फिल्म भूमिका के लिए तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। उन्होंने बेनेगल की फिल्म कलयुग की पटकथा पर भी काम किया था।
0: शब्दों का जादू बिखेरने के साथ साथ दुबे जी ने पर्दे पर अपनी अदाकारी का हुनर भी दिखाया। उन्होंने श्याम बेनेगल की ही फिल्म निशांत में एक पुजारी की बेहद जीवंत और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने गोविंद निहलानी की मशहूर फिल्म आक्रोश में भी अभिनय किया। इतना ही नहीं, कला सिनेमा से इतर उन्होंने मुख्य धारा के सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने साई पराजपे की बेहद लोकप्रिय फिल्म चश्मे बद्दूर के तीखे और मजेदार संवाद लिखे और निर्देशक उमेश मेहरा की फिल्म हमारे तुम्हारे की पटकथा भी तैयार की। सत्यदेव दुबे ने श्याम बेनेगल की टीवी सीरियल भारत एक खोज में चाणक्य और फिल्म निशांत में पुजारी की भूमिका निभाई। पटकथा लेखन से लेकर कैमरे के सामने अभिनय करने तक सिनेमा का ये पूरा सफर उनके बहुमुखी और अक्खड़ कलाकार होने का सबसे बड़ा प्रमाण था। मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल सत्यदेव दुबे को भारतीय कला जगत का एक अद्वितीय और अपरिहार्य स्तंभ मानते थे। वे अक्सर दुबे जी के बारे में कुछ बेहद खास बातें कहा करते थे। बेनेगल अक्सर तारीफ करते थे कि दुबे जी के पास अभिनेताओं को तराशने की एक जादुई कला थी। अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी जैसे दिग्गज कलाकारों को बेनेगल ने अपनी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं दी। वे सब दुबे जी की थिएटर वर्कशॉप की ही देन थे। बेनेगल मानते थे कि दुबे जी जिस अभिनेता पर हाथ रख देते थे वे सोना बन जाता था। श्याम बेनेगल दुबे जी के अक्खड़पन और उनकी फकीरी के मुरीद थे। वे कहते थे कि दुबे एक ऐसे विरल कलाकार थे जिन्होंने कभी पैसों या शोहरत के लिए अपनी कला से समझौता नहीं किया। वे सिनेमा में काम जरूर करते थे लेकिन उनका दिल हमेशा थिएटर के लिए ही धड़कता था। सीधे शब्दों में कहें तो श्याम बेनेगल के लिए सत्यदेव दुबे सिर्फ एक सह लेखक या दोस्त नहीं थे, बल्कि वे उन्हें एक ऐसा क्रिएटिव पार्टनर और थिएटर गुरु मानते थे जिसने भारतीय सिनेमा और रंगमंच को सच बोलना सिखाया।
1: श्रोताओं, वो पूरी तरह से एक फकीर और सन्यासी की तरह जिए, जिनका एकमात्र धर्म और परिवार सिर्फ और सिर्फ रंगमंच ही था। दुबे जी ने जीवन के आखिरी पड़ाव तक नए लड़कों और लड़कियों को तलाशने और उन्हें तराशने का काम कभी बंद नहीं किया। मुंबई का प्रसिद्ध पृथ्वी थिएटर उनका दूसरा घर बन चुका था। वे घंटों वहां के कैफे में ही बैठे रहते थे, जहां कोई भी नया लड़का स्क्रिप्ट लेकर उनके पास आ सकता था। वो बिना किसी फीस के सिर्फ चाय की चुस्कियों पर नए निर्देशकों को नाटक की बारीकियां सिखाते थे। उन्होंने हमेशा नए और युवा नाटककारों को मंच दिया, क्योंकि उनका मानना था कि थिएटर को जिंदा रखने के लिए नए खून और नए विचार का आना बेहद जरूरी है।
0: थिएटर और फिल्मों के अलावा दुबे जी ने जन माध्यमों की ताकत को भी बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने धर्मवीर भारती के अंधा युग को न केवल मंच पर उतारा, बल्कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी उसके कई प्रयोग किए। उन्होंने ध्वनि और संवाद के उतार चढ़ाव का ऐसा ताना बाना बुना कि बिना दृश्यों के भी सिर्फ आवाज के दम पर दर्शकों के सामने महाभारत के युद्ध का सन्ना

0: पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद भारतीय समानांतर सिनेमा को अपनी लेखनी और संवादों से एक नया और यथार्थवादी धरातल देने के लिए साल 1977 में आई उनकी प्रसिद्ध फिल्म भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके जीवन भर के संघर्ष, अमूल्य योगदान और एक महान मेंटोर के रूप में उनके कद को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें बेहद प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान से भी विभूषित किया। आखिरकार उनके इसी फकीराना जज्बे और कलात्मक महानता को सलाम करते हुए साल 2011 में भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से अलंकृत किया, जो उनके जीवन की कला यात्रा पर राष्ट्र की ओर से एक गौरवशाली मोहर थी।
1: दुबे जी मुंबई के एक बेहद साधारण से किराए के कमरे में किताबों और नाटकों की स्क्रिप्ट के बीच अपनी फकीरी में मस्त थे। वे अक्सर अकेले ही मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करते या पृथ्वी थिएटर के बाहर एक कप चाय हाथ में थामे घंटों बैठे रहते। उनके जीवन में ना तो पैसों का लालच था और ना ही किसी सांसारिक सुख की चाह। उनका कोई पारंपरिक परिवार नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी कला को ही अपनी संतान और अपना संसार मान लिया था। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता, तो उन्होंने हंसकर कहा था, जिसके पास शब्दों का मेला हो और मंच की रोशनी हो, वो भला अकेला कैसे हो सकता है। उनका ये निश्चल समर्पण दिखाता है कि वे सिर्फ नाटक करते नहीं थे, वे खुद में एक जीवंत नाटक थे। सत्यदेव दुबे ने जीवन के अंतिम क्षणों तक अपनी कलात्मक ऊर्जा और जीवंतता को बनाए रखा, लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव पर उनका शरीर थकने लगा था। साल 2011 के सितंबर महीने में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसके बाद वे कोमा में चले गए। इसके बाद अगले कुछ महीनों तक मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चलता रहा। आखिरकार अपनी बीमारी से एक लंबा और संजीदा संघर्ष लड़ने के बाद 25 दिसंबर 2011 को 75 वर्ष की आयु में मुंबई के टोपीवाला राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज और BYL नायर चैरिटेबल अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन का कारण लंबे समय से चल रही बीमारी और दिल का दौरा पड़ना था। उनके जाने से भारतीय रंगमंच का एक बेहद प्रखर, निडर और स्वर्णिम युग हमेशा के लिए समाप्त हो गया, लेकिन अपनी कला और विचारों के रूप में वे आज भी हर रंग कर्मी की चेतना में जीवित हैं। अभिनेता अनुपम खेर ने कहा, हिंदी रंगमंच के दिग्गज सत्यदेव दुबे अब हमारे बीच नहीं रहे। रंगमंच के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता अद्भुत थी। यह एक बड़ी क्षति है, उनकी आत्मा को शांति मिले। फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने कहा, थिएटर जगत के दिग्गज सत्यदेव दुबे का देहांत हो गया। साथ साथ घूमने फिरने के दिनों की प्यारी यादें मुझे घेर लेती हैं। अलविदा दुबे जी, ढेर सारा प्यार। निर्देशक केन घोष ने कहा, सत्यदेव दुबे के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उन्होंने बड़ी विनम्रता से इश्क विश्क की नई कास्ट के साथ एक एक्टिंग वर्कशॉप आयोजित की थी। शांता गोखले उन्हें याद करते हुए कहती हैं
0: कि सत्यदेव दुबे को बहस छेड़ना बहुत पसंद था और उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब होती थी जब वो युवा रंगमंच कलाकारों को अपने विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करने के बजाय प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित कर पाते थे। आधी सदी से भी अधिक समय में उन्होंने हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी में 100 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया, युवा नाटककारों की खोज की और उन्हें अपनी रचनाओं को फिर से लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही अभिनेताओं की कई पीढ़ियों को प्रशिक्षित भी किया। आप हमेशा कलाकारों और अभिनेताओं के दिलों में मशाल बनकर जलते रहेंगे।

0: अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने सत्यदेव दुबे को अपना थिएटर गुरु माना है। वो अक्सर याद करते हैं कि कैसे दुबे जी ने उन्हें मंच पर बिना डरे संवाद बोलना और अपनी ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल करना सिखाया। उन्होंने दुबे जी को एक निडर, स्पष्टवादी और रंगमंच के प्रति जुनूनी व्यक्ति बताया।
1: सत्यदेव दुबे अक्सर कहा करते थे कि एक सच्चे अभिनेता का काम केवल संवाद बोलना या चेहरे पर मुखौटा लगाना नहीं है। उनके लिए अभिनय एक आत्मसमर्पण था। वे कहते थे, एक अच्छा अभिनेता वह नहीं है जो मंच पर आकर खुद को दिखाए, बल्कि वह है जो मंच पर आकर अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा दे और उस पात्र को अपने भीतर जीने दे। अभिनेता का शरीर और उसकी आवाज सिर्फ एक माध्यम है, असली खेल तो उसकी आत्मा की ईमानदारी का है। सत्यदेव दुबे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारतीय कला जगत उनके जिक्र के बिना हमेशा अधूरा रहेगा। वे एक ऐसे फकीर थे जिन्होंने कभी महलों की चाह नहीं की, क्योंकि उनके हिस्से में मंच की वो जादुई रोशनी थी जो इतिहास बदल देती है। उन्होंने सिनेमा को दिग्गज अभिनेता और कालजयी शब्द दिए और हमें सिखाया कि कला कभी मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि समाज को झकझोरने के लिए होती है। तो श्रोताओं, कला कल्लोलिनी में आज इतना ही। अगले भाग में हम आपको फिर ऐसे ही महान शख्सियत से रूबरू कराएंगे। रंगमंच के कबीर फिल्मकार और नाटककार सत्यदेव दुबे जी पर चर्चा आपको पसंद आई होगी। अब समय है आपसे विदा लेने का। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी और मैं था दानिश, और लेखन दीपक नेमा।
0: आपके लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मैंने यानी मनीषा,
1: और मैं दानिश। नमस्कार।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद का समय बौद्धिक कोलाहल का काल था। अंग्रेजी भाषा के साथ यूरोपीय बुद्धिवाद के प्रचार से भारतवासियों के परंपरागत विचारों को बड़े जोर का धक्का लगा और उनमें से कितने ही लोग गंभीर होकर यह सोचने लगे कि मूर्ति पूजा ठीक है या नहीं, व्रतों और अनुष्ठानों से वास्तविक धर्म का क्या संबंध है, तथा पुराणों में जो विचित्र कथाएं मिलती हैं उनकी सार्थकता क्या है।
1: 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पश्चिमी जड़वाद ने सर उठाया और इस बार उसका आक्रमण ऐसा प्रबल था, अस्त्र ऐसे अमोघ और सहायक ऐसे सबल थे कि भारत की आत्मा को उसके सामने सिर झुका देना पड़ा। और कुछ ही दिनों में हिमालय से कन्याकुमारी तथा पश्चिम से पूरब तक उसकी पताका फहराने लगी।
0: हमारी आंखें इस भौतिक प्रकाश के सामने चौंधिया गईं और हमने अपने प्राचीन तत्व ज्ञान, प्राचीन शास्त्र, प्राचीन समाज व्यवस्था, प्राचीन धर्म और प्राचीन आदर्शों को त्यागना आरंभ कर दिया।
1: इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप समझदार लोगों के मन में चेतना जागी और अनायास ही अपने धर्म में सुधार करने का प्रश्न उनके सामने आ गया। उस समय धर्म ही व्यक्ति और समाज का मूलाधार था, इसके बिना समाज सुधार की कल्पना हो ही नहीं सकती थी। इसीलिए राजा राम मोहन राय ने धर्म संस्कार की ओर ध्यान दिया। सामाजिक कुप्रथाओं पर प्रहार करके समाज सुधार का श्री गणेश भी किया, जो कालांतर में सारे भारत में व्याप्त हो गया।
0: उस काल के समाज सुधारकों में देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, रानाडे, मैडम ब्लावत्स्की, कर्नल अलकाट प्रमुख थे। उसी काल में विवेकानंद का जन्म हुआ था और समाज सुधार और परिवर्तन की हवा में ही वे पले बढ़े।
1: इन सामाजिक आंदोलनों का मुख्य लक्ष्य समाज सुधार था। विधवा विवाह, सती प्रथा का उन्मूलन, सामाजिक कुरीतियों का नाश, जात पात की अवधारणा का बहिष्कार आदि समाज में कुछ बदलाव लाईं।
0: कुछ लोग सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। मूर्ति पूजा का बहिष्कार करने का आंदोलन भी चल पड़ा। ये नव पाश्चात्य दर्शन और पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार का फल था। जो कुछ भारतीय या सनातन है उसका बहिष्कार करना उस समय के नव धनाढ्य वर्ग का चलन बन गया था और साधारण जनता हतप्रभ दिग्भ्रमित थी। उसे सही मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं था।
1: इसीलिए हम देखते हैं कि 19वीं सदी में निराकारवादी आंदोलनों का बाहुल्य है। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये सभी आंदोलन हिंदुत्व के उसी रूप को मानते हैं जो निराकारवादी है, जो मूर्ति पूजा के खिलाफ है, जो जातपात को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है।
0: झगड़ा उस समय केवल निराकार और साकार का ही नहीं था, बल्कि विदेशी धर्मोपदेशक हमारे देश में प्रचलित धर्मों से लड़ रहे थे। इस्लाम और हिंदुत्व में भी मत अवरोध था। विज्ञान और बुद्धिवाद के प्रचार से हर जगह खलबली मची हुई थी। प्रत्येक धर्म की दूसरे धर्मों से लड़ाई, धर्म को लेकर भाषण, विवाद और शास्त्रार्थ, ये 19वीं सदी के प्रधान लक्षण थे।
1: 19वीं सदी में भारतीय समाज अनेक कुरीतियों से भरा पड़ा था। स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। विधवाओं पर भयानक कठोर दिनचर्या की पाबंदी थी। सती प्रथा, बहु विवाह प्रथा एवं पर्दा प्रथा के चलते स्त्रियों का जीना दूभर हो रहा था। बाल विवाह के नाम पर हजारों कन्याओं की बलि चढ़ती थी। वे बेजुबान पशुओं की भांति उस जीवन को जीने के लिए मजबूर थीं।
0: स्वामी जी को स्त्रियों का यह अपमान, जाति भेद की कट्टरता तथा धर्मों की आपसी लड़ाई कतई मंजूर नहीं थी। वे कहा करते थे,
2: क्या भारत में कभी सुधारकों की कमी रही है? क्या तुम कभी भारत का इतिहास पढ़ते हो? रामानुज कौन थे, शंकर कौन थे, नानक कौन थे, चैतन्य कौन थे, दादू कौन थे? क्या रामानुज गरीबों की ओर से लापरवाह थे? क्या वे आजीवन इस बात का यत्न नहीं करते रहे कि उनको भी अपने संप्रदाय में सम्मिलित कर लें? क्या उन्होंने मुस्लिमों को अपनी मंडली में मिलाने की कोशिश नहीं की थी? क्या गुरु नानक ने हिंदू मुसलमान दोनों जातियों को मिलाकर एक बनाना नहीं चाहा था? इन सब महापुरुषों ने सुधार के लिए कितने यत्न किए और उनका नाम अभी तक कायम है। वे लोग कटुवादी न थे, उनके मुंह से मीठे वचन ही निकलते थे। वे कभी किसी को गाली नहीं देते थे, किसी की निंदा नहीं करते थे। निसंदेह है, सामाजिक जीवन के सुधार के इन गुरुतर और महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमने उपेक्षा ही की है और प्राचीनों ने जो मार्ग अपनाया था उससे विमुख हो गए हैं।
1: इस तरह के तमाम प्रश्नों और उलझनों में उनका मन अशांत रहता था। उसी समय उनकी मुलाकात श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई। उस कोलाहलमय युग में वह अविचल और शांत आत्मा कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर मंदिर में बैठे बैठे शांत भाव से साधना करते रहे। उन्होंने भाषण नहीं दिए, अपने मतों के प्रचार के लिए अखबार नहीं निकाला, ना कभी किसी के साथ शास्त्रार्थ में फंसे। रामकृष्ण धर्म के जीते जागते स्वरूप थे।
0: तो फिर परमहंस रामकृष्ण के विचारों का हम विश्वव्यापी प्रचार कैसे देखते हैं? उस एकांत साधक की अनुभूतियां दिग्दिगंत में कैसे फैल गईं?
1: प्रत्येक कृष्ण के साथ किसी अर्जुन का आगमन होता है, प्रत्येक बुद्ध अपने साथ किसी आनंद को ले आते हैं, और जब भी राम का आगमन होता है तब हर बार उनके साथ कोई लक्ष्मण भी पधारते हैं। परमहंस रामकृष्ण को पुरानी दुनिया से जो कुछ कहना था उन्होंने स्वयं कहा, किंतु नई दुनिया में अपना संदेश फैलाने के लिए वे विवेकानंद की आत्मा में प्रविष्ट हो गए। विवेकानंद रामकृष्ण के लक्ष्मण थे, अर्जुन थे, आनंद थे। रामकृष्ण जिए इसलिए कि उन्हें विवेकानंद को तैयार करना था, और विवेकानंद का अवतार ही इसीलिए हुआ था कि वे परमहंस देव के संदेशों का विश्वव्यापी प्रचार करें।
0: स्वामी जी अपनी जाति के आचार व्यवहार, रीति नीति, साहित्य और दर्शन, सामाजिक जीवन, उसके पूर्वकाल के महापुरुष और पुनीत भारत भूमि, सबको श्रद्धेय सम्मान्य मानते थे। आपने अपने एक भाषण में कहा है,
2: प्यारे देशवासियों, पुनीत आर्यावर्त के बसने वालों, क्या तुम अपनी इस तिरस्करणीय भीरुता से वो स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है? हे भारत निवासी भाइयों, अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री और दमयंती तुम्हारी जाति की ही देवियां हैं। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो, मैं भारतीय हूं, मैं भारत का रहने वाला हूं। हर एक भारतवासी, चाहे वो कोई भी हो, मेरा भाई है। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, गरीब जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। भारतीय मेरा भाई है, भारत मेरा जीवन है, मेरा प्राण है। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। भारत मेरे बचपन का हिंडोला, मेरे यौवन का विलास भवन और बुढ़ापे का बैकुंठ है। हे शंकर, हे धरती माता, मुझे मनुष्य बना, मेरी दुर्बलता दूर कर और मेरी भीरुता का नाश कर।
1: स्वामी जी की शिक्षा का आधार प्रेम और शक्ति है, निर्भीकता उसका प्राण है और आत्मविश्वास उसका धर्म है। उनकी शिक्षा में दुर्बलता और अनुनय विनय के लिए तनिक भी स्थान नहीं था। उनका वेदांत मनुष्य को सांसारिक दुख और क्लेश से बचाने, जीवन संग्राम में वीर की भांति जुटने और मानसिक आध्यात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति की समान रूप से शिक्षा देता है।
0: उनके उपदेशों का सार ये है कि हम स्वजाति और स्वदेश के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें, आत्मबल प्राप्त करें, बलवान और वीर बनें, सर्वहारा जातियों को उभारें और उन्हें अपना भाई समझें। जब तक अधिकांश भारतवासी अपने को दीनहीन समझते रहेंगे, भारत में एका और मेल का होना सर्वथा असंभव है।

0: देश की आज की परिस्थिति स्वामी जी के विचारों एवं चिंतन की आवश्यकता को और भी अधिक सिद्ध करती है। आज देश चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ है, देश की सीमाएं आक्रांत हैं। भारत के नंदनवन कश्मीर पर और मुकुट हिमालय पर शत्रु की निगाहें लगी हैं। विदेशी शक्तियां देश में आंतरिक संकट पैदा करने में सचेष्ट हैं। वे देश में अराजकता, हिंसा और अव्यवस्था फैलाने में सक्रिय हैं। दूसरी ओर हमारे देशवासी व्यक्तिगत स्वार्थ, पदलिप्सा, व्यक्तिगत लाभ अथवा अहंकार से ग्रस्त हैं। देशाभिमान से व्यक्तिगत अभिमान अधिक प्रभावी हो रहा है।
1: ये समस्त आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक नेताओं के लिए चुनौती है और निसंदेह स्वामी विवेकानंद जैसी विभूतियों का तपस्वी जीवन तथा उसके उपदेश इस कार्य में मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत सिद्ध होंगे।
0: स्वामी विवेकानंद की प्रतिभा बहुमुखी थी। 40 वर्ष से भी कम आयु तथा लगभग 10 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान वे अपने संपूर्ण जगत और विशेषकर भारत को जो कुछ दे गए वो आगामी अनेक शताब्दियों तक मानवता की धरोहर बनी रहेंगी। धर्म, दर्शन, शिक्षा, संस्कृति, इतिहास, कला, संगीत, साहित्य, विज्ञान, समाज सुधार, अर्थनीति, समाजवाद, नारी जागरण आदि नानाविध विषयों पर स्वामी जी के मौलिक एवं कालजयी विचार उनके साहित्य में बिखरे पड़े हैं।
1: वस्तुतः अपने जीवन तथा संदेश के माध्यम से उन्होंने विश्व में एक युगांतर उपस्थित किया जिसे पूर्ण रूप से विकसित होने में संभवतः शताब्दियां लग जाएंगी। भारत को यदि जीवित रहना है और प्रगति करते हुए अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त करना है तो अपनी राष्ट्रीय समस्याओं का हल उसे विवेकानंद में ही ढूंढना होगा।
0: राम मोहन, केशव सेन, दयानंद, रानाडे, एनी बेसेंट, रामकृष्ण एवं अन्य चिंतकों तथा सुधारकों ने भारत में जो जमीन तैयार की, विवेकानंद उसमें से पीपल होकर उठे। अभिनव भारत को जो कुछ कहना था वो विवेकानंद के मुख से उत्कीर्ण हुआ। अभिनव भारत को जिस दिशा की ओर जाना था उसका स्पष्ट संकेत विवेकानंद ने दिया। विवेकानंद वो सेतु हैं जिस पर प्राचीन और नवीन भारत परस्पर आलिंगन करते हैं। विवेकानंद वो समुद्र हैं जिसमें धर्म और राजनीति, राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता तथा उपनिषद और विज्ञान सब के सब समाहित होते हैं।
1: यह भारत का परम सौभाग्य था कि उसके इतिहास के संकटपूर्ण काल में उत्तम नेतृत्व एवं पथ प्रदर्शन के लिए ऐसे शक्तिशाली और महान संत उत्पन्न हुए। उनके संवेदनापूर्ण उद्गार हैं।
2: आगामी 50 वर्षों के लिए हमारा केवल एक ही विचार केंद्र होगा और वो है हमारी महान मातृभूमि भारत। दूसरे सब व्यर्थ के देवताओं को तब तक के लिए हमारे मन में लुप्त हो जाने दो। हमारा राष्ट्र पुरुष यही एक देवता है जो जाग रहा है, जिसके हर जगह हाथ हैं, हर जगह पैर हैं, हर जगह कान हैं, जो सब वस्तुओं में व्याप्त है। हम क्यों उन व्यर्थ के देवताओं के पीछे दौड़ें और उस विराट की पूजा क्यों ना करें जिसे हम अपने चारों ओर देख रहे हैं।
1: भारत बहुत काल तक दुर्बल रह चुका है। परिस्थिति की आंधी के थपेड़े खाते हुए बिना लंगर के जहाज की भांति भारतीय जन साधारण आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास खो बैठा है। उसे जागृत करते हुए स्वामी जी कहते थे,
2: विश्वास, विश्वास अपने आप में विश्वास, विश्वास, विश्वास ईश्वर में विश्वास, यही महानता का रहस्य है।
1: वे पाप को नहीं मानते थे, केवल त्रुटियों को मानते थे। उनकी दृष्टि में यदि कुछ पाप में था तो वह थी दुर्बलता। वे कहते थे कि सत्य बलप्रद है और अहम ब्रह्मास्मि का वेदांतिक सिद्धांत ही सर्वोच्च सत्य एवं परम शक्ति का मूल है, जो सिखाता है कि मैं उस आत्मा से तनिक भी कम नहीं हूँ, जिसे ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना जल भिगा सकता है और ना वायु ही सुखा सकती है।
0: विवेकानंद कहा करते थे कि देश के कल्याण के लिए जनसाधारण का स्तर ऊंचा उठाना परम आवश्यक है। राष्ट्र का निवास गरीबों की झोपड़ियों में है। अगर हमारे कोटि कोटि बंधुगण दरिद्रता और अज्ञान में डूबे रहें, तो हमारी उन्नति कैसे हो सकती है? अपनी विचारधारा को क्रियात्मक रूप देने के लिए उनकी विभिन्न कल्पनाएं थीं। उनमें से एक कल्पना ये थी कि देश भर में ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएं, जहां पहले गरीबों को मौखिक शिक्षा दी जाए, तत्पश्चात कृषि एवं उद्योग की शिक्षा दी जाए और शिल्प कला के शिक्षण के लिए कारखाने खोले जाएं।
1: विवेकानंद पूरे विश्व से अनोखे अनुभवों और आदर्शों की सीख लेकर आए थे, जिनका सार वे भारतवासियों के उत्थान के लिए प्रयोग में लाना चाहते थे। उन्होंने जापान से एक पत्र में लिखा था,
2: सुनता हूं कि यहां जापान में ऐसा विश्वास है कि यदि बालिकाएं अपनी गुड़ियों से पूरे हृदय से स्नेह करें तो उनमें प्राणों का संचार हो जाएगा। हमारे देशवासी समृद्धि के वरदान से वंचित, सौभाग्यहीन, पूर्णता विवेक शून्य, पद दलित, सद्बुमुक्षित, कलह प्रिय और ईर्ष्यालु हो गए हैं। वे अज्ञानता और दीनता के भंवर में फंसकर दिन प्रतिदिन अधिकाधिक पतित होते जा रहे हैं। जापानियों की तरह मेरा भी यह विश्वास है कि यदि कोई भारतीय अपने इन देशवासियों से पूरे दिल से प्रेम कर सके तो भारत पुनः जागृत हो जाएगा। भारत तभी जागेगा जब सैकड़ों की संख्या में उदार चेता स्त्री और पुरुष विलासिता के आकर्षण को पूर्ण रूप से तिलांजलि देकर अपने करोड़ों देशवासियों की भलाई के लिए आतुर होकर उनकी सेवा में जी जान से जुट जाएंगे।
0: विवेकानंद भारत के युवा शक्ति के प्रति अत्यंत आश्वस्त थे। वे कहते थे कि इस युवा शक्ति को एक सुनियोजित महान लक्ष्य की ओर परिचालित करना होगा। एक प्रचंड शक्ति को किसी सीमा के भीतर आबद्ध रखने पर उसमें विस्फोट हो जाता है। युवा वर्ग के भीतर जो प्रबल प्राण शक्ति है, उसे ठीक पथ पर ना चला पाने से जो संकट उत्पन्न होगा, उससे पूरा देश तथा समाज प्रभावित होगा।
1: नवीन बंदरगाह की ओर उनकी यात्रा शुरू हो गई है। उनके पाल में हवा लग रही है। हमारा कार्य ये देखना है कि वे कहीं दिशा भूल न जाएं। विवेकानंद का विश्वास था कि हमारे युवा भारत की अतीत की धरोहर को और भी समृद्ध कर सकेंगे।

0: स्वामी विवेकानंद जैसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व को मात्र किसी विशेष जाति या देश की संपत्ति नहीं माना जा सकता। स्वामी जी सार्वभौमिक धर्म तथा विश्व संस्कृति के प्रतीक हैं और उनका उदात्त संदेश संपूर्ण मानवता के लिए है। उनका राष्ट्रवाद आधुनिक काल में भारत द्वारा आत्माभिव्यक्ति के प्रयासों का फल है, तथापि सभी देशों के लिए इसका सार्वभौमिक महत्व इसलिए है कि ये एक उदात्त आदर्श प्रस्तुत करके एक नया आध्यात्मिक दृष्टिकोण देता है जो प्राच्य तथा पाश्चात्य दोनों को ही संतुष्ट करने वाला है तथा एक दुर्लभ सांस्कृतिक विरासत प्रदान करता है।
1: आज हम सभी उस दिव्य पुरुष को नमन करते हैं, उनके जीवन चरित्र का अध्ययन करने का ध्येय इसलिए और भी अधिक प्रासंगिक बन जाता है क्योंकि आज हम एक और संकट और संक्रमण कालखंड से गुजर रहे हैं जहां अस्तित्व का संकट है, जीवन मूल्यों का संकट है, अपनी पहचान का संकट है।
0: आज ये बहुत जरूरी है कि एक बार हम स्वयं को जानने के लिए, अपने राष्ट्र को जानने के लिए स्वामी जी के विचारों का मंथन करें और उससे जो अमृत निकले उसे अपनी नई पीढ़ियों को वितरित करके उनके व्यक्तित्व को एक सार्थक और सकारात्मक दिशा देने में समर्थ हो सकें।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।

0: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। श्रोताओं, दिन के ठीक 12 बजे हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। हमारी दोपहरकालीन सभा आरंभ होती है। आप सभी श्रोताओं का हम इस सभा में स्वागत करते हैं। हमारे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं, मिक्सलार एप्लीकेशन पर भी। तो जुड़े रहिए रेडियो आज़ाद हिंद के साथ 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने आज़ादी।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को मेरा शत शत प्रणाम।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: कुछ याद उन्हें भी कर लो।
1: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

मैं अशोक चक्रधर FM रेडियो का अभिनंदन करता हूं जो 90.8 पर आप सुनते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इसका प्रसार और प्रचार निरंतर हो रहा है। ये रेडियो आज़ाद हिंद है। आज़ाद हिंद हमें याद दिलाता है नेताजी सुभाष की, याद दिलाता है हमारे स्वाधीनता संग्राम की, याद दिलाता है हमारे गौरव की। इस गौरवशाली परंपरा को मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूँ।

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत प्रमिला के साथ।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित रमाकांत गुंदेचा और पंडित उमाकांत गुंदेचा का ध्रुपद गायन।
2: नमस्कार, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आदि शंकराचार्य रचित गंगा स्तोत्रम से। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे।

0: अब इसके बाद राग भोपाली में संक्षिप्त आलाप और एक प्रकृति की रचना है, प्रकृति की पूजा है।
1: एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि भोपाली भू को पालने वाली,

0: आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने पंडित रमाकांत गुंदेचा और पंडित उमाकांत गुंदेचा का ध्रुपद गायन सुना। अब ये कार्यक्रम खत्म करने की प्रमिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती है, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम सुनो कहानी में आपको सुना रही हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ज्वालामुखी।

डिग्री लेने के बाद मैं नित्य लाइब्रेरी जाया करता था, पत्रों या किताबों का अवलोकन करने के लिए नहीं। किताबों को तो मैंने ना छूने की कसम खा ली थी। जिस दिन गजट में अपना नाम देखा, उसी दिन मिल और कैंट को उठाकर ताक पर रख दिया। मैं केवल अंग्रेजी पत्रों के वांटेड कॉलमों को देखा करता। जीवन यात्रा की फिक्र सवार थी। मेरे दादा या परदादा ने किसी अंग्रेज को गदर के दिन बचाया होता अथवा किसी इलाके का जमींदार होता तो कहीं नॉमिनेशन के लिए उद्योग करता, पर मेरे पास कोई सिफारिश न थी। शोक, कुत्ते, बिल्लियों और मोटरों की मांग सबको थी, पर बीए पास का कोई पुरसा हाल न था। महीनों इसी तरह दौड़ते गुजर गए, पर अपनी रुचि के अनुसार कोई जगह नजर न आई। मुझे अक्सर अपने बीए होने पर क्रोध आता था। ड्राइवर, फायरमैन, मिस्त्री, खानसामा या बावर्ची होता तो मुझे इतने दिनों तक बेकार न बैठना पड़ता। एक दिन मैं चारपाई पर लेटा हुआ एक पत्र पढ़ रहा था कि मुझे एक मांग अपनी इच्छा के अनुसार दिखाई दी। किसी रईस को एक ऐसे प्राइवेट सेक्रेटरी की जरूरत थी जो विद्वान, रसिक, सहृदय और रूपवान हो। वेतन 1000 मासिक। मैं उछल पड़ा। कहीं मेरा भाग्य उदय हो जाता और ये पद मुझे मिल जाता तो जिंदगी चैन से कट जाती।

भय में एक सप्ताह गुजर गया और मैं निराश हो गया। मैं भी कैसा ओछा हूं कि एक बेसिर पैर की बात के पीछे ऐसा फूल उठा। इसी को बड़कपन कहते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, किसी दिल्लगीबाज ने आज के शिक्षित समाज की मूर्खता की परीक्षा करने के लिए ये स्वांग रचा है। मुझे इतना भी न सूझा, मगर आठवें दिन प्रातःकाल तार के चपरासी ने मुझे आवाज दी। मेरे हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। लपका हुआ आया, तार खोलकर देखा, लिखा था, स्वीकार है, शीघ्र आओ ऐशगढ़। मगर यह सुख संवाद पाकर मुझे वो आनंद न हुआ जिसकी आशा थी। मैं कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा। किसी तरह विश्वास न आता था, जरूर किसी दिल लगीबाज की शरारत है। मगर कोई मुजायका नहीं, मुझे भी इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तार दे दूं कि एक महीने की तनख्वाह भेज दो, आप ही सारी कलई खुल जाएगी। मगर फिर विचार किया, कहीं वास्तव में नसीब जागा हो तो दंडता से बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। चलो दिल लगी ही सही, जीवन में ये घटना भी स्मरणीय रहेगी। इस तिलिस्म को खोल ही डालूं, ये निश्चय करके तार द्वारा आने की सूचना दे दी और सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गया। पूछने पर मालूम हुआ कि वो स्थान दक्षिण की ओर है। टाइम टेबल में उसका वृत्तांत विस्तार के साथ लिखा हुआ था। स्थान अति रमणीय है, पर जलवायु स्वास्थ्यकर नहीं। हाँ, हष्ट पुष्ट नवयुवकों पर उसका असर शीघ्र नहीं होता। दृश्य बहुत मनोहर है, पर जहरीले जानवर बहुत मिलते हैं। यथा साध्य अंधेरी घाटियों में न जाना चाहिए। ये वृत्तांत पढ़कर उत्सुकता और भी बढ़ी। जहरीले जानवर हैं तो हुआ करें, कहां नहीं है। मैं अंधेरी घाटियों के पास भूलकर भी न जाऊंगा। आकर सफर का सामान ठीक किया और ईश्वर का नाम लेकर नियत समय पर स्टेशन की तरफ चला। पर अपने अलापी मित्रों से इसका कुछ जिक्र न किया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि दो ही चार दिन में फिर अपना सा मुंह लेकर लौटना पड़ेगा। गाड़ी पर बैठा तो शाम हो गई थी। कुछ देर तो सिगार और पत्रों में दिल बहलाता रहा, फिर मालूम नहीं कब नींद आ गई। आंखें खुली और खिड़की से बाहर की तरफ झांका तो उषाकाल का मनोहर दृश्य दिखाई दिया। दोनों ओर हरे वृक्षों से ढकी हुई पर्वत श्रेणियां, उन पर चरती हुई उजली उजली गाय और भेड़ें, सूर्य की सुनहरी किरणों में रंगी हुई बहुत सुंदर मालूम होती थी। जी चाहता था कि कहीं मेरी कुटिया भी इन्हीं सुखद पहाड़ियों में होती, जंगल के फल खाता, झरनों का ताजा पानी पीता और आनंद के गीत गाता। यकायक दृश्य बदला। एक विस्तृत झील दिखाई दी जिसमें कमल खिले हुए थे, कहीं उजले उजले पक्षी तैरते थे और कहीं छोटी छोटी डोंगियां निर्बल आत्माओं के सदृश डगमगाती चली जाती थी। ये दृश्य भी बदला। पहाड़ियों के दामन में एक गांव नजर आया, झाड़ियों और वृक्षों से ढका हुआ, मानो शांति और संतोष ने यहां अपना निवास स्थान बनाया हो। कहीं बच्चे खेलते थे, कहीं गायों के बछड़े किलोल करते थे। फिर एक घना जंगल मिला, झुंड के झुंड हिरन दिखाई दिए जो गाड़ी की हाहाकार सुनते ही चौकड़ियां भरते दूर भाग जाते थे। ये सब दृश्य स्वप्न के चित्रों के समान आंखों के सामने आते थे और एक क्षण में गायब हो जाते थे। उनमें एक अवर्णनीय शांतिदायिनी शोभा थी जिससे दृश्य में आकांक्षाओं के आवेग उठने लगते थे। आखिर ऐशगढ़ निकट आया। मैंने बिस्तर संभाला, जरा देर में सिग्नल दिखाई दिया। मेरी छाती धड़कने लगी, गाड़ी रुकी। मैंने उतरकर इधर उधर देखा, कुलियों को पुकारने लगा कि इतने में दो वर्दी पहने हुए आदमियों ने आकर मुझे सादर सलाम किया और पूछा, आप वहां से आ रहे हैं ना, चलिए मोटर तैयार है। मेरी बांछें खिल गईं। अब तक कभी मोटर पर बैठने का सौभाग्य ना हुआ था। शान के साथ जा बैठा। मन में बहुत लज्जित था कि ऐसे फटे हाल में क्यों आया। अगर जानता कि सचमुच सौभाग्य सूर्य चमका है तो ठाट बाट से आता। खैर, मोटर चली। दोनों तरफ मौलसरी के सघन वृक्ष थे। सड़क पर लाल बजरी बिछी हुई थी। सड़क हरे भरे मैदान में किसी सुरम्य जलधारा के सदृश बल खाती चली गई थी। 10 मिनट भी न गुजरे होंगे कि सामने एक शांतिमय सागर दिखाई दिया। सागर के उस पार पर एक विशाल भवन बना हुआ था। भवन अभिमान से सिर उठाए हुए था। सागर संतोष से नीचे लेटा हुआ, सारा दृश्य काव्य श्रृंगार और आमोद से भरा हुआ था। हम सदर दरवाजे पर पहुंचे। कई आदमियों ने दौड़कर मेरा स्वागत किया। इनमें से एक शौकीन मुंशी जी थे जो बाल संवारे, आंखों में सुरमा लगाए हुए थे। मेरे लिए जो कमरा सजाया गया था उसके द्वार पर मुझे पहुंचाकर बोले, सरकार ने फरमाया है इस समय आप आराम करें, संध्या समय मुलाकात कीजिएगा। मुझे अब तक इसकी कुछ खबर न थी कि यह सरकार कौन है।
न मुझे किसी से पूछने का साहस हुआ, क्योंकि अपने स्वामी के नाम से अनभिज्ञ होने का परिचय नहीं देना चाहता था। मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरा स्वामी बड़ा सज्जन मनुष्य था। मुझे इतने आदर सत्कार की कदापि आशा न थी। अपने सुसज्जित कमरे में जाकर जब मैं एक आराम कुर्सी पर बैठा तो हर्ष से विह्वल हो गया। पहाड़ियों की तरफ से शीतल वायु के मंद मंद झोंके आ रहे थे। सामने छज्जा था, नीचे झील थी, और मैं, जिसे भाग्य देवी ने सदैव अपना सौतेला लड़का समझा था, इस समय जीवन में पहली बार निर्विघ्न आनंद का सुख उठा रहा था। तीसरे पहर उन्हीं शौकीन मुंशी जी ने आकर इत्तला दी कि सरकार ने याद किया है। मैंने इस बीच में बाल बना लिए थे, तुरंत अपना सर्वोत्तम सूट पहना और मुंशी जी के साथ सरकार की सेवा में चला। उस समय मेरे मन में ये शंका उठ रही थी कि कहीं मेरी बातचीत से स्वामी असंतुष्ट ना हो जाएं और उन्होंने मेरे विषय में जो विचार स्थिर किए हों उनमें कोई अंतर ना पड़ जाए। तथापि मैं अपनी योग्यता का परिचय देने के लिए खूब तैयार था। हम कई बरामदों से होते हुए अंत में सरकार के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था। मुंशी जी ने पर्दा उठाकर मुझे इशारे से बुलाया। मैंने कांपते हुए हृदय से कमरे में कदम रखा और आश्चर्य से चकित हो गया। मेरे सामने सौंदर्य की ज्वाला दीप्तिमान थी। फूल भी सुंदर है और दीपक भी सुंदर है। फूल में ठंडक है और सुगंध है, दीपक में प्रकाश और उद्दीपन। फूल पर भ्रमर उड़ उड़कर उसका रस लेता है, दीपक पर पतंगा जलकर राख हो जाता है। मेरे सामने कारचोबी मसनत पर जो सुंदरी विराजमान थी वो सौंदर्य की प्रकाशमय ज्वाला थी। फूल की पंखुड़ियां हो सकती हैं, ज्वाला को विभक्त करना संभव है। उसके एक एक अंग की प्रशंसा करना ज्वाला को काटना है। वो नख शिख तक एक ज्वाला थी, वही दीपन, वही चमक, वही लालिमा, वही प्रभा। कोई चित्रकार प्रतिभा सौंदर्य का इससे अच्छा चित्र नहीं खींच सकता था। रमणी ने मेरी तरफ वात्सल्य दृष्टि से देखकर कहा, आपको सफर में कोई विशेष कष्ट तो नहीं हुआ? मैंने संभल कर उत्तर दिया, जी नहीं, कोई कष्ट नहीं हुआ। यह स्थान पसंद आया? मैंने साहसपूर्ण उत्साह के साथ जवाब दिया, ऐसा सुंदर स्थान पृथ्वी पर ना होगा। हां, गाइडबुक देखने से विदित हुआ कि यहां की जलवायु जैसी सुखद प्रतीत होती है यथार्थ में वैसी नहीं। विषैले पशुओं की भी शिकायत थी। यह सुनते ही रमणी का मुख सूर्य कांतिहीन हो गया। मैंने तो ये चर्चा इसलिए कर दी थी कि जिससे प्रकट हो जाए कि यहां मुझे आने में कुछ त्याग करना पड़ा है, पर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि चर्चा से उसे कोई विशेष दुख हुआ। पर क्षण भर में सूर्य मेघमंडल से बाहर आया और बोली, यह स्थान अपनी रमणीयता के कारण बहुधा लोगों की आंखों में खटकता है। गुण का निरादर करने वाले सभी होते हैं, और यदि जलवायु कुछ हानिकर हो भी तो आप जैसे मनुष्य को इसकी क्या चिंता हो सकती है? रहे विषैले जीव जंतु तो वह आपके नेत्रों के सामने विचर रहे हैं। अगर मोर हिरण हंस विषैले जीव हैं तो निसंदेह है यहां विषैले जीव बहुत हैं। मुझे संशय हुआ कि कहीं मेरे कथन से उसका चित्त खिन्न हो गया। गर्व से बोला, गाइड बुकों पर विश्वास करना सर्वथा भूल है। इस वाक्य से सुंदरी का हृदय खिल गया और वो बोली, आप स्पष्टवादी मालूम होते हैं और ये मनुष्य का एक उच्च गुण है। मैं आपका चित्र देखते ही समझ गई थी। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि इस पद के लिए मेरे पास 1,00,000 से अधिक प्रार्थना पत्र आए। कितने एमए थे और कोई डीएससी था या कोई जर्मनी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए हुए था। मानो मुझे यहाँ किसी दार्शनिक विषय की जांच करानी थी। मुझे अब की ये अनुभव हुआ कि देश में उच्च शिक्षित मनुष्यों की इतनी भरमार है। कई महाशयों ने स्वरचित ग्रंथों की नामावली लिखी थी, मानो देश में लेखकों और पंडितों की ही आवश्यकता है। काल गति का लेशमात्र भी परिचय नहीं है। प्राचीन कर्म कथाएं अब केवल अंधभक्तों के रसास्वादन के लिए ही हैं और उनसे कोई लाभ नहीं है। यह भौतिक उन्नति का समय है। आजकल लोग भौतिक सुख पर अपने प्राण अर्पण कर देते हैं। कितने ही लोगों ने अपने चित्र भी भेजे थे। कैसी कैसी विचित्र मूर्तियां थीं जिन्हें देखकर घंटों हंसिए। मैंने उन सभी को एक एल्बम में लगा दिया है और अवकाश मिलने पर जब हंसने की इच्छा होती है तो उन्हें देखा करती हूँ। मैं उस विद्या को रोग समझती हूँ जो मनुष्य को वनमानुष बना दे। आपका चित्र देखते ही आंखें मुग्ध हो गईं। तत्क्षण आपको बुलाने को तार दे दिया।
मालूम नहीं क्यों अपने गुण स्वभाव की प्रशंसा की अपेक्षा हम अपने बाह्य गुणों की प्रशंसा से अधिक संतुष्ट होते हैं, और एक सुंदरी के मुखकंठ से वो चलते हुए जादू के समान है। मैं कह उठा, यथा साध्य आपको मुझसे असंतुष्ट होने का अवसर ना मिलेगा। सुंदरी ने मेरी ओर प्रशंसापूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, इसका मुझे पहले ही विश्वास है। आइए अब कुछ काम की बातें हो जाएं। इस घर को आप अपना ही समझिए और संकोच छोड़कर आनंद से रहिए। मेरे भक्तों की संख्या बहुत है, वो संसार के प्रत्येक भाग में उपस्थित हैं और बहुधा मुझसे अनेक प्रकार की जिज्ञासा किया करती हैं। उन सबको मैं आपके सुपुर्द करती हूँ। आपको उनमें भिन्न भिन्न स्वभाव के मनुष्य मिलेंगे। कोई मुझसे सहायता मांगता है, कोई मेरी निंदा करता है, कोई सराहता है, कोई गालियां देता है। इन सब प्राणियों को संतुष्ट रखना आपका काम है। देखिए, ये आज के पत्रों का ढेर है। एक महाशय कहते हैं, बहुत दिन हुए आपकी प्रेरणा से मैं अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का अधिकारी बन बैठा था। अब उनका पुत्र वयस्क प्राप्त हो चुका है और मुझसे अपने पिता की जायदाद लौटाना चाहता है। इतने दिनों तक उस संपत्ति

सार में इसका अस्तित्व नहीं। आप ऋण लेकर मर जाएं, लड़का कौड़ी कौड़ी भरे, विद्वान लोग इसे न्याय कहते हैं, मैं घोर अत्याचार समझती हूं। इस न्याय के पर्दे में गांठ के पूरे महाजन की हेकड़ी साफ झलक रही है। एक डाकू किसी भद्र पुरुष के घर में डाका मारता है, लोग उसे पकड़कर कैद कर देते हैं। धर्मात्मा लोग इसे भी न्याय कहते हैं, किंतु यहां भी वही धन और अधिकार की प्रचंडता है। भद्र पुरुष ने कितने ही घरों को लूटा, कितनों का गला दबाया और इस प्रकार संचय किया कि किसी को भी आंख दिखाने का साहस ना हुआ। डाकू ने जब उनका गला दबाया तो वो अपने धन और प्रभुत्व के बल से उस पर वज्र प्रहार कर बैठे। मैं इसे न्याय नहीं कहती। संसार में धन छल कपट धूर्तता का राज्य है, यही जीवन संग्राम है। यहां प्रत्येक साधन जिससे हमारा काम निकले, जिससे हम अपने शत्रुओं पर विजय पा सकें, न्याय अनुकूल और उचित है। धर्म युद्ध के दिन अब नहीं रहे। ये देखिए, ये एक दूसरे सज्जन का पत्र है। वो कहते हैं, मैंने प्रथम श्रेणी में एमए पास किया, प्रथम श्रेणी में कानून की परीक्षा पास की, पर अब कोई बात भी नहीं पूछता। अब तक ये आशा थी कि योग्यता और परिश्रम का अवश्य ही कुछ फल मिलेगा, पर 3 साल के अनुभव से ज्ञात हुआ कि ये केवल धार्मिक नियम है। 3 साल में घर की पूंजी भी खा चुका, अब विवश होकर आपकी शरण लेता हूं। मुझ हतभाग्य मनुष्य पर दया कीजिए और मेरा बेड़ा पार लगाइए। इनको उत्तर दीजिए कि जाली दस्तावेज बनवाइए और झूठे दावे चलवाकर उनकी डिग्री करा लीजिए। थोड़े ही दिनों में आपका क्लेश निवारण हो जाएगा। ये देखिए, एक और सज्जन कहते हैं, लड़की सयानी हो गई है, जहां जाता हूं लोग दहेज की गठरी मांगते हैं। यहां पेट की रोटियों का भी ठिकाना नहीं, किसी तरह भलमनसी निभा रहा हूं। चारों ओर निंदा हो रही है, जो आज्ञा हो उसका पालन करूं। इन्हें लिखिए, कन्या का विवाह किसी बुढ़े खुर्राट सेठ से कर दीजिए, वो दहेज लेने की जगह कुछ उल्टे और दे जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कैसे जिज्ञासुओं को किस ढंग से उत्तर देने की आवश्यकता है। उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत टीका टिप्पणी व्यर्थ होती है। अभी कुछ दिनों तक आपको ये काम कठिन जान पड़ेगा, पर आप चतुर मनुष्य हैं, शीघ्र ही आपको इस काम का अभ्यास हो जाएगा। तब आपको मालूम होगा कि इससे सहज और कोई काम नहीं है। आपके द्वारा सैकड़ों दारुण दुख भोगने वालों का कल्याण होगा और आजन्म वो आपका यश गाएंगे। मुझे यहां रहते 1 महीने से अधिक हो गया, पर अब तक मुझ पर यह रहस्य न खुला कि यह सुंदरी कौन है, मैं किसका सेवक हूं। इसके पास इतना अतुल धन, ऐसी ऐसी विलास की सामग्रियां कहां से आती हैं। जिधर देखता था ऐश्वर्य का ही आडंबर दिखाई देता था। मेरे आश्चर्य की सीमा न थी, मानो किसी तिलिस्म में आ फंसा हूं। इन जिज्ञासुओं का इस रमणी से क्या संबंध है, ये भेद भी न खुलता था। मुझे नित्य उससे साक्षात होता था, उसके सम्मुख जाते ही मैं चेत सा हो जाता था। उसके चितवनों में एक प्रबल आकर्षण था जो मेरे प्राणों को खींच लिया करता था। मैं वाक्य शून्य हो जाता, केवल छुपी हुई आंखों से उसे देखा करता था, पर मुझे उसकी मृदुल मुस्कान और रसमयी आलोचनाओं तथा मधुर काव्यमय भावों में प्रेमानंद की जगह एक प्रबल मानसिक शांति का अनुभव होता था। उसकी चितवने केवल हृदय को वाणी के समान छेदती थी, उसके कटाक्ष चित्त को व्यस्त रखते थे। शिकारी अपने शिकार को खिलाने में जो आनंद पाता है, वही उस परम सुंदरी को मेरी प्रेमातुरता में प्राप्त होता था। वो एक सौंदर्य ज्वाला जलाने के सिवाय और क्या कर सकता है। तिस पर भी मैं पतंग की भांति उस ज्वाला पर अपने को समर्पण करना चाहता था। यही आकांक्षा होती थी कि उन पद कमलों पर सिर रखकर प्राण दे दूं। ये केवल एक उपासक की भक्ति थी, काम और वासना से शून्य। कभी कभी जब वो संध्या समय अपनी मोटर बोट पर बैठकर सागर की सैर करती, तो ऐसा जान पड़ता था मानो चंद्रमा आकाश में तैर रहा है। मुझे इस दृश्य में अनुपम सुख प्राप्त होता था। मुझे अब अपने नियत कार्यों का खूब अभ्यास हो गया था। मेरे पास प्रतिदिन पत्रों का एक पोथा पहुंच जाता था, मालूम नहीं कि डाक से आता था, लिफाफों पर कोई मुहर न होती थी। मुझे इन जिज्ञासुओं में बहुधा वो लोग मिलते थे जिनका मेरी दृष्टि में बड़ा आदर था। कितने ही ऐसे महात्मा थे जिनमें मुझे श्रद्धा थी, बड़े बड़े विद्वान, लेखक और अध्यापक, बड़े बड़े ऐश्वर्यवान रईस, यहां तक कि कितने ही धर्म के आचार्य नित्य अपनी राम कहानी सुनाते थे। उनकी दशा अत्यंत करुणाजनक थी। वो सब मुझे रंगे हुए सियार दिखाई देते थे। जिन लेखकों को अपनी भाषा का स्तंभ समझता था, उनसे घृणा होने लगी। वो केवल उचक्के थे जिनकी सारी कीर्ति चोरी, अनुवाद
और कतर ब्यूत पर निर्भर थी। जिन धर्मों के आचार्यों को मैं पूजता था वो स्वार्थ तृष्णा और घोर नीचता के दलदल में फंसे हुए दिखाई देते थे। मुझे धीरे धीरे यह अनुभव हो रहा था कि संसार की उत्पत्ति से अब तक लाखों शताब्दियां बीत जाने पर भी मनुष्य वैसा ही क्रूर, वैसा ही वासनाओं का गुलाम बना हुआ है। बल्कि उस समय के लोग सरल प्रकृति के कारण इतने कुटिल, दुराग्रहों में इतने चालाक न होते थे। एक दिन संध्या समय उस रमणी ने मुझे बुलाया। मैं अपने घमंड में समझता था कि मेरे बांकेपन का कुछ न कुछ असर उस पर भी होता है। अपना सर्वोत्तम सूट पहना, बाल संवारे और विरक्त भाव से जाकर बैठ गया। यदि वो मुझे अपना शिकार बनाकर खेलती थी

का साहस न कर सकता हो। सुंदरी ने कहा, तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे दोनों ओर की आग बुझे। प्रियतम, अब मैं अपनी हृदय की दहकती हुई विरह अग्नि को नहीं छिपा सकती। मेरा सर्वस्व आपकी भेंट है। मेरे पास वो खजाने हैं जो कभी खाली ना होंगे। मेरे पास वो साधन है जो आपकी कीर्ति को शिखर पर पहुंचा देंगे। समस्त संसार को आपके पैरों पर झुका सकती हूँ। बड़े बड़े सम्राट भी मेरी आज्ञा को नहीं टाल सकते। मेरे पास वो मंत्र है जिससे मैं मनुष्य के मनोवेगों को क्षण मात्र में पलट सकती हूँ। आइए मेरे हृदय से लिपटकर इस दाह क्रांति को शांत कीजिए।

गई और बोली, वास्तव में आप बहुत निर्दयी हैं। मैं ऐसा न समझती थी। आप में अभी तक अपनी शिक्षा के कुसंस्कार लिपटे हुए हैं। पुस्तकों और सदाचार की बीड़ी आपके पैरों से नहीं निकली। मैं शीघ्र ही अपने कमरे में चला आया और चित्त के स्थिर होने पर जब मैं इस घटना पर विचार करने लगा तो मुझे मालूम हुआ कि मैं अग्निकुंड में गिरते गिरते बचा। कोई गुप्त शक्ति मेरी सहायक हो गई। ये गुप्त शक्ति क्या थी? मैं जिस कमरे में ठहरा हुआ था उसके सामने झील के दूसरी तरफ एक छोटा सा झोपड़ा था। उसमें एक वृद्ध पुरुष रहा करते थे। उनकी कमर तो झुक गई थी पर चेहरा तेजमय था। वो कभी कभी महल में आया करते थे। रमणी न जाने क्यों उनसे घृणा करती थी, मन में उनसे कुछ डरती थी, उन्हें देखते ही घबरा जाती, मानो किसी असमंजस में पड़ी हुई है। उसका मुख फीका पड़ जाता, जाकर अपना मुख छुपा लेती। मुझे उसकी ये दशा देखकर कौतूहल होता था। कई बार उसने मुझसे उनकी चर्चा की थी परंतु अत्यंत अपमान के भाव से। वो मुझे उनसे दूर दूर रहने का उपदेश दिया करती और यदि कभी उनसे बातें करते देख लेती तो उसके माथे पर बल पड़ जाते थे। कई कई दिनों तक मुझसे खुलकर न बोलती थी। उस रात को मुझे देर तक नींद नहीं आई थी। उधेड़े बुन में पड़ा हुआ था। कभी जी चाहता, आओ आंख बंद करके प्रेम रसपान करें, संसार के पदार्थों का सुख भोगें, जो कुछ होगा देखा जाएगा, जीवन में ऐसे दिव्य अवसर कहां मिलते हैं। फिर आप ही आप मन कुछ खींच जाता, घृणा उत्पन्न हो जाती थी। रात के 10 बजे होंगे कि हठात मेरे कमरे का द्वार आप ही खुल गया और वही तेजस्वी पुरुष अंदर आए। यद्यपि मैं अपनी स्वामिनी के भय से उनसे बहुत कम मिलता था परंतु उनके मुख पर ऐसी शांति थी और उनके भाव ऐसे पवित्र तथा कोमल थे कि हृदय में उनके सत्संग की उत्कंठा होती थी। मैंने उनका स्वागत किया और लाकर एक कुर्सी पर बिठा दिया। उन्होंने मेरी ओर दयापूर्ण भाव से देखकर कहा, मेरे आने से तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? मैंने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आप जैसे महात्माओं का दर्शन मेरे लिए सौभाग्य की बात है। महात्मा जी निश्चिंत तो होकर बोले, अच्छा तो सुनो और सचेत हो जाओ। मैं तुम्हें यही चेतावनी देने के लिए आया हूं, तुम्हारे ऊपर एक घोर विपत्ति आने वाली है। तुम्हारे लिए इस समय इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं कि यहां से चले जाओ। मेरी बात न मानोगे तो जीवन पर्यंत कष्ट झेलोगे और इस माया जाल से कभी मुक्त ना हो सकोगे। मेरा झोंपड़ा तुम्हारे सामने था। मैं भी कभी कभी यहां आया करता था परंतु तुमने मुझसे मिलने की आवश्यकता न समझी। यदि पहले ही दिन तुम मुझसे मिलते तो सहस्त्रों मनुष्यों का सर्वनाश करने के अपराध से बच जाते। निसंदेह यह तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल था जिसने आज तुम्हारी रक्षा की। अगर ये पिशाचिनी एक बार तुमसे प्रेमालिंगन कर लेती तो फिर तुम उसी दम उसके अजायब खाने में भेज दिए जाते। वो जिस पर रीझती है उसकी वही गत बनाती है, यही इसका प्रेम है। चलो जरा इस अजायब खाने की सैर करो, तब तुम समझोगे कि आज तुम किस आफत से बचे। ये कहकर महात्मा जी ने दीवार में एक बटन दबाया, तुरंत एक दरवाजा निकल आया। ये नीचे उतरने की सीढ़ी थी। महात्मा उसमें घुसे और मुझे भी बुलाया। घोर अंधकार में कई कदम उतरने के बाद एक बड़ा कमरा नजर आया। उसमें एक दीपक टिमटिमा रहा था। वहां मैंने जो घोर विभत्स और हृदय विदारक दृश्य देखे उनका स्मरण करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इटली के अमर कवि डेंटी ने नर्क का जो दृश्य दिखाया है उससे कहीं भयावह रोमांचकारी और नारकीय दृश्य मेरी आंखों के सामने उपस्थित था। सैकड़ों विचित्र देहधारी नाना प्रकार की अशुद्धताओं में लिपटे हुए भूमि पर पड़े कराह रहे थे। उनके शरीर मनुष्य के से थे लेकिन चेहरों का रूपांतर हो गया था। कोई कुत्ते से मिलता था, कोई गीदड़ से, कोई बन बिलाव से, कोई सांप से। एक स्थान पर मोटा स्थूल मनुष्य एक दुर्बल शक्तिहीन मनुष्य के गले में मुख लगाए उसका रक्त चूस रहा था। एक और दो गिद्ध की सूरत वाले मनुष्य एक सड़ी हुई लाश पर बैठ उसका मांस नोच रहे थे। एक जगह एक अजगर की सूरत का मनुष्य एक बालक को निगलना चाहता था पर बालक उसके गले में अटका हुआ था। दोनों ही जमीन पर पड़े छटपटा रहे थे। एक जगह मैंने एक अत्यंत पैशाचिक घटना देखी। दो नागिन की सूरत वाली स्त्रियां एक भेड़िए की सूरत वाले मनुष्य के गले में लिपटी हुई उसे काट रही थी। वो मनुष्य घोर वेदना से चिल्ला रहा था,
मुझसे अबौर न देखा गया, तुरंत वहां से भागा और गिरता पड़ता अपने कमरे में आकर दम लिया। महात्मा जी मेरे साथ चले आए। जब मेरा चित्त शांत हुआ तो उन्होंने कहा, इतनी जल्दी घबरा गए, अभी तो इस रहस्य का एक भाग भी नहीं देखा। ये तुम्हारी स्वामिनी के विहार का स्थान है और यही उनके पालतू जीव हैं। इन जीवों के पिशाचाभिनय देखने में उनका विशेष मनोरंजन होता है। ये सभी मनुष्य किसी समय तुम्हारे ही समान प्रेम और प्रमोद के पात्र थे, पर उनकी ये दुर्गति हो रही है। अब तुम्हें यही सलाह देता हूं कि दम यहां से भागो, नहीं तो रमणी के दूसरे वार से कदापि न बचोगे। ये कहकर वो महात्मा अदृश्य हो गए। मैंने भी अपनी गठरी बांधी और अर्धरात्रि के सन्नाटे में चोरों की भांति कमरे से बाहर निकला। शीतल आनंदमय समीर चल रही थी। सामने के सागर में तारे छिटक रहे थे, मेहंदी की सुगंधी उड़ रही थी। मैं चलने को चला, पर संसार सुख भोग का ऐसा सुअवसर छोड़ते हुए दुख होता था। इतना देखने और महात्मा के उपदेश सुनने पर भी चित्त उस रमणी की ओर खींचता था। मैं कई बार चला, कई बार लौटा, पर अंत में आत्मा ने इंद्रियों पर विजय पाई। मैंने सीधा मार्ग छोड़ दिया और झील के किनारे किनारे गिरता पड़ता, कीचड़ में फंसता सड़क तक आ पहुंचा। यहां आकर मुझे एक विचित्र उल्लास हुआ, मानो कोई चिड़िया बाज के पंजों से छूट आई हो।

यद्यपि मैं एक मास के बाद लौटा था, पर अब जो देखा तो अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ था। कमरे में जरा भी गर्द या धूल न थी। मैंने लोगों से इस घटना की चर्चा की तो लोग खूब हंसे और मित्रगण तो मुझे अभी तक मुझे प्राइवेट सेक्रेटरी कहकर बुलाया करते हैं। सभी कहते हैं कि मैं एक मिनट के लिए भी कमरे से बाहर नहीं निकला। महीना भर गायब रहने की तो बात ही क्या। इसलिए मुझे भी विवश होकर यही कहना पड़ता है कि शायद मैंने कोई स्वप्न देखा हो। कुछ भी हो, परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि मैं उस पाप कुंड से बचकर निकल आया। चाहे स्वप्न ही हो, पर मैं उसे अपने जीवन का एक वास्तविक अनुभव समझता हूं, क्योंकि उसने सदैव के लिए मेरी आंखें खोल दी।

0: तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी, जिसमें आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी ज्वालामुखी। फिर किसी ऐसी ही कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: अतुल्य भारत।
2: श्रोताओं, मैं हूं कंचन।
4: और मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद शर्मा। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम का नाम है संस्कृति संवाद, और संस्कृति संवाद में आज हम बात करेंगे गाय की महिमा की।
2: गाय यानी कि गौ माता भारतीय संस्कृति का एक ऐसा शब्द जिसने न जाने कितनी गाथाओं, कितनी कहावतों तथा कितने शब्दों का निर्माण किया है।
4: बिल्कुल ठीक।
2: पुराना चलन रहा है कि अध्यापक जब बच्चे को निबंध लिखना सिखाते थे तो सबसे पहले इसी विषय पर निबंध लिखना सिखाया जाता था। वजह ये थी कि हर घर में गाय लगभग होती ही थी, इसलिए इस पर निबंध लिखना कोई मुश्किल काम नहीं होता था।
4: हाँ, गाय का चित्र आंखों में आता और कलम लिखने के लिए हरकत में आ जाता। गाय का दूध, दही, घी और इससे बनने वाली मिठाइयां, स्वाद जीभ पर आता और शब्द बनकर कॉपी पे उतर जाता।
2: लेकिन समय बदला, संस्कृति बदली, गाय COW काउ हो गई और केवल तस्वीरों में ही दिखने लगी। शहरों की तो छोड़िए, गांवों में भी जब खेतों में हल खींचने का काम बैलों के बजाय ट्रैक्टरों से लिया जाने लगा तो गौ संपदा को भारी हानि पहुंची। नतीजा ये हुआ कि अब गाय पर निबंध लिखने में बच्चों के हाथ पांव फूलने लगे।
4: हाँ, मुझे एक वाक्य याद आता है। एक बच्चे से एग्जाम में गाय पर निबंध लिखने को कहा गया। अब उस बेचारे ने बड़ी मासूमियत से लिख दिया अपनी कॉपी में कि गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता है। पर परीक्षक महोदय इतने रहमदिल नहीं थे। उन्होंने भी कॉपी पर नंबर देने के बजाय एक टीप लगा दी कि बैल हमारा बाप है और नंबर देना पाप है। खैर, ये तो हुई केवल हास परिहास की बात।
2: श्रोताओं, गाय के अलावा कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भारतीय धर्म, दर्शन, भाषा शास्त्र और अर्थव्यवस्था से इतनी गहराई से जुड़ा हो। ऋग्वेद से ही हम इसके बारे में सुनने लगते हैं और लगातार सुनते चले आते हैं। यहाँ तक आधुनिक काल में भी हिंदी के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का विश्व प्रसिद्ध उपन्यास गोदान गाय पर ही आधारित है।
4: हाँ, इस उपन्यास का नायक हौरी एक स्थान पर कहता है, गौ से ही द्वार की शोभा है, सवेरे सवेरे गौ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। वास्तव में हौरी की आवाज नहीं, यह आवाज तो हर एक भारतीय की है, भले ही वह मजबूरीवश गाय न पाल पाए।
2: आज हम चलते चलते बहुत दूर निकल आए हैं, हम अपने घर का रास्ता भूल गए हैं। अब हम गोदान नहीं पढ़ते, हैरी पॉटर पढ़ते हैं। अपने बगीचे के खुशबूदार फूलों को भूलकर प्लास्टिक के फूलों के पीछे भाग रहे हैं। आपको बता दें कि गोदान का अनुवाद विश्व की असंख्य भाषाओं में हो चुका है और देश विदेश के कितने पुरस्कार इसे मिले हैं, इसकी कोई गिनती नहीं। काश हमारी नई पीढ़ी इसे पढ़े और अपनी जड़ों को समझे।
4: तो चलिए एक बार फिर अपनी जड़ों में झांकते हैं। आज से लगभग 4000 साल पहले की बात है। सत्तत्व सिंधु क्षेत्र में ऋग्वेद की रचनाएं लिखी जा रही थी। हमारे पूर्वजों के घर में गाय थी और मन में ईश्वर। गाय उनका पेट भी पालती थी और उन्हें ईश्वर से भी जोड़ती थी, इसलिए उनके अधिकतर शब्द गाय से शुरू होते थे। लोग बेटी को दुहिता कहते थे, क्योंकि गाय दुहने का काम बेटी ही करती थी।
2: झरोके को गवाक्ष कहते क्योंकि वो उन्हें गाय की आंख जैसा दिखता था। जब किसी चीज की छानबीन और विश्लेषण करना होता तो उसे गवेषणा कहते। गाय का दूध अमृत माना जाता था, इसलिए अमृत का एक पर्यायवाची बना गौरस। जब दो राजा आपस में लड़ते तो उसे गविष्ठी कहा जाता, जिसका मतलब होता गायों की खोज। वजह ये थी कि उस दौर में युद्ध गायों के कारण ही लड़े जाते थे।
4: श्रोताओं, गेहूं का आटा आज हम सब लोग खाते हैं, पर अनाज हमारे भोजन की थाली का इतना अभिन्न अंग है कि इसके बिना हम भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पर क्या आप जानते हैं कि संस्कृत में गेहूं को क्या कहते हैं? गोधूम। जी हाँ, हमारे पूर्वज इस अनाज को गोधूम कहकर पुकारते थे, जिसका मतलब होता है गाय का धुआं।
2: इसी तरह जिस गोबर की खाद को आज भी हमारे वैज्ञानिक जमीन के लिए सबसे ज्यादा मुफीद मानते हैं, वो भी ऋग्वैदिक काल से ही उपयोग में लाई जा रही है। पूरा का पूरा ऋग्वेद गाय की महिमा से भरा पड़ा है। यहाँ तक इस ग्रंथ में एक पूरा का पूरा सूक्त ही गाय को समर्पित है। इसमें एक ऋषि कहते हैं, गौवे सब ऐश्वर्य का मूल है, मेरे लिए गौवे ही इंद्र हैं, गौओं का दूध ही अमृत की पहली घूंट है। हे गौओं, तुम निर्बल व्यक्ति को बलवान बना देती हो और श्रीविहीन व्यक्ति को सुंदर। तुम्हारी वाणी कल्याणकारी है, तुमसे हमारा घर कल्याणकारी हो जाता है।
4: दुनिया के सबसे पुराने इस ग्रंथ में तो गाय को देवी कहा गया है और इसकी तुलना अदिति से की गई है, जो देवताओं की माता थी। कई ग्रंथों में इसे लक्ष्मी कहकर भी संबोधित किया गया है, जो सभी प्रकार के धन धान्य को देने वाली है।
2: सचमुच गाय धन और धान्य दोनों ही देती हैं। खेती के लिए अपना बछड़ा और अपने गोबर की खाद देकर वे धान्य देती थीं, और धन तो वे स्वयं थीं, बिल्कुल अलाइव करेंसी।
4: जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक गाय होती थी उसे उतना ही धनी माना जाता था। आपको तो याद ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण के पास कितनी गाय हुआ करती थी, और गाय चराने पर भी उनकी इज्जत कम नहीं होती थी। गाय जब संध्या बेला को जंगल से चरकर वापस आती थी तो उसके खुरों से धूल उड़ती थी, जो आसमान में छा जाती थी, और इसलिए संध्या बेला को गोधूली बेला कहा जाता था।
2: श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण ने गायों को जितनी इज्जत बख्शी उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिल सकती। अवतार होकर भी वे गायों को चराने के लिए अपनी माँ से झगड़ा करते। इंद्रदेव के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए जिस पर्वत को उन्होंने अपनी उंगली पर उठाया, दुनिया उसे श्री कृष्ण पर्वत के नाम से नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत के नाम से जानती है।
4: उन्होंने अपना बचपन गोकुल में बिताया, गोप गोपियों के साथ पले बढ़े, खुद भी वे गोपाल कहलाए। यहाँ तक कि मानव तन त्यागने के पश्चात स्वर्ग में भी गाय के नाम से ही उन्होंने अपना लोक बसाया और उसे नाम दिया गोलोक।
2: भगवान श्री कृष्ण के अलावा अन्य देवताओं की बात करें तो भगवान शिव का वाहन नंदी कौन है? गाय का बेटा ही तो है। आप किसी भी शिव पार्वती जी के मंदिर में चले जाइए, द्वार पर नंदी जी को प्रणाम करके ही आपको अंदर जाना पड़ेगा।
4: तो श्रोताओं, आप समझ ही सकते हैं कि गाय की जड़ें हमारे जीवन में कितनी गहरी हैं। गोबर व गोमूत्र के बिना कोई भी धार्मिक संस्कार नहीं होने वाला। चरणामृत में गाय का दूध, घी व दही पड़ना आज अनिवार्य है। यहाँ तक कहा गया है कि गाय के शरीर में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है। आपने गाय को पूज लिया तो सभी देवी देवताओं को पूज लिया।
2: श्रोताओं, वैसे तो कन्यादान को श्रेष्ठ दान माना जाता है, पर हमारे यहाँ गाय का दान इससे भी अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, इस लोक के लिए भी और परलोक के लिए भी। पिता जब अपनी बेटी की शादी करता है तो दहेज में उसे गाय देता है। पुरोहित को भी दक्षिणा गाय के रूप में ही दी जाती है।
4: श्रोताओं, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि एक व्यक्ति ने 10,000 गाय दान में दे दी। आप समझ सकते हैं कि जब इतनी बड़ी संख्याओं में गाय दान दी जाती थी, यह भी आप समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमाने में हमारे देश में दूध व दही की नदियां बहा करती थीं।
2: परलोक में भी गाय ही इंसान को ताड़ती थी, इसीलिए मृत्यु के वक्त गोदान करना अनिवार्य माना जाता था। जिसके पास गाय खरीदने के लिए पैसा न होता, वो प्रतीकात्मक गोदान करता। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान से ये कुछ पंक्तियां हम आपको सुनवा रहे हैं।
4: हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो और गोदान करा दो, दादा चले। और भी कई आवाज आई, हाँ हाँ गोदान करा दो, यही समय है। धनिया यंत्र की भांति उठी, आज जो सुतली बेची थी 20 आने लाई थी, और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दाता दीन से बोली, महाराज घर में गाय नहीं है, ना बछिया है, ना पैसे हैं, ये पैसे हैं और यही इनका गोदान है।
2: चलिए श्रोताओं, एक बार फिर से लौटते हैं ऋषि मुनियों की दुनिया में, जब खेती का आधार गाय, सेहत का आधार गाय, पूजा का आधार भी गाय, करेंसी तो वो भी गाय, संपत्ति गाय, इस दुनिया में गाय और उस दुनिया में भी गाय। नतीजा ये हुआ कि गाय को अघन्या कहा गया, अर्थात इस प्राणी की हत्या करने की मनाही है।
4: आधुनिक काल की बात करें तो महात्मा गांधी ने गौ संस्कृति की जबरदस्त वकालत की है। वे कहते हैं, मैं गाय की पूजा करता हूँ, इसकी पूजा के लिए अगर पूरे संसार से भी मुझे लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। गाय धरती से भी अधिक महान है, यह करोड़ों भारतीयों की माँ है।
2: लेकिन जैसे जैसे कृषि का यंत्रीकरण हुआ, गाय का महत्व कम होता गया। लोग बैलों की जगह ट्रैक्टर और मशीनें इस्तेमाल करने लगे, दूध के लिए भैंसे पाली जाने लगी, और किसान गोबर की खाद को भूलकर केमिकल फर्टिलाइजर की तरफ झुकने लगे।
4: शुरू शुरू में यह ग्रीन रेवोल्यूशन सबको बड़ी अच्छी लगी, पैदावार बढ़ने लगी, किसानों की आमदनी बढ़ने लगी, अनाज के भंडार भरते चले गए। लेकिन आज इसने हमारे माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। इस ग्रीन रेवोल्यूशन ने मिट्टी को बर्बाद करके रख दिया है। कीड़े मकोड़े व बीमारियों से फसलों को बचाना मुश्किल होता जा रहा है। ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे की तरफ उतरता जा रहा है।
2: वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि अगर यही दौर चलता रहा तो एक दिन हम खेती से हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया जा रहा है, एवरग्रीन फार्मिंग। इसमें खास बात यह है कि जानवर और खेती का रिश्ता फिर से बहाल करना होगा।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद और कार्यक्रम है संस्कृति संवाद, और आज हम चर्चा कर रहे हैं गाय की महिमा की, और अब हम बात करेंगे भारत में गौ हत्या पर कानून के बारे में। श्रोताओं, भारत में गौ हत्या हमेशा से ही बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है। अगर 1857 की क्रांति को आप याद करें तो सिपाहियों की बगावत का एक प्रमुख कारण यही था कि राइफल की कारतूस में गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था।
2: आज के वक्त की बात करें तो हमारे यहाँ यानी कि मध्य प्रदेश सहित 6 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने गौ हत्या पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है।
4: इतिहास की बात करें तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मुगल शासक जो कि मुसलमान थे, उन्होंने भी गोवध को पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा था। इसी तरह मैसूर के सुल्तान हैदर अली व टीपू ने भी अपने राज्य में गौ हत्या पर पाबंदी लगा रखी थी। यहाँ तक कि जो लोग गाय मारते थे या गाय का मांस खाते थे उनके हाथ काट दिए जाते थे।
2: श्रोताओं, ये तो भारत की बात हो रही है, भारत के बाहर की तस्वीर कुछ अलग ही है। आप ये सोचने की भूल न करें कि दुनिया में केवल भारत ही ऐसा देश है जो गाय की रक्षा को लेकर सजग है, बल्कि नेपाल तो हमसे भी एक कदम आगे है। इस देश में गौ हत्या पर पूरी तरह से पाबंदी है।
4: पड़ोसी देश म्यांमार की बात करें तो यहाँ पर गाय का मांस खाना पाप माना जाता है। खास करके यहाँ के बौद्ध लोग तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। इतना ही नहीं, 1961 में इस देश में कानून बनाकर गौ हत्या को पूरी तरह से बंद कर दिया गया।
2: ज़ोरास्टर लोगों में कहा जाता है कि धरती की आत्मा गाय के भीतर होती है और किसी भी व्यक्ति को इस बात की इजाजत नहीं है कि इसके साथ बुरा बर्ताव करे। श्रोताओं, जिस तरह हमारे यहाँ वेद पवित्र हैं, वैसे ही पारसियों में अवेस्ता। इस ग्रंथ में कहा गया है कि गौमूत्र सभी चीजों को शुद्ध कर देता है, सभी तरह की बीमारियों के लिए ये रामबाण है।
4: चीन के लोगों की बात करें तो वहाँ कहा जाता है कि यहाँ के लोग सब कुछ खा सकते हैं, यहाँ तक कि सांप, छछुंदर, कुत्ते, बिल्ली भी। पर आपको अचरज होगा कि पुराने जमाने में चीन में गाय को मारना सर्वथा वर्जित था। इस संबंध में यहाँ का जनमत इतना प्रबल था कि राजा लोग भी गाय का मांस खाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे।
2: जापान की बात करें तो पुराने जापान में भी गाय का मांस खाने की मनाही थी।
4: श्रोताओं, गो संस्कृति प्राचीन मिस्र का भी अंग रही है। वजह यह थी कि इसे हाथोर देवी का पवित्र प्रतीक माना जाता था।
2: श्रोताओं, आपने कई बार सुना होगा कि एक वृक्ष को काटने से उतना फायदा नहीं होता जितना उसके लगे रहने से होता है। ये बात वास्तव में गाय के संदर्भ में भी अक्षरशः सत्य है।
4: श्रोताओं, एक पुरानी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। मतलब व्यक्ति का स्वभाव काफी हद तक इस पर डिपेंड करता है कि वह क्या खाता है। शराब पीने वाला तामसी हो जाता है और वह तमाम तरह के बुरे काम में लग जाता है। लेकिन गाय के दूध की विशेषता यह होती है कि वह सात्विक प्रवृत्ति प्रदान करता है, और यही कारण है कि गाय के दूध से बनी चीजों के वाइब्रेशन भी पॉजिटिव होते हैं।
2: श्रोताओं, कहावत मिलती है कि जिस बच्चे की माँ बचपन में ही मर जाए, गाय ही उसकी माता होती है। मतलब जिस तरह एक माँ अपना दूध पिलाकर अपने बच्चे को पालती है, वैसे ही गाय भी उसे पालती है। क्योंकि भैंस का दूध ये काम नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चे का नाजुक डाइजेस्टिव सिस्टम उसे ठीक से पचा नहीं पाता।
4: श्रोताओं, गाय के दूध के संबंध में एक बात ध्यान में आती है, वह यह कि इसका दूध हल्का सा पीलापन लिए होता है, और यहाँ तक कि घी भी। इसके विपरीत भैंस का दूध घी सफेद होता है। क्या आप जानते हैं कि इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है क्रोटीन, वही क्रोटीन जो गाजर में मिलता है। श्रोताओं, कहते हैं कि गाय का दूध बल, बुद्धि व स्फूर्ति प्रदान करने वाला होता है, जबकि भैंस का दूध मोटापा व सुस्ती। ज्यादा कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है, आप इन दोनों जानवरों को एक बार ध्यान से देख लीजिए, उत्तर आपको स्वयं ही मिल जाएगा। अरे भाई, जैसा जानवर होगा वैसा ही तो दूध होगा। आप गाय को जरा आवाज देकर देखिए, फौरन उसका सिर ऊंचा नीचा होने लगेगा, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स। लेकिन भैंस को बुलाइए, पहले तो वह हिलेगी नहीं, और किसी तरह से हिल भी गई तो रिएक्शन इतना स्लो होगा आप खींच उठेंगे। तभी तो वही पुराना मुहावरा है कि भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी गुर्राए। गाय की ही तरह इसका बछड़ा भी बेहद फुर्तीला होता है, पैदा होते ही दौड़ना शुरू कर देता है, पर भैंस का पाड़ा आप खुद जानते हैं कितना सुस्त होता है।
2: श्रोताओं, यूं तो किसी भी प्राणी के मलमूत्र को खाद में बदला जा सकता है और उससे मीथेन गैस प्राप्त की जा सकती है, लेकिन गाय का गोबर इस मायने में सबसे अलग है कि इसमें कीटाणुनाशी शक्ति होती है। इसलिए पुराने जमाने से ही गाय के गोबर से घर लीपने की परिपाटी रही है।
4: गाय का गोबर जब जलाया जाता है तो इससे उठने वाला धुआं वातावरण में फैले जर्म्स को मार डालता है। कहा जाता है कि गाय का गोबर एंटी रेडियो एक्टिविटी, एंटीसेप्टिक व एंटी थर्मल प्रॉपर्टीज वाला होता है। इसलिए जब घर की फर्श दीवारें से लीपी जाती हैं, तो उस घर में रहने वाले लोगों की न केवल बीमारियों से रक्षा होती है, बल्कि घर का वातावरण भी शीतल बना रहता है।
2: एक नई खोज में बताया गया है कि 1984 में जब भोपाल गैस कांड हुआ था, तो जो लोग गाय के गोबर से लिपे घरों में रहते थे वे बच गए थे। सुनने में तो ये भी आया है कि भारत और रूस में आज भी एटॉमिक पावर सेंटर्स को रेडिएशन से बचाने के लिए गाय के गोबर की शील्डिंग की जाती है।
4: रूस के आसपास के इलाके के लोग तो इस मामले में इतने जागरूक हैं कि किसी परमाणु दुर्घटना के समय रेडिएशन से अपनी हिफाजत सुनिश्चित करने के लिए वे अपने घरों को गाय के गोबर से रेडिएशन प्रूफ बना लेते हैं। यहाँ तक कि नासा के मानव युक्त स्पेस कैप्सूल को रेडिएशन से बचाने के लिए गाय के गोबर की एक पतली कोटिंग की जाती है।
2: गाय के गोबर में रक्षा करने का जो गुण पाया जाता है, उसने इसे धार्मिक महत्व का बना दिया है। धार्मिक कार्यक्रमों में भी अगर यज्ञ वेदिका बनानी हो तो पहले उस जगह को गोबर से लीपकर पवित्र बनाया जाता है। श्रोताओं, यहाँ पर शब्दों पर ध्यान दें। गोबर से लीपकर पवित्र बनाया जाता है, तो क्या बात होगी उस प्राणी की जिसका मल तक इतना पवित्र हो।
4: एक वाक्य सुनाते हैं आपको। बनारस के पास रामनगर की एक पुरानी रियासत थी। एक बार राजा के कोई संतान न हुई। प्रश्न यह उठा कि उत्तराधिकार किसे दिया जाए। अंत में सोचा गया कि इसके लिए लोगों की परीक्षा ली जाए। कुछ लोगों को भोजन पर बुलाया गया। भोजन के बाद हाथ धोने की जगह पर एक टोकरी में साबुन और दूसरी टोकरी में गोबर रख दिया गया। केवल एक ही व्यक्ति ऐसा निकला जिसने गोबर से हाथ धोए। आप समझ गए होंगे कि गद्दी उसे ही मिली थी।
2: गोबर गैस प्लांट हमारे किसानों के लिए कितने फायदेमंद है ये तो आप जानते ही हैं। ये उनके घर में गैस का चूल्हा जलाते हैं और खेतों में सोना उगाते हैं। इस संबंध में हाल ही में एक आईटी कंपनी द्वारा एक शोध कराया गया। इस शोध में पाया गया कि 10,000 गायों की क्षमता वाली डेयरी में हर साल 2,00,000 मीट्रिक टन खाद पैदा की जा सकती है और हर दिन 3 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है।
4: गाय के एक अन्य प्रोजेक्ट गोमूत्र की बात करें तो यह हर तरह की बीमारियों के लिए कितना फायदेमंद होता है हम बार बार सुनते आ रहे हैं। कहते तो यहाँ तक हैं कि अगर टीबी का मरीज एक निश्चित समय तक गाय की बच्चे के मूत्र का सेवन करे तो उसकी टीबी जड़ से उखड़ जाती है। अहमदाबाद के पास एक रिसर्च लैब में तो गोबर व गोमूत्र का इस्तेमाल करके सीरीज ऑफ मेडिसिन बनाई जा रही है। इस लैब का दावा है कि सांसों की दुर्गंध से लेकर के कैंसर तक की बीमारियां इन दवाओं से ठीक हो सकती हैं। यहां काउ प्रोडक्ट के रूप में साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, मॉस्किटो क्वाइल से लेकर के अनगिनत आइटम्स बनाए जा रहे हैं।
2: इस लैब के कुछ शोध नतीजे हम आपको भी सुनाना चाहेंगे। गाय के ताजे गोबर पर नंगे पांव चलें, ये बैक्टीरिया मारता है और घाव भरता है। गाय का सूखा गोबर त्वचा पर मलने से डेड स्किन निकल जाती है और रक्त संचार तेज हो जाता है। एक 42 वर्षीय गृहिणी अपने ब्लॉग में लिखती हैं, मेरा विश्वास कीजिए, अपने लीवर की बीमारी में मैंने एलोपैथ आजमाया, होम्योपैथ आजमाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ, पर आज गौमूत्र के कारण मैं स्वस्थ हूँ।
4: कहते हैं जो लोग गाय दोहने का काम नियमित रूप से करते हैं वे कम बीमार पड़ते हैं। कारण यह है कि गौमूत्र के वेपर उनकी सांसों के माध्यम से शरीर में पहुंचते रहते हैं।
2: प्राचीन ग्रंथों में जिक्र मिलता है कि गाय की पीठ पर सूर्य केतु नामक एक नाड़ी पाई जाती है जो नेगेटिव रेडिएशंस को सोख लेती है और वातावरण को स्वच्छ रखती है। मतलब ये कि जितनी अधिक गाय उतना स्वच्छ वातावरण।
4: गाय के घी की भी बड़ी महिमा मिलती है। आपने भी सुना होगा कि तमाम तरह की बीमारियों में गाय का पुराना घी इस्तेमाल होता है। कहते हैं जब हवन में गाय के घी की आहुति दी जाती है तो इससे उठने वाला धुआं धरती के ओजोन परत को मजबूत करता है। श्रोताओं, आप सुनते होंगे कि इस समय ओजोन परत को हो रहे नुकसान से हमारे साइंटिस्ट कितने चिंतित हैं।
2: हाल ही में मीडिया में इस बात की चर्चा जोर शोर से हुई कि गाय ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन ही लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। हालांकि किसी सर्टिफाइड लैब ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है, पर अगर ऐसा है तो ये बहुत ही विलक्षण बात है और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही फायदेमंद।
4: श्रोताओं, आज तो हमने ठान ही लिया है कि गाय से पूरा परिचय आपका कराकर ही छोड़ेंगे। तो लीजिए हाजिर है गाय के संबंध में कुछ और ऐसी जानकारियां जो शायद आपने अभी तक न सुनी हो।
2: गाय सीढ़ी चढ़ तो सकती है पर उतर नहीं सकती, और इसकी वजह यह होती है कि उसके घुटने ठीक से मुड़ नहीं पाते। दूसरी जानकारी, गायों में सूंघने की क्षमता जबरदस्त होती है। वे लगभग 10 किलोमीटर दूर तक की चीजों को सूंघ लेती हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी, अगर दूध की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा दूध होलस्टीन नस्ल की गाय ही देती है। वैसे भी दुनिया में 90% दूध गायों से ही प्राप्त किया जाता है।
4: एक गाय साल भर में औसतन 10,000 टन गोबर की खाद प्रदान करती है। कहा जाता है कि अगर गाय न रहती तो आज जंगल देखने को न मिलते। आप अचरज में पड़ गए ना। दरअसल जलाऊ ईंधन की भारी पूर्ति गोबर के उपलों से हो रही है, नहीं तो लोग जलाऊ लकड़ी के लिए अब पूरे के पूरे जंगल साफ कर चुके होते। गायें औसतन 25 साल जिंदा रहती हैं, लेकिन शर्त यह है कि लोग उन्हें जीने दें। श्रोताओं, वैसे तो हर देशभक्त को अपना देश दुनिया में सबसे न्यारा लगता है, पर भारत के संदर्भ में यह एक सच्चाई है। लोग कहते हैं कि बरसात होने पर भारत की मिट्टी में जो सौंधी सौंधी खुशबू उठती है, वैसी विदेशों में नहीं उठती।
2: गायों की बात करें तो दुनिया में दुधारू गायें एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन उन्हें देखकर एक सुस्ती का एहसास होता है। इसके उलट भारत की गायें काफी फुर्तीली होती हैं। उनके देखने, समझने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति बड़ी ही जबरदस्त होती है। शायद इसीलिए कहावत है कि भैंस का दूध वजन बढ़ाता है, जबकि गाय का दूध दिमाग।
4: बिल्कुल ठीक कहा आपने। श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम संस्कृति संवाद, और आज हम चर्चा कर रहे थे गाय की महिमा की। इसका आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने, और स्वर थे प्रमोद शर्मा
2: और कंचन राजानी के।
4: अब हमें आज्ञा दीजिए,
2: नमस्कार।
4: अगले सप्ताह कुछ नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे।

भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है।
3: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती

मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूं आज का भारत भारती कार्यक्रम। श्रोतो, आज हम आपको इस कार्यक्रम में सुनवाने जा रहे हैं बघेली लोक संगीत। प्रस्तुत कर रही हैं शीला त्रिपाठी।

आज मैं बारिश से संबंधित कुछ चुने हुए बघेली लोकगीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। बघेली लोकगीतों में सबसे पहले मैं अपनी प्रस्तुति हिंडुली से करूंगी। हिंडुली गीत बारिश जब शुरू होती है तो गांव में महिलाएं जो है धान का रोपा लगाती हैं, उस समय सब मिलकर गाती हैं। मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ।

अनुसार श्रावण मास में झूले डालने की प्रथा है और हमारे बघेलखंड में भी झूला डलता है और हम झूला गीत गाते हैं। उन्हीं झूला गीतों में से एक झूला गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ।

हमारे ग्रामीण परिवार में वहाँ का जो पुरुष समुदाय है वो बाहर प्रदेश में कमाने के लिए चला जाता है और बारिश के दिनों में केवल घर में महिलाएं ही रहती हैं। तो जो महिलाओं के ऊपर गुजरती है बारिश के दिनों में, खपड़ैल मकान रहते हैं, उसका मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा।

शंकर के जितने भी रूप हैं उनमें सब में विविधता पाई जाती है, उतनी शायद अन्य किसी देव में नहीं पाई जाती। लोग परंपरा माने भगवान भोला और माँ गौरा के रूप में अपने अपने रूप में किस तरह से प्रकट करता है, आइए सुनते हैं इस श्रृंगार समा

के बाद बोने के समय किसान प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, बारिश होगी तभी हरियाली आएगी और हमारा अन्न फलेगा और फूलेगा। गाय को चारा नहीं मिलेगा तो गाय के बछड़े को दूध भी नहीं मिलेगा। तो मेवा जी, आप बरसों ने धरती नीप जे, दुनिया में होवे शुभ काल, मेवल राजा आप बरसों तो धरती नीप जे।

राखी का त्यौहार आते ही बहनें अपने पीहर को जाने के लिए खुशी और उल्लास के साथ तैयारी करने लगती हैं। उसी खुशी का वर्णन इस गीत में प्रस्तुत है। सुनो हो सहेली ओ अलबेली, सावन महीनो आयो महाराज, बीरज के राखी बांधा गा।

जब सावन के झूले गांवों में बंद जाते हैं, तब सब सखियां मिलकर झूला झूलने जाती हैं। झूला झूलते समय उसे जब डर लगता है, और डर और घबराहट को हम इस गीत में प्रस्तुत करेंगे, जिसके बोल हैं, ओ सहेली झूला चढ़े तो डर लागे वो, मन दूरो दूरो भागे वो।

शादी के बाद ससुराल में जब लड़के को झूला झूलने के लिए उसकी सखियां बुलाने आती हैं, तब उसे ये संकोच होता है कि झूला झूलने की इच्छा कामना को वो अपने सास ससुर को कैसे बताएं, कैसे कहें कि मुझे झूला झूलना है, मस्ती करना है, खुशियां लेना है। तो नदियां किनारे झूले बांधे हो कि सैया हमारी झूलवाने आजे हो, तो आई झूला।

बरसात के बाद जब चारों ओर हरियाली छाती है तब पूरी धरा हरियाली से श्रृंगारित हो जाती है। हर तरफ हरा भरा माहौल होता है। हो हरियाली आंगन छाई धरती माता को सिंगार, धरती माता को सिंगार, आता जाता की मनवा। अंतिम प्रस्तुति के साथ ये गीत प्रस्तुत है।

0: आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने शीला त्रिपाठी से बघेली लोक संगीत सुना
1: और सोनी पवार और उनकी सखियों का बुंदेली लोक गायन।
0: अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है, इजाजत दीजिए प्रमिला को, नमस्कार।
2: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को मेरा शत शत प्रणाम।
1: धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।
0: मैं हूं उदित नारायण, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: कुछ यादें उन्हें भी कर लो।
1: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

मैं अशोक चक्रधर FM रेडियो का अभिनंदन करता हूं जो 90.8 पर आप सुनते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इसका प्रसार और प्रचार निरंतर हो रहा है। ये रेडियो आज़ाद हिंद है। आज़ाद हिंद हमें याद दिलाता है नेताजी सुभाष की, याद दिलाता है हमारे स्वाधीनता संग्राम की, याद दिलाता है हमारे गौरव की। इस गौरवशाली परंपरा को मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूँ।

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत प्रमिला के साथ।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 172 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रावरुणी, देवता हैं मरुद्गण, छंद है त्रिष्टुप।
1: चित्रो वोस्तु यमश्चित्र ऊति सुदानवः मरुतो अहिभानवः। हे श्रेष्ठ दानवीर अक्षय तेज संपन्न मरुतो, आपकी गति आश्चर्यजनक है, संरक्षण सामर्थ्य भी विलक्षण है। आरे सावह सुदानवो मरुत रिंजति शरूः, आरे अश्मा यमस्यथ। हे श्रेष्ठ दानवीर मरुद्गण, आपके तीव्र गति से शत्रु समूह पर फेंके गए शस्त्र हमसे दूर रहें। जिस वज्र से आप शत्रुओं पर प्रहार करें वह भी हमसे दूर ही रहें। तृणस्कंदस्य नु विषः परिवृंत सुदानवः, ऊर्ध्वान् नः कर्त जीवसे। हे श्रेष्ठ दानवीर मरुद्गण, तिनके के समान सुगमता से नष्ट होने वाले इन प्रजाजनों को आप पतन के मार्ग से रोकें। हम प्रजाजनों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर दीर्घायु प्रदान करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 172 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

मूर्खों का संग न करना, विद्वानों का संग करना और पूजनीय पुरुषों का सत्कार करना उत्तम और शुभकारक कर्म है।

ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं, उनमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहां भी हो, चाहे जिस हालत में हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है।

हम ईश्वर की भक्ति ईश्वर को पाने के लिए करते हैं। भक्ति का वास्तविक अर्थ है ईश्वर से मिलने के लिए चलना, और यदि हम ईश्वर को पा लिए तो इसी को मोक्ष कहते हैं।

निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का कार्यक्रम सांदगीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। जिंदा है वो जो गूंगे हुए वक्त में बोल रहा है, जिंदा है वो जो भीषण प्रलय प्रवाह में फिर फिर चल रहा है, जिंदा है वो जो सघन अंधकार में किरण किरण जमाकर नई राह खोल रहा है। ऐसे ही अनगिनत जिंदा लोगों की चुप कहानियां हमारे स्वाधीनता के इतिहास के पन्नों में सोई पड़ी हैं। यूं ही जाने अनजाने वक्त बेवक्त वतन का राग उन्हें छू लेता है और जी उठती हैं वो कहानियां, कुछ शब्द चित्र बनते हैं, आप तक पहुंचते हैं। आज जो पन्ना खुला उस पर दर्ज है हमारे पहले स्वाधीनता संग्राम 1857 से भी 33 साल पहले हुई शहादत की कहानी। सन 1824 की ये घटना नरसिंहगढ़ रियासत के युवराज कुंवर चैन सिंह और उनके साथियों की शहादत से जुड़ी हुई है, जो कुंवर चैन सिंह को इस अंचल के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में प्रतिष्ठित करती है। व्यापार के नाम पर अंग्रेज भारत आए, यहाँ का जायजा लिया और उनमें अधिकार की भावना बलवती हुई। जब छोटी छोटी रियासतों को उन्होंने हड़पना शुरू किया तो इसके विरुद्ध आवाज भी उठने लगी, क्योंकि भारत में व्यापारी के रूप में आई ईस्ट इंडिया कंपनी के बदले हुए तेवर के चलते राजे रजवाड़े और आम नागरिक बहुत प्रताड़ित और व्यथित हो रहे थे। अपनी विस्तारवादी लिप्सा के कारण कंपनी जहां रजवाड़ों और रियासतों को अधिकार विहीन कर रही थी, वहीं व्यापार के बहाने नागरिकों का दोहन भी कर रही थी। देश में जब अंग्रेजी कुशासन का दौर चल रहा था, बहुत से लोग थे जो इस अन्याय को सह रहे थे, समर्पण कर रहे थे। अंग्रेजी सेना को सीधे सीधे चुनौती देने का, उन्हें ललकारने का साहस रियासतों में नहीं था, फलतः उन्होंने गुलामी स्वीकार ली। लेकिन उन्हीं हालात में मालवा में सीहोर की धरती पर कुंवर चैन सिंह ने विद्रोह का बिगुल बजाया।

सन 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भोपाल के तत्कालीन नवाब से समझौता करके सीहोर में 1000 सैनिकों की छावनी स्थापित की। कंपनी द्वारा नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक को इन फौजियों का प्रभारी बनाया गया। इस फौजी टुकड़ी का वेतन भोपाल रियासत के शाही खजाने से दिया जाता था। समझौते के तहत पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक को भोपाल सहित नजदीकी नरसिंहगढ़, खिलचीपुर और राजगढ़ रियासत से संबंधित राजनीतिक अधिकार भी सौंप दिए गए। बाकी लोग तो चुप रहे, लेकिन इस फैसले को नरसिंहगढ़ रियासत के युवराज कुंवर चैन सिंह ने गुलामी की निशानी मानते हुए स्वीकार नहीं किया। अंग्रेजों की इस नीति के खिलाफ दिलों में विद्रोह पनपने लगा। अलग अलग रियासतों के राजा भी समय समय पर मिलकर इस खतरे पर विचार करने लगे। ये खबर अंग्रेजों को चिंतित कर रही थी और ऐसे राजाओं के विरुद्ध उनकी रणनीति बनने लगी। उन्होंने हर राज्य में कुछ दरबारी खरीदे जो उन्हें सारी सूचनाएं देते। नरसिंहगढ़ पर भी अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि थी। उन्होंने आनंद राम बख्शी और रूप राम वोहरा नामक दो मंत्रियों को धन का लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। इसी बीच इंदौर के होलकर राजा ने सभी छोटे राजाओं की बैठक बुलाई। कुंवर चैन सिंह भी इसमें शामिल हुए। ये सूचना दोनों विश्वासघाती मंत्रियों ने अंग्रेजों तक पहुंचा दी। कुंवर चैन सिंह को रियासत से गद्दारी कर रहे दोनों मंत्रियों की सच्चाई मालूम हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप उन्होंने आनंद राम बख्शी और रूप राम वोहरा को मार दिया। रियासत में गद्दारी और कटुता का वातावरण बन चुका था। मंत्री रूप राम के भाई ने कुंवर चैन सिंह के हाथों अपने भाई के मारे जाने की शिकायत कलकत्ता स्थित गवर्नर जनरल के दफ्तर में की। गवर्नर जनरल के निर्देश पर पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक ने कुंवर चैन सिंह को तलब किया। कुंवर चैन सिंह समझ चुके थे कि अब खुले प्रतिरोध का समय आ चुका है। इस अत्याचार को अब और नहीं सहा जा सकता है। इसलिए मन ही मन उनका संकल्प दृढ़ हो चुका था। जीने मरने के भय से वो बिल्कुल मुक्त हो चुके थे।

मैडॉक ने भोपाल के नजदीक बैरसिया में एक बैठक रखकर कुंवर चैन सिंह को यहां बुलाया। कुंवर चैन सिंह आगे आने वाले वक्त की आहट पहचान चुके थे। बैठक में मैडॉक ने कुंवर चैन सिंह के सामने दीवान आनंद राम बख्शी और मंत्री रूप राम वोहरा की हत्या के अभियोग से बचने के लिए दो शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि नरसिंहगढ़ रियासत अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करे तथा चैन सिंह पेंशन लेकर सपरिवार काशी में रहें, और दूसरी शर्त थी कि क्षेत्र में पैदा होने वाली अफीम की पूरी फसल सिर्फ अंग्रेजों को ही बेची जाए। कुंवर चैन सिंह ने दोनों ही शर्तें ठुकरा दी। इस पर मैडॉक ने उन्हें 24 जुलाई सन 1824 को सीहोर पहुंचने का आदेश दिया। चैन सिंह को अंग्रेजों की बदनीयती का पूरा अंदाजा था। सारंगपुर के पास ग्राम धनौरा के निवासी दो सगे भाई हिम्मत खां और बहादुर खां उनके बेहद विश्वस्त साथी थे। इन दोनों साथियों और 43 सैनिकों को साथ लेकर वे निर्धारित तिथि को सीहोर पहुंचे। जनरल ने मुलाकात होने पर कुंवर चैन सिंह और उनकी तलवारों की तारीफ करते हुए एक तलवार ले ली। इसके बाद उसने दूसरी तलवार की तारीफ करते हुए उसे भी लेना चाहा। कुंवर चैन सिंह को ये भांपते देर नहीं लगी कि वो उन्हें निशस्त्र करके गिरफ्तार करना चाहता है। फिर तो उन्होंने सीधे हमला कर दिया। जनरल पूरी तैयारी से आया था, पूरी सैनिक टुकड़ी उसके साथ थी, पर कुंवर चैन सिंह दृढ़ संकल्प के साथ थे कि चाहे मृत्यु का वरण ही क्यों न करना पड़े, किंतु पराधीनता स्वीकार नहीं। कुंवर चैन सिंह और उनके मुट्ठी भर विश्वस्त साथियों ने शस्त्रों से सुसज्जित अंग्रेजी फौज से डटकर मुकाबला किया। ये लड़ाई घंटों चली। कुंवर चैन सिंह और उनके साथियों का साहस देखने लायक था। इस युद्ध में अनेक अंग्रेजों को मौत के घाट उतारते हुए 24 जुलाई सन 1824 को लोटनबाग सीहोर छावनी में कुंवर चैन सिंह शहीद हो गए। उनके इस बलिदान की चर्चा घर घर फैली। आज नरसिंहगढ़ के हार बाग में बनी उनकी समाधि पर लोग बड़ी श्रद्धा से झुकते हैं। इस इलाके में उन्हें ग्राम देवता कहकर पूजा जाता है। नमन मां भारती के ऐसे महान वीर सपूत को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: दोस्तों नमस्कार, 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।
1: आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने लोक गायक शशि कुमार पांडे जी। आप मूलतः बघेली लोकगीतों की सौंधी मिट्टी की खुशबू बिखेरते हैं। आकाशवाणी दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार हैं। भारत सरकार के संस्कृति विभागों द्वारा आयोजित बहुत से कार्यक्रमों में आपसे मंच शोभायमान हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्टूडियो में स्वागत।
3: धन्यवाद।
1: आज हमारे स्टूडियो का भी सौभाग्य है कि आज हमें बहुत सारे बघेलखंडी लोकगीत सुनने को मिलेंगे। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आप लोकगीतों को, जैसे कि सभी कहते हैं कि वो अपने समय की सबसे पुरानी और सशक्त कविताएं हैं, आप लोकगीतों का वर्गीकरण कैसे करेंगे?
3: बिल्कुल सही बात है। संगीत की शुरुआत ही मेरे समझ से लोक से ही हुई है। उसको व्यवस्थित रूप तो बाद में दिया गया, जब स्वरों के विषय में लोगों ने सीखना शुरू किया तो फिर व्यवस्थित संगीत शुरू हुआ। बाकी यह प्रकृति से सीधे लोक में आया है। पानी के बहने की आवाज़, पत्तों के डोलने से उत्पन्न आवाज़, प्रकृति से जो ध्वनियाँ निकली वो संगीत के रूप में लोक में आई
1: जी,
3: और लोगों ने उनको गुनगुनाना शुरू किया और उन गुनगुनाने के साथ में उनको शब्दों के साथ मिलाने का प्रयास किया। तो पहले लोक संगीत था, इसके बाद लोक गीतों का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा मेरा मानना है। लिखा भी कई जगह मैंने इसी तरह से लगभग पाया। अब जब लोक गीत आ गए तो विभिन्न अवसरों पर उनका उपयोग होने लगा
1: जी,
3: और जब विभिन्न अवसरों पर उपयोग होने लगा तो धीरे धीरे लगभग हर अवसर पर, हर अच्छे मौके पर इनका उपयोग शुरू हुआ, लोग गाने लगे और कालांतर में बहुत संख्या हो गई। और आते आते आते आते हमारी पीढ़ी तक ये लोक संगीत आया, जब तब तक इतना इसका क्षेत्र विस्तृत हो चुका था कि अब हमको समझने के लिए या आने वाली पीढ़ी को समझाने के लिए एक तरीका अपनाया गया कि उसको व्यवस्थित रूप से हम समझ सकें और समझा भी सकें
1: जी।
3: तो फिर हम लोगों ने उसको तीन मुख्य भागों में उसको विभक्त किया। एक तो संस्कार गीत
1: जी।
3: हमारे यहाँ 16 संस्कार, बड़े महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं और लगभग हर संस्कार में लोक गीतों का गायन होता है
1: जी।
3: दूसरा एक पक्ष होता है ऋतुपरक गीत। लोक संगीत मतलब जो सामने दृश्य है हमारे, उससे संबंधित गीत जो हमारे अंदर से फूटे वही है लोक संगीत। विवाह का दृश्य हो, या झूला पड़ा है झूला का दृश्य हो, या कि एक शिशु पैदा हुआ है उस समय खुशी का गीत, मतलब जो दृश्य हमारे सामने है उसी से संबंधित गीत अगर हमारे मन से निकले वही है लोक गीत।
1: लोक का गीत।
3: इसी तरह से जो संस्कार गीत हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा कुछ ऋतुएं हैं हमारे यहाँ, ऋतुओं के आधार पर त्यौहार होते हैं, त्यौहारों के गीत हैं। और तीसरा श्रमिक गीत कह सकते हैं, काम करते हैं खेतों में, खलिहानों में, खदानों में, सड़कों में, कहीं भी दिन भर पसीना बहाते हैं और शाम को जब आते हैं तो फिर मस्ती के साथ वो अपने गीतों को गाते हैं और सभी महिला पुरुष मिल करके उत्सव मनाते हैं, गाते हैं, तो वो हो गया श्रमिक गीत। तो तीन तरह से इसको विभक्त कर सकते हैं।
1: लोकगीतों में हमेशा से राम के जीवन को स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली में गहराई से उतरते देखा गया है। प्रभु श्री राम को बघेलखंड ने बहुत आत्मीयता से रिश्तों में बांधा है। और आप अगर आज के इस मुलाकात की, बातचीत की शुरुआत हम प्रभु श्री राम के सोहर से करें तो मुझे लगता है कि हम सबका बड़ा सौभाग्य होगा।
3: बड़ी महत्वपूर्ण बात है और आपने बघेलखंड को इतना मान दिया, इसके लिए हम अभिभूत हैं और इस रेडियो के प्रति आभार भी ज्ञापित करते हैं कि इतना मान दिया और हमारी परंपराओं का हमारे यहाँ प्रचलित जो लोकगीत हैं उनको आप जानना चाह रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो बघेलखंड है, बघेलखंड में भगवान राम व्याप्त हैं
1: जी,
3: लोकगीतों में तो व्याप्त हैं ही, लोगों की दिनचर्या में
1: व्याप्त हैं।
3: और हमारे यहाँ हर जन्म लेने वाला शिशु
1: जी
3: राम होता है, और हर जन्म लेने वाली कन्या माँ जानकी स्वरूपा होती है
1: जी।
3: इसीलिए जैसे ही खबर आती है कि बेटे का जन्म हुआ है, वैसे ही हमारे यहाँ की महिलाएं अनायास ही बोल पड़ती हैं। कोई भी महिला शुरू कर देगी

0: हर गीत में राम है। प्रायः जितने शोहर हैं हमारे यहाँ उनमें अधिकांश गीतों में राम ही हैं, और जन्म में ही नहीं विवाह भी जब होता है तो उस समय का वर चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे जिस हैसियत का हो, माली हालत उसकी क्या है ये मायने नहीं रखती है। यदि हमारे यहाँ महाराज साहब के किले में अगर शादी हो रही है तब भी वो वर राम होगा। मतलब हमारे यहाँ के लोक संगीत में भेदभाव नहीं है, वो सबको समान मानता है, चाहे राजा के घर का वर हो
1: जी
0: और चाहे सड़क के किनारे रह रहे एक मजदूर के बेटे का।
1: इतनी अच्छी बात है, समरसता का ये भाव आपको कितनी समृद्धता देता है, कितना मन में सौहार्द लाता है। लेकिन सोहर के बाद अगर हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी कि एक अगर आप हमें विवाह गीत, द्वारचार गीत या बन्ना अगर कोई अच्छा सा हमें आज हमारे श्रोताओं के लिए सुनाएं।
0: हम सुनाते हैं, पर इसके क्रम में आपको बता दूं
1: जी,
0: थोड़ा सा मैं धृष्टता करना चाह रहा हूं कि विवाह के पहले हमारे यहाँ उपनयन संस्कार होता
1: जी,
0: है
1: जी
0: और बघेलखंड में उसको बरुआ या व्रतबंध कहते हैं, तो उसमें भी भगवान राम की ही छवि देखते हैं हमारे यहाँ।
1: जी
0: हमारे यहाँ एक रस्म होती है व्रतबंध के बाद जो बटुक होता है वो काशी पढ़ने जाता है, लेकिन लोक में मान्यता ये है कि भांजा नाराज होके जा रहा है
1: जी,
0: वो रिसाता है, उसको रिस लगती है, गुस्सा लगती है किसी कारण से मामा के ऊपर, तो फिर मामा उसको मनाने जाता है।
1: जी जी जी
0: जब मामा मनाने जाता है तो मामा के साथ में मामी और जो गोतीने पड़ोसीने होती हैं और जो परिवार की महिलाएं होती हैं, कुछ पुरुष वर्ग भी साथ में जाते हैं
1: जी।
0: उस बटुक के।
1: हाँ।
0: तब वो रास्ते में गाते हैं, हमारे यहाँ एक गीत बड़ा महत्वपूर्ण होता है गईलहाई।
1: हाँ।
0: गईल माने रास्ता।
1: हाँ।
0: और गईलहाई माने रास्ता में गाया जाने वाला गीत। तो जब भी किसी रस्म को पूरा करने के लिए हमारे घर की महिलाएं जाएंगी
1: जी।
0: तो रास्ते में गीत निर्धारित है, वो गाएंगी ही। तो जैसे वो बटुक निकलता है घर से और मामा पीछे पीछे मनाने के लिए चलो, वो घर के बाहर का दृश्य होता है
1: जी।
0: तो मामा पीछे से मनाने चलेगा तो कोई न कोई महिला के मुख से अनायास ही ये गीत फूट पड़ेगा

0: ये गीत हमारे यहाँ होता है।
1: और राई नॉन भी उसारते हैं कई जगह,
0: हाँ,
1: हाँ,
0: फिर वो मामा उसको
1: कि
0: मना
1: भांजे
0: करके
1: को
0: लेता है,
1: नजर ना लग
0: वो
1: जाए।
0: कुछ नेग देता है,
1: जी
0: टिक्का लगाते हैं,
1: हाँ
0: राई नॉन उतारते हैं,
1: हाँ
0: ये सारी चीज़ें होती हैं। मामी ये सब करती है और मामा उनको कुछ पैसे या कि अपनी हैसियत के अनुसार कुछ गहना, घड़ी, कुछ भी दे करके, और फिर भांजे को वापस छोटे होने पर, व्रत बंद होने की परंपरा रही है, तो फिर उसको गोदी में लेकर के
1: लेकर
0: वापस।
1: आते हैं। सर, मुझे यहाँ ये लगता है कि हम लोग कितने धन्य हैं
0: ये
1: कि हमारे यहाँ पल पल के लिए गीत
0: हाँ,
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल
1: हमको
0: बिल्कुल,
1: डीजे वाले बाबू से कहने की जरूरत नहीं
0: नहीं
1: है
0: नहीं
1: कि
0: कोई
1: कोई
0: जरूरत,
1: गाना बजा
0: कोई
1: दो।
0: जरूरत नहीं।
1: हमारे यहाँ तो हर पल पर एक गीत
0: हाँ
1: है।
0: हाँ
1: आप
0: बिल्कुल।
1: देखिए, रूठने पे गीत है, मनाने पे गीत है, और सबसे बड़ी बात कि कोई रूठाराठी होती भी नहीं,
0: नहीं,
1: क्योंकि
0: कुछ
1: हमारे
0: नहीं
1: यहाँ तो
0: होता है।
1: गारी भी गीत है।
0: अच्छा, कुछ भी होता है तो वो विनोद के लिए होता है,
1: हाँ
0: वो रूठना होता है तो विनोद के लिए, मनाना होता है तो भी विनोद के लिए। अगर कहीं सही सही हुआ है तो
1: हाँ
0: हमारे यहाँ के गीत इस तरह के हैं कि उसको विनोदपूर्ण बना देते हैं।
1: बिल्कुल। तो द्वारचार का कोई गीत आपको अगर याद आ रहा हो, राम बन्ना जब बनकर आते
0: हाँ,
1: हैं।
0: बन्ना का भी गीत है जिसमें राम हैं, और जैसा मैंने बताया कि हर वर राम होता है और हर कन्या माँ जानकी स्वरूपा
1: जी
0: होती है, तो उस समय जब बन्ना गाया जाता है तो बन्ना में भी लोग गाते हैं कि अब ये देखिए, ये सारे गीत जो हैं हमारे यहाँ महिला स्वरों में गाए जाते हैं, पर सुनते सुनते मुझे कुछ मुखड़े और कुछ अंतरे याद हैं,
1: जी
0: तो पूरा पूरा गीत मैं नहीं सुना पा रहा हूँ आपको, पर वानगी बतौर हम आपको कुछ गीत
1: बिल्कुल।
0: बताए दे रहा हूँ। तो जैसे ही वर आएगा वैसे कोई न कोई महिला शुरू हो जाएगी।

वर को राम ही मानेंगे। यहाँ तक कि अन्य गीत तो जो होते हैं हमारे यहाँ एक विशेष गीत होता है गारी। तो गारी मजाक वाली जो गारी गाई जाती हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो एक स्वस्थ गारी गाई जाती है उसमें राम के किसी न किसी जीवन के प्रसंग का उल्लेख होता है। एक गारी गाई जाती है हमारे यहाँ, दो लाइन याद आ रही है मुझे,

0: इस तरह से गाड़ी की शुरुआत होती
1: क्या बात है, मन चाहता है कि सुनते ही जाएं, लेकिन राम से बड़ा राम का नाम, तो क्यों ना आपसे लगे हाथ हम ये भी जान लें कि बघेलखंड में कहते हैं कि राम कण कण में व्याप्त हैं, आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे?
0: बिल्कुल सही सुना है आपने, और जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं। और रेडियो के लगभग हर श्रोता को ये मालूम होगा कि भगवान राम की तरुणाई के 11.5 वर्ष बघेलखंड में ही बीते हैं। वनवास का अधिकांश समय उन्होंने चित्रकूट में व्यतीत किया, और चित्रकूट परिसर में ही हमारा बघेलखंड निवास करता है। तो स्वाभाविक है कि वहाँ के लोकगीतों में तो राम व्याप्त हैं ही, वहाँ के संस्कारों में राम हैं, और वहाँ की संस्कृति में राम हैं, और यहाँ तक कहें कि वहाँ की दिनचर्या में राम व्याप्त हैं। वहाँ के खेतों में, वहाँ के खलिहानों में, वहाँ के फसलों में, जहाँ भी आप देखें राम हैं, वहाँ व्याप्त हैं राम। जंगलों में, शहरों में, पहाड़ों में राम है वहाँ
1: जी
0: निश्चित रूप से। इतना हमारे यहाँ के लोकगीतों में और अन्य प्रसंगों में जो राम हैं, इतना मैं समझता हूँ उसका मुख्य कारण यही है कि 11.5 वर्ष, और वो भगवान राम के 11.5 वर्ष जितना हम लोग पढ़ सके, सुन सके एक मानवीय दृष्टिकोण से, तो उनके जीवन के वो सर्वोत्कृष्ट 11.5 वर्ष थे। फिर उसके बाद से फिर उनके ऊपर विडंबनाएं आना शुरू होती हैं, तो फिर अंत तक वो धर्म संकट का ही जीवन जो हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि अब उनके लिए क्या धर्म संकट, क्या खुशी, क्या गम, जो कुछ भी किया उन्होंने, या कि उनके चरित्र में से जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सारा कुछ हमें दिखाने के लिए, हमें सिखाने के लिए ही है। वो हमारे आदर्श हैं, तो उनके हर परिस्थिति में कुछ न कुछ हमारे लिए संदेश है। पर वो 11.5 वर्ष जो हैं वो सर्वोत्कृष्ट हैं, जो उनके जीवन का मूल उद्देश्य था,
1: जी
0: ऋषियों का सानिध्य, चर्चा, और जो प्रकृति से तादात्म्य, ये सारी चीज़ें उन 11.5 वर्ष में उन्होंने बहुत कुछ दिया। इसलिए हमारा बघेलखंड पूरे भारतवर्ष से कहीं अधिक उनको याद करता है, ऐसा हम लोग मानते हैं।
1: जी
0: अब इसको गारंटी के साथ या चैलेंज के साथ नहीं कहते, लेकिन हमारा मानना है, तो मानने में किसका क्या वश है वो तो माना
1: बिल्कुल
0: जा सकता है।
1: जी, इस देश का मुझे लगता है कि हर शख्स प्रभु श्री राम जैसी मर्यादा, पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जैसा
0: जी।
1: बनना चाहता है, उनके सत्कर्मों को देखकर आगे बढ़ना चाहता है। निश्चित रूप से आपसे जो बात कर करके बीच में जो आपने लोकगीतों की छोटी छोटी सी फुलझड़ियां हमारे लिए उजास बिखेरी है, वो बहुत ही मज़ेदार रही हैं। एक गारी मुझे भी याद आती है, मेरी दादी कहती थी
0: जी
1: कि राम जब बिहाने गए तो वहाँ की महिलाएं चाहती नहीं थी कि ये वापस जाएं अपने ससुराल, तो कहती थी कि तुम्हारा भैया इतना करुआ है, उसे हम गोरा कर देंगे, यहीं रुक जाओ।
0: क्या बात।
1: तो मतलब आप देखिए कि लोकगीतों में कहीं ना कहीं साहस भी होता है। आप सोच सकते हैं कि भगवान से कोई ऐसा ऐसा निवेदन कर सकता है कि तुम्हारे भाई करुआ हैं, यहाँ रुक जा, लेकिन फिर भी लोक की यही खासियत
0: हाँ
1: है
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल।
1: बड़ी मजेदार सी ये बातें होती हैं आपसे।
0: मैं ऐसा समझता हूँ
1: हाँ
0: कि राम इतने नज़दीक हो गए हैं व्यक्ति के,
1: हाँ
0: जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बहुत नज़दीक हो जाता है, तब औपचारिकताएं बहुत मायने नहीं रखती
1: नहीं
0: हैं,
1: रखती।
0: औपचारिकताएं रह ही नहीं जाती,
1: हाँ
0: इतना अपनापन हो जाने के बाद। और राम से इतना नज़दीक लोग अपने आप को मान लेते हैं बहुत जल्दी, उनका व्यक्तित्व इस तरह का है
1: हाँ
0: कि कोई कुछ भी बोल सकता है, उनको कुछ कहना तो है नहीं, मुस्कुराना है उनको,
1: हाँ
0: भगवान राम को।
1: जी
0: तो ये आपकी दादी जी का जो प्रसंग है, ये निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात है। तो क्या वो लोग गाते थे
1: वो
0: उसमें?
1: यही कहती हैं कि वो निवेदन जो कर रही हैं वो इसी तरीके से कर रही हैं
0: जी
1: कि
0: जी
1: तुम्हारे भाई तो पल पल पे गुस्सा होते हैं, तो हम उनका गुस्सा ठंडा कर देंगे।
0: गुस्सा
1: उसके
0: ठंडा
1: अर्थ आपको बता रही हूँ कि जो अंतरे में वो सुनाती थी, वो जैसे हम लोग कभी आपस में झगड़ते थे और ये कहते थे कि हमारे हिस्से का उसने खा लिया, तो हमेशा कहती थी राम जी की चिड़िया, राम जी का
0: राम जी
1: खेत।
0: का खेत।
1: तो आप देखिए कि जीवन में ये कहावतें कितनी उतरी हुई हैं,
0: सही बात है।
1: मतलब आप अगर बुरा हो जाए तो भी प्रभु के ऊपर छोड़
0: हाँ
1: दीजिए,
0: हाँ हाँ
1: अच्छा हो तब तो प्रभु का है ही
0: है ही,
1: कृपा।
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही
1: ये
0: बात।
1: लोग से ही ताकत मिलती है।
0: हाँ बिल्कुल
1: ऐसे
0: बिल्कुल।
1: में कोई और गीत अगर आपको याद आ रहा हो हमारे श्रोताओं के लिए।
0: अब देखिए, गीत हमारे यहाँ के, जैसे मैंने बताया कि लोक गीतों में जितने भी गीत हैं, हर गीत में भगवान राम है। ये तो अभी तक जो अपन चर्चा कर रहे थे, ये संस्कार गीत थे। हमारे यहाँ के जो ऋतुपरक गीत हैं
1: जी
0: और जो श्रम गीत हैं, उनमें भी राम है। जैसे ऋतुपरक गीतों में अगर चलें तो चैती हमारे यहाँ गाते हैं। चैती वैसे सेमी क्लासिकल है, बनारस का चैती, और हमारे पास ये मशहूर है। अवध में भी गाते हैं चैती, लगभग तमाम गाते हैं, तो वो सेमी क्लासिकल है। हमारे यहाँ का लोक गीत है चैती।

0: ये हमारे यहाँ गाते हैं, ये तो हिंदी में है, लोक भाषा में भी, बघेली में भी, भगवान राम जैसे, और भी गीत इसके बाद चले अगर श्रम गीतों में, श्रम गीतों में भी राम है। हमारे यहाँ एक सुआ गीत गाते हैं लोग, सुआ गीत में एक प्रसंग आता है जब रावण सीता का हरण करता है
1: जी,
0: तब गाते हैं, मस्ती के साथ उसमें डांस करते हैं। अब उनके लिए राम का नाम महत्वपूर्ण है, राम का चरित्र महत्वपूर्ण है, उनको उसी में इंजॉय करना है, उसी में आनंद लेना है। अब वो प्रसंग खुशी का है कि गम का, इससे उनसे बहुत लेना देना नहीं है। तो वो जब सीता का हरण करता है रावण, तब वो गाते हैं,

0: बैठे। अब उसको ये गाने के उतना वो भाव में तल्लीन हो जाएंगे कि इस गाने की गति जो है वो बढ़ती
1: बढ़ती
0: जाएगी,
1: जाएगी।
0: और इतना बढ़ेगी कि सामान्य श्रोता अगर उनके बीच में है तो उसके पैर थिरके बिना नहीं रह जाएंगे। अगर थोड़ा भी संगीत उसके अंदर है तो फिर वो बड़े स्पीड में गाएंगे, सिया हरे रामन जाए सियरों में रथ पर बैठे, सिया हरे रामन जाए सियरों में रथ पर बैठे। इन्हीं राम के गीतों को गाते गाते वो शाम से सुबह कर देंगे बड़ी मस्ती, और सुबह फिर से वो इसी तरह से श्रमिक गीत। तो एक और मुझे ध्यान आ रहा है, हमारे यहाँ का अभी विलुप्त प्राय गीत रहा है, उसको मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने बचपन में कभी सुना था,
1: जी।
0: दृश्य देखा था। एक गीत होता है मलेला, उसको हमारे यहाँ बघेलखंड में ही कुछ हिस्से में उसको टप्पा बोलते हैं। तो जब कभी डंफर नहीं हुआ करते थे, बाड़ी वाले ट्रक हुआ करते थे, तो खदानों में गिट्टी लेबरर लोड करते थे और वही जा करके फिर उसको दूसरी जगह अनलोड करते थे। तो जब ट्रक चलता था उसके गिट्टी के ऊपर वो बैठ जाते थे, और उसके ऊपर बैठे बैठे फिर रास्ते में वो मस्ती करते थे और गाते थे। तो उस समय वो मलेला गीत गाते थे, तो
1: जी
0: उसकी शुरुआत वो करते थे राम से।
1: हाँ
0: वैसे जो मलेला गीत है प्रायः देखने में आया है, श्रृंगार रस का गीत है, कभी संयोग श्रृंगार उसमें दिखता है, कभी वियोग श्रृंगार दिखता है, प्रायः दिखता उसमें श्रृंगार रस है।
1: श्रृंगार
0: लेकिन उसकी शुरुआत जो है वो राम नाम से होती है। तो वो नायिका पूछती है

0: शुरुआत वहाँ से होती है।
1: क्या बात है, अभिवादन से लेकर
0: हाँ
1: संदेशा पहुंचाने तक
0: हाँ
1: हर बात में राम व्याप्त
0: राम
1: है।
0: राम व्याप्त है।
1: कितनी अद्भुत महिमा है, और आज की ये बातचीत बहुत ही अच्छी रही है। एक और बात मुझे ऐसे में याद आ रही है, क्योंकि जब लोग की बातें
0: जी
1: छिड़ती हैं तो आपको भी अपनी पुरानी यादें आती हैं। हमारी दादी ये भी कहा करती थी
0: जी
1: कि सृजन से विसर्जन तक
0: हाँ
1: राम है।
0: हाँ बिल्कुल है।
1: आप देखिए कि किसी को कोई आपने जैसे बोला कि राम राम कहे हो, है
0: हाँ
1: ना,
0: हाँ हाँ
1: बस ये
0: हाँ
1: है कि ब्रिज में वो शब्द अलग हो जाते
0: हाँ
1: हैं,
0: हाँ हाँ
1: तरीके अलग हो
0: हाँ
1: जाते
0: बिल्कुल
1: हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन सब वही व्याप्त है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, और लोकगीतों को जिस तरह से आपने समझाया है कि किस तरह से श्रृंगार गीत भी, चाहे वो संयोग श्रृंगार हो, वियोग श्रृंगार हो, ऋतु गीत, उपनयन संस्कार तक के गीतों पर बात हो गई। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आ पाए
0: मैं
1: स्टूडियो।
0: तो अभिभूत हूँ कि लोक गीतों को इतना मान दिया आपने। भगवान राम तो सर्वमान्य हैं,
1: जी
0: और कुछ लोगों के मान देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता
1: जी
0: उनकी प्रतिष्ठा में, लेकिन लोक गीतों को मान दिया है आपने, राम से जोड़ा उनको, तो हमारा पूरा बघेलखंड और बल्कि पूरे भारतवर्ष का जो लोक जगत है,
1: जी
0: खासकर लोक गायन का जगत, उसकी तरफ से मैं आभार ज्ञापित कर रहा हूँ रेडियो का।
1: आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं सर। हम एक बार पुनः अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि लोकगीत हमारी विरासत हैं, हमारी मिट्टी है, और अपनी जड़ों से खुद को जोड़े रखना, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं होता। तो अगर आपको भी ऐसे कुछ अनछुए गीत नज़र आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, तो उन्हें लिखिए और अपने अगली पीढ़ी में पहुंचाने का कष्ट कीजिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमें भारतीय ज्ञान परंपरा को बताती हैं, भारतीय मनीषियों को बताती हैं। तो इन्हें बचा कर रखिए। सर, पुनः एक बार आपका बहुत धन्यवाद। आप
0: धन्यवाद
1: स्टूडियो में आए
0: आपका।
1: और आपने हमें इतने अच्छे अच्छे गीतों के साथ कहानी की तरह सारी बातें बताई, बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आमने सामने में, बघेलखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक शशि कुमार पांडे जी के साथ ये खास बातचीत। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आपके साथ ही मैं आपकी दोस्त मनीषा। आशा है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपके कोई और भी सुझाव है तो हम सहर्ष उसका स्वागत करते हैं। अपने सुझाव देने के लिए हम आपको अपना ईमेल आईडी बता दें, radioazadhind@gmail.com। सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: आमने सामने।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं रचना पाठ, व्याख्यान और बहुत कुछ। आज आपको लिए चल रहे हैं मुशायरे में
1: कि हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले।
2: रास्ता आए, वाह वाह।
1: हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ।
2: क्या कहने से, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह।
1: हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले।
0: ये अखिल भारतीय मुशायरा आयोजित किया गया मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, संस्कृति विभाग द्वारा, कार्यक्रम यादे बशीर बद्र के तहत।

0: तो आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए मुशायरे में।
1: जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर लीजिए जनाबे चित्रांश खरे।
2: एक मतलब दो चार शेर देखें कि बहुत दिन से किनारा कर रहे हैं, बहुत दिन से किनारा कर रहे हैं, बिछड़ने का इरादा कर रहे हैं। बहुत दिन से किनारा कर रहे हैं, मोहब्बत दिल की बीमारी है जिसमें सब अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मोहब्बत दिल की बीमारी है जिसमें सब अपना वक्त जाया कर रहे हैं। और शेर सुने कि मोहब्बत चल रही है रफ्ता रफ्ता, मोहब्बत चल रही है रफ्ता रफ्ता, मगर दो दिल तमाशा कर रहे हैं। मोहब्बत चल रही है रफ्ता रफ्ता, मगर दो दिल तमाशा कर रहे हैं। तुम्हें कुछ दिन निभाना चाहिए था, तुम्हें कुछ दिन निभाना चाहिए था, मुझे भी आजमाना चाहिए था। तुम्हें कुछ दिन निभाना चाहिए था, मुझे भी आजमाना चाहिए था। और शेर सुने कि मैं अब कमजोर साबित हो चुका हूँ, मैं अब कमजोर साबित हो चुका हूँ, मुझे आंसू छुपाना चाहिए था।
1: वाह वाह,
2: मैं अब कमजोर साबित हो चुका हूँ, शुक्रिया
1: मुझे,
2: मैं अब कमजोर साबित हो चुका हूँ, मुझे आंसू छुपाना चाहिए था। शेर सुने कि तेरे जलवों में बस चिंगारियां थीं, तेरे जलवों में बस चिंगारियां थीं, मुझे लहजा पुराना चाहिए था। तेरे जलवों में बस चिंगारियां थीं, मुझे लहजा पुराना चाहिए था। और शेर सुने कि नजाकत और बढ़ जाती तुम्हारी, नजाकत और बढ़ जाती तुम्हारी, जरा सा रूठ जाना चाहिए था।
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
2: नजाकत और बढ़ जाती तुम्हारी, जरा सा रूठ जाना चाहिए था। अब थोड़ी बड़ी बहर की तरफ बढ़ता हूँ, ये गजल सुने कि दिल की धड़कन और फिर आंखों का पानी हो गए। बशीर बद्र साहब के साथ मेरा बहुत बैठना उठना रहा है शुरुआती दौर में, और मेरी ये खुशनसीबी है कि मुझे बशीर बद्र साहब का भी साया मिला, और वसीम साहब के साथ तो मैंने 13-13, 14-14 दिन एक साथ हम लोग रहे और काम किया।
1: क्या बात,
2: मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लम्हात हैं ये।
1: क्या बात,
2: सुने कि दिल की धड़कन और फिर आंखों का पानी हो गए, तुम जुदा भी तब हुए जब जिंदगानी हो गए।
1: वाह वाह वाह वाह,
2: दिल की धड़कन और फिर आंखों का पानी हो गए, तुम जुदा भी तब हुए जब जिंदगानी हो गए। शेर सुने कि दिल मेरा कब से इसी गम के कफस में कैद है, दिल मेरा कब से इसी गम के कफस में कैद है, तुम भला कैसे हकीकत से कहानी हो गए। दिल मेरा कब से इसी गम के कफस में कैद है, तुम भला कैसे हकीकत से कहानी हो गए। और ये शेर सुने कि वो मोहब्बत के सफर से रूबरू होता गया, वो मोहब्बत के सफर से रूबरू होता गया, याद मेरे शेर जिसको मुंह जुबानी हो गए।
1: क्या कहने,
2: वो मोहब्बत के सफर से रूबरू होता गया, याद मेरे शेर जिसको मुंह जुबानी हो गए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब पढ़ा आपने। ये थे जनाबे चित्रांश खरे।

0: जोरदार तालियों में इस्तकबाल कर लीजिए जनाबे फरहान मंजर।
1: गजल का मतलब पेश कर रहा हूं, बतौर खास समात फरमाइएगा। अर्ज किया है कि तेरी एक निगाह अमीक ने मुझे क्या से क्या ये बना दिया, तेरी एक निगाह अमीक ने मुझे क्या से क्या ये बना दिया, मैंने जो पढ़ा था भुला दिया, मैंने जो लिखा था मिटा दिया। तेरी एक निगाह अमीक ने मुझे क्या से क्या ये बना दिया, मैंने जो पढ़ा था भुला दिया, मैंने जो लिखा था मिटा दिया। बहुत शुक्रिया हजरत, ये शेर भी आपकी समातों के हवाले। मेरे तजुर्बे ने कहा यही जिसे सोजे दिल की खबर नहीं, मेरे तजुर्बे ने कहा यही जिसे सोजे दिल की खबर नहीं, वो चराग कोई चराग है जिसे आंधियों ने बुझा दिया।
0: वा, वा,
1: मेरे तजुर्बे ने कहा यही, मेरे तजुर्बे ने कहा यही जिसे सोजे दिल की खबर नहीं, नवाजिश। वो चराग कोई चराग है जिसे आंधियों ने बुझा दिया, जिसे आंधियों ने बुझा दिया। और हजरत ये शेर भी समाप्त फरमाइएगा कि तेरी एक नजर का कमाल है भला और किसकी मजाल है, तेरी एक नजर का कमाल है भला और किसकी मजाल है, जिसे तूने चाहा उठा दिया, जिसे तूने चाहा गिरा दिया।
0: वाह,
1: तेरी एक नजर का कमाल है, तेरी एक नजर का कमाल है भला और किसकी मजाल है, जिसे तूने चाहा उठा दिया, जिसे तूने चाहा गिरा दिया, जिसे तूने चाहा उठा दिया, जिसे तूने चाहा गिरा दिया। जो किनारे नाव लगी मेरी तू कहा शनावर वक्त ने, जो किनारे नाव लगी मेरी तू कहा शनावर वक्त ने, तेरा डूबना तो नसीब था तुझे पार किसने लगा दिया। जो किनारे नाव लगी मेरी तू कहा शनावर वक्त ने, तेरा डूबना तो नसीब था तुझे तुझे पार किसने लगा दिया, तुझे पार किसने लगा दिया। नवाजिश। और ये इस गजल का आखिरी शेर के रहो उम्र भर मेरे साथ साथ मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, रहो उम्र भर मेरे साथ साथ मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, मगर आफतों ये बता तो दो मेरे घर का किसने पता दिया। रहो उम्र भर, रहो उम्र भर मेरे साथ साथ मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, मगर आफतों ये बता तो दो मेरे घर का किसने पता दिया, मेरे घर का किसने पता दिया। बड़ी ही खूबसूरती के साथ आप समात फरमा रहे हैं हजरत। एक गजल पढ़ने से कबल दो चार शेर और आपकी समातों के हवाले। अर्ज किया है कि बहुत छोटी सी बहर में गजल कहने की कोशिश की है। अर्ज किया है कि लुत्फे दीदार यार टूटेगा, लुत्फे दीदार यार टूटेगा ख्वाब का जब हिसार टूटेगा, लुत्फे दीदार यार टूटेगा ख्वाब का जब हिसार टूटेगा, कैसे धड़केगा ये किसी के लिए, कैसे धड़केगा ये किसी के लिए दिल अगर बार बार टूटेगा। लुत्फे दीदारे यार टूटेगा, नवाजिश। लुत्फे दीदारे यार टूटेगा ख्वाब का जब हिसार टूटेगा, कैसे धड़केगा ये किसी के लिए दिल अगर बार बार टूटेगा, दिल अगर बार बार टूटेगा, फिर तुझे इंतजार है उसका फिर तेरा एतबार टूटेगा, फिर तुझे इंतजार है उसका
0: फिर तेरा
1: एतबार, तुझे इंतजार है उसका फिर तुझे इंतजार है उसका फिर तेरा एतबार टूटेगा, फिर तेरा एतबार टूटेगा। मतलब पढ़ता हूं कि उजाले भर गई जब से हयात आंखों में, उजाले भर गई जब से हयात आंखों में सिमट के आ गई कुल कायनात आंखों में, उजाले भर गई जब से हयात आंखों में सिमट के आ गई कुल कायनात आंखों में, हमारी आंखों को इतना तो जब्त लाजिम है कि कोई पढ़ न सके मुश्किलात आंखों में, हमारी आंखों को इतना तो जब्त लाजिम है कि कोई पढ़ ना सके मुश्किलात आंखों में, कि कोई पढ़ ना सके मुश्किलात आंखों में। और ये मक्ता पढ़ता हूँ हजरात और आपकी जहमत तमाम के कोई पढ़ ना सके मुश्किलात आंखों में। यकीन दिलाते हो जिस बात का हमें फरहान, यकीन दिलाते हो जिस बात का हमें फरहान, दिखाई दे भी तू हमको वो बात आंखों में, दिखाई दे भी तू हमको। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: वाह वाह वाह वाह वाह। दोस्तों ये थे जनाब फरहान मंजर साहब, जिनका कोरवई से ताल्लुक़ था और अपने कलाम से नवाज रहे थे और आपको महसूस कर रहे थे।

0: मोहतरमा ज्योति आजाद खत्री ने कलाम से नवाजा।
1: मतलब अर्ज किया है, दिल को एक दिल का तलबगार किया जाता है, दिल को एक दिल का तलबगार किया जाता है, इस तरह हिजर से भी प्यार किया जाता है।
0: वाह।
1: दिल को एक दिल का तलबगार किया जाता है, इस तरह हिजर से भी प्यार किया जाता है। और शेर मुलायजा फरमाए, उसको समझाओ खुली आंखें कोई शर्त नहीं, उसको समझाओ खुली आंखें कोई शर्त नहीं, बंद आंखों से भी दीदार किया जाता है। उसको समझाओ खुली आंखें कोई शर्त नहीं, बंद आंखों से भी दीदार किया जाता है। और एक ही बात को हम थक गए कहते कहते, एक ही बात को हम थक गए कहते कहते, और कैसे भला इंकार किया जाता है। एक ही बात को हम थक गए कहते कहते, और कैसे भला इंकार किया जाता है। मतला चंशेर और देखे, कोई अव्वल है न सानी है तुम्हें देखना है, कोई अव्वल है न सानी है तुम्हें देखना है, कितना इन बातों में मानी है तुम्हें देखना है। कोई अव्वल है न सानी है तुम्हें देखना है, कितना इन बातों में मानी है तुम्हें देखना है। और शेर देखें कि हम तो हर हाल में राजी हैं निभाने को मगर, हम तो हर हाल में राजी हैं निभाने को मगर, किस तरह तुमने निभानी है तुम्हें देखना है। कि हम तो हर हाल में राजी हैं निभाने को मगर, किस तरह तुमने निभानी है तुम्हें देखना है। और मैंने तो रंग गिराए हैं फकत कागज पर, मैंने तो रंग गिराए हैं फकत कागज पर, किसकी तस्वीर बनानी है तुम्हें देखना है।
0: वाँ वाँ वाँ।
1: कि मैंने तो रंग गिराए हैं फकत कागज पर, किसकी तस्वीर बनानी है तुम्हें देखना है। ये गजल से चंद अशआर और देखें। मतला है कि ऐसा नहीं कि मुझको पुकारा नहीं गया, ऐसा नहीं कि मुझको पुकारा नहीं गया, उस समत दिल ही मेरा दोबारा नहीं गया, ऐसा नहीं कि मुझको पुकारा नहीं गया, उस समत दिल ही मेरा दोबारा नहीं गया, आंखों में ख्वाब इसलिए जिंदा रखे गए, आंखों में ख्वाब इसलिए जिंदा रखे गए, अरमान दिल में कोई भी मारा नहीं गया। कि आंखों में ख्वाब इसलिए जिंदा रखे गए, अरमान दिल में कोई भी मारा नहीं गया, ऐसा नहीं कि मुझको पुकारा नहीं गया, उस समत दिल ही मेरा दोबारा नहीं गया।
0: क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: मतला चंशेर और देखें, हो इजाजत तो कुछ सुनाऊं मैं, हो इजाजत तो कुछ सुनाऊं मैं, तेरी मुश्किल का हल बताऊं मैं।
0: वाह।
1: हो इजाजत तो कुछ सुनाऊं मैं, तेरी मुश्किल का हल बताऊं मैं, जब ठिकाना कोई मेरा पूछे, जब ठिकाना कोई मेरा पूछे, क्या तेरे दिल को घर बताऊं मैं। कि जब ठिकाना कोई मेरा पूछे, क्या तेरे दिल को घर बताऊं मैं। और अब तो आंसू भी आहें भरने लगे, अब तो आंसू भी आहें भरने लगे, हाल दिल का अगर सुनाऊं मैं। कि अब तो आंसू भी आहें भरने लगे, हाल दिल का अगर सुनाऊं मैं। आखिरी गजल से चंद अशआर
0: जी, अशआर
1: मतलब अर्ज किया है, तसव्वुरात की जागीर देखते रहना, तसव्वुरात की जागीर देखते रहना, हमारे ख्वाब की ताबीर देखते रहना, तसव्वुरात की जागीर देखते रहना, हमारे ख्वाब की ताबीर देखते रहना। शेर मुलाहिजा फरमाए कि मैं सामने हूँ अभी गुफ्तगू करो मुझसे, मैं सामने हूँ अभी गुफ्तगू करो मुझसे, कि बाद में मेरी तस्वीर देखते रहना।
0: वाह,
1: बहुत शुक्रिया। कि मैं सामने हूँ अभी गुफ्तगू करो मुझसे, कि बाद में मेरी तस्वीर देखते रहना। और शेर की, मैं अपनी आंखों से दुनिया को जीत लाऊंगी, मैं अपनी आंखों से दुनिया को जीत लाऊंगी, तू मेरे पाँव की जंजीर देखते मैं अपनी आंखों से दुनिया को जीत लाऊंगी, तू मेरे पाँव की जंजीर देखते रहना, तसव्वुरात की जागीर देखते रहना, हमारे ख्वाब की ताबीर देखते रहना।
0: वाह वाह वाह वाह। ये थी मोहतरमा ज्योति आज़ाद खत्री साहिबा।

0: दरख्त जब कलम बन जाए तो वो जनाबे प्रोफेसर वसीम बरेलवी का रूप धार लेते हैं।
1: पेश करता हूं कि दियों का कद घटाने के लिए
0: रातें बड़ी करो,
1: दियों का कद घटाने के लिए रातें बड़ी करना, बड़े शहरों में रहना हो तो फिर बातें बड़ी करना, दियों का कद घटाने के लिए रातें बड़ी करना, बड़े शहरों में रहना हो तो फिर बातें बड़ी करना, ये क्या जाने हैं, ये सुन के बताइए शेर, ये क्या जाने हैं, ये दिल कच्ची जमी का इस्तियारा है। भोपाल में बताने की जरूरत नहीं है, मिसरा पढ़ रहा हूँ कि ये क्या जाने, ये क्या जाने, ये दिल कच्ची जमी का इस्तियारा है, इन आंखों को तो बस आता है बरसातें बड़ी करना।
0: वाह,
1: इन आंखों को तो बस आता है बरसातें बड़ी करना, मोहब्बत में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता।
0: वाह,
1: मोहब्बत में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता, किसी को छोड़ना हो तो मुलाकातें बड़ी करना। मोहब्बत में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता,
0: जिंदाबाद,
1: बिछड़ने का सबको नहीं आता, मोहब्बत में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता, किसी को छोड़ना हो तो
0: मुलाकातें
1: बड़ी करना, किसी को छोड़ना हो तो मुलाकातें बड़ी करना। आइए अब मतलब सुनाता हूँ, पेश करता हूँ कि फैसला हो ही नहीं पाया बहुत बातों के बाद।
0: वाह,
1: फैसला हो ही नहीं पाया बहुत बातों के बाद, कौन खुलता है यहाँ कितनी मुलाकातों के बाद। फैसला हो ही नहीं पाया बहुत बातों के बाद, कौन खुलता है यहाँ कितनी मुलाकातों के बाद, कौन खुलता है यहाँ कितनी मुलाकातों के बाद, आंसुओं के सामने पत्थर दिली की क्या बिसात। आंसुओं के सामने पत्थर दिली की क्या बिसात, अच्छे अच्छे घर दरक जाते हैं बरसातों के बाद। आंसुओं के सामने पत्थर दिली की क्या बिसात, अच्छे अच्छे घर दरक जाते हैं बरसातों के बाद, अच्छे अच्छे घर दरक जाते हैं बरसातों के बाद, कि हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले।
0: हर
1: शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ,
0: क्या कहने से, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह।
1: हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। पेश करता हूँ कि मालिक तेरा करम कि बड़ी लंबी उम्र दी।
0: आहा,
1: सुने बहुवाल, मालिक तेरा करम के बड़ी लंबी उम्र दी और उस पे ये के बोझ किसी पर नहीं हुए।
0: वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह वाह वाह वाह सर, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह सर, वाह वाह वाह वाह वाह।
1: मालिक तेरा करम के बड़ी लंबी उम्र दी और इस पे ये के बोझ किसी पर नहीं हुए। आखिर में तीन चार शेर और सुनाऊंगा, ये भी नई गजल सुनाऊंगा। मतलब सुनिए, बहुत अच्छा सुना है आप, आपने वहां पहुंचा दिया जहां पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी था। अना को राह में आने न देना, अना को
0: राह में आने न देना,
1: आने न देना साहब, वो शायरी ही नहीं होती जो बनाई जाए, शायरी वही होती जो होती है।
0: वाह,
1: आइए, मैं तो एक एक लफ्ज का गुलाम हूँ, पूरी जिंदगी एक एक लफ्ज, मैं तो क्या कह सकता था, बस मुझे उसने कहा है, मैंने नहीं कहा, लफ्जों ने मुझे कहा।
0: क्या बात है,
1: पेश करता हूँ कि अना के बीच, मैंने अर्ज किया था आपसे कि अना को राह में आने न देना, कोई आवाज दे तो लौट आना। अना को राह में आने न देना, कोई आवाज दे तो
0: लौट आना।
1: अना को राह में आने न देना, कोई आवाज दे तो लौट आना। ताल्लुक जिंदा रखने को बहुत है। गजल वालों, भोपाल वालों, गजल वालों सुनो कि ताल्लुक जिंदा रखने को बहुत है, ताल्लुक जिंदा रखने को बहुत है, बिछड़ते वक्त आंखें भीग जाना।
0: वाह,
1: ताल्लुक जिंदा रखने को बहुत है,
0: बिछड़ते वक्त आंखें भीग जाना
1: बहुत है, बिछड़ते वक्त आंखें भीग जाना
0: क्या कैफियत है सर। हाँ हाँ,

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहनें। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।

नमस्कार। 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में आप आनंद लेंगे संतूर वादन का।

कलाकार हैं सुविख्यात संतूर वादक पंडित राहुल शिव कुमार शर्मा। संतूर वादन की ये प्रस्तुति उन्होंने दी भारत भवन में आयोजित बादल राग समारोह में। ये इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग है।

मेरा मलाज ऐसा राग है कि उसके बाद में कोई धुन वगैरह जमती नहीं है, तो अगर यहीं समाप्त किया जाए तो कैसा रहेगा? क्या आपको एक पहाड़ी सुनाता हूँ? हाँ जी, हम लोग शुरू करें, आप लोग तैयार?

0: जिस सांस के तारों से संगीत झरने की तरह बह निकलता हो, जिस सांस के तारों से सुरों की गंगा धरती पर उतरती प्रतीत हो, और ऐसे वाद्य संतूर पर जब वादक महान संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का उत्तराधिकारी है,
1: तो संगीत सभा यादगार बनी जाती है। हम बहुत बहुत आभारी हूँ पंडित राहुल शिव कुमार शर्मा जी के, उनके साथ तबले पर संगत इस समय के सबसे ओजस्वी होनहार तबला वादक श्री ओजस अढ़िया जी ने की है। हम उनके प्रति भी हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
2: आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सुविख्यात कलाकार पंडित राहुल शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित भवानी प्रसाद मिश्र

भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।

स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका आजाद हिंद में। श्रोताओं, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको इस कार्यक्रम में हमेशा कुछ न कुछ नया सुनवाएं। हमने अभी तक आपको गीत संगीत, नाटक, मुकदमे और क्रांति कथाएं सुनाई, मगर इस बार हम आपको सुनवाएंगे एक मुकदमे की रिपोर्ट।
2: जी हाँ, ये ऐतिहासिक मुकदमा चला था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी पे, जिसे मुंबई से प्रकाशित साप्ताहिक श्री वेंकटेश्वर समाचार के लिए संवाददाता श्री गोपाल राम गमहरी जी ने लिपिबद्ध किया था। उनके ही अनुसार उनको मुंबई में समाचार मिला कि गिरगांव डाकखाने के पीछे रहने वाले दाजी खेर नामक वकील के घर से कल रात को तिलक जी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आपको उसकी रिपोर्टिंग करना है।
1: गिरफ्तार होने के समय तिलक जी ने दाजी खेर जी से कहा था कि वे उनकी जमानत की तैयारी कर लें, मगर बहुत कोशिशें करने पर भी दाजी खेर को सफलता नहीं मिली और वे जा पहुंचे पुलिस कमिश्नर के बंगले पर, जहां तिलक जी को रखा गया था। वहां जाके उन्होंने देखा कि तिलक जी आराम से सो रहे हैं और उन्हें पता चल चुका है कि उनकी जमानत की व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो वे नींद पूरी कर रहे हैं। कोई शेर दिल ही ऐसी मुसीबत की घड़ी में आराम से सो सकता है, और तिलक जी तो शेर थे ही।

0: दरअसल पुणे में फैले प्लेग और अकाल के संबंध में सरकार की कटु आलोचना करते हुए जो लेख तिलक जी ने अपने अखबार केसरी में छापे थे, उसके कारण राजद्रोह का मुकदमा तिलक जी पर चलाया गया था। तिलक जी की पैरवी स्वयं खेर जी कर रहे थे और जब मुकदमा सेशन में भेजने का समय आया तो तिलक जी की जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई, ये कहकर कि दो दिन बाद ही तो सुनवाई है।
1: 2 अगस्त को बैरिस्टर डावर साहब तिलक जी की पैरवी कर रहे थे और नजारा कुछ ऐसा था कि जैसे सारी मुंबई तिलक जी की झलक पाना चाह रही थी। रास्तों पे, सड़कों पे इतनी भीड़ हो गई थी कि बस। उधर दरवाजे पर 2 अंग्रेज अधिकारी और कुछ भारतीय सिपाही हाथों में हंटर लिए भीड़ को नियंत्रित कर रहे थे, मगर लोग कहाँ मानने वाले थे, वो तो आज अपने नारों से आकाश गुंजा रहे थे। ऐसा लगता था कि मानो कोई भूचाल आ गया हो, और हो भी क्यों ना, तिलक जी ने अंग्रेजी सरकार को हिला के जो रख दिया था।

0: जब रिपोर्टिंग करने गमहरी जी अदालत पहुंचे तो देखा कि हंटरों के डर से कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तभी उनको एक पूर्व परिचित हंटरधारी अधिकारी WC जालिफ दिखे और उन्होंने इनसे पूछा, वेल बाबू, सिडिशन के मामले में एक मराठी पकड़ा गया है, तुम देखेगा? और इनके हाँ कहते ही उसने हंटर थोड़ा सा नीचे किया और गमहरी जी पहुंच गए अदालत के अंदर।
1: वहाँ तिलक जी ने निर्भीक होकर स्वीकारा कि वे ही केसरी के संपादक, प्रकाशक और मुद्रक हैं, और जहाँ केसरी छपता है उस प्रेस आर्यभूषण के मालिक श्री बाल जी की इसमें कोई जवाबदारी नहीं बनती। श्री डावर ने दलील दी कि केसरी पर मुकदमा चलाने भर से उसका प्रकाशन प्रतिबंधित नहीं हो जाता, उसके सारे कागजात अभी तक व्यवस्थापक को वापस नहीं किए गए हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि सरकार निरर्थक और आक्रोश से वशीभूत होकर कार्यवाही कर रही है। इस दलील के सुनते ही तुरंत केसरी के कागज वापस कर दिए गए और उसी दिन उनका मुकदमा हाईकोर्ट भेज दिया गया।
0: अदालत में डावर जी ने कलकत्ते के कई मामलों का उदाहरण देते हुए तिलक जी की जमानत की जबरदस्त पैरवी की, जिसे सुनकर न्यायमूर्ति बदरुद्दीन तैयब जी ने पूछा कि आपका मुवक्किल कितने की जमानत दे सकता है। इस पर डावर साहब ने दूने जोश से कहा कि जितने की आप मांगे हम देने को तैयार हैं, क्योंकि सुप्रसिद्ध धनपति सेठ लक्ष्मीदास खेम जी 5 लाख तक देने को तैयार थे, और ये सूचना उनके भांजे द्वारकादास धमरसी के माध्यम से उन्होंने तिलक जी के पैरोकारों को दे रखी थी।
1: लेकिन न्यायमूर्ति तैयब जी ने मात्र 25,000 की 2 जमानतें और 50,000 के निजी मुचलके पे तिलक जी को छोड़ने का आदेश सुना दिया। और अदालत के बाहर जैसे ही ये बात पहुंची तो लोगों ने एक स्वर में जो तुमुलनाद किया उसने आकाश गुंजा दिया।

0: और दूसरे ही दिन सारे मुकदमे का विवरण श्री वेंकटेश में छप गया। घटना गुरुवार की थी और शुक्रवार को ही छप जाने से मुंबई के सारे बड़े बड़े और प्रभावशाली अखबार सकते में आ गए और हाय करके रह गए। और गुजराती दैनिक मुंबई समाचार के एडिटर तो श्री वेंकटेश के दफ्तर ये जानने के लिए आ गए थे कि हमारा संवाददाता तो अंदर ही नहीं जा पाया, और आपको सारा हाल कैसे पता है?
1: तब गोपाल राम जी ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया। श्रोताओं, श्री वेंकटेश ही सारे भारत का एकमात्र ऐसा अखबार था जिसमें उस मुकदमे का सारा विस्तृत विवरण छपा था। बाकी अखबारों ने तो उसके आधार पर ही अपनी अपनी रिपोर्ट्स तैयार की थी।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह। ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। गीत लिए गए थे स्वराज संस्थान द्वारा जारी ऑडियो श्रृंखला जन गर्जे में से।
3: हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले अंक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।

स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: कला कल्लोलिनी, जहां कला लहर बनकर बहती है और कलाकारों की आवाज वक्त की बंदिशों को तोड़कर सदियों तक गूंजती रहती है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे महानायक की जिसने रंगमंच को सिर्फ जिया नहीं बल्कि उसे एक नई परिभाषा दी। आइए मिलकर रुख करते हैं इस कलात्मक सफर की ओर। बहती है जो अनवरत सदियों का इतिहास लिए, रंगों की सुरों की लफ्जों की प्यास लिए, ये भावों की सरिता है, ये सुरमई रागनी है, कला के अनंत समंदर से उठी ये कला कल्लोलिनी है। कुछ अनकहे किस्से हैं, कुछ जाने पहचाने हैं, कुछ अनकहे किस्से हैं, कुछ जाने पहचाने हैं, ये कभी घुंघरू बनकर छनकती है, कभी चित्र बनकर सजती है, ये कभी नाटक के मंच पर जीवन की हकीकत बनकर गरजती है। समय का पर्दा अब धीरे धीरे सरकने वाला है, इतिहास के पन्नों से एक सितारा मंच पर उतरने वाला है।
1: और आज कला कल्लोलिनी की लहरें हमें बहा कर ले जा रही हैं एक ऐसे समंदर की तरफ जिसने भारतीय रंगमंच को अपनी शर्तों पर जीना सिखाया। एक ऐसा शख्स जिसने नाटक को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा का आत्म साक्षात्कार बना दिया। जी हाँ, आज बात हो रही है पद्म भूषण से सम्मानित आधुनिक भारतीय रंगमंच के कबीर, अक्खड़ फक्कड़ और अद्वितीय नाटककार निर्देशक सत्यदेव दुबे की। आइए शुरू करते हैं उनकी जीवन यात्रा। दोस्तों, समय का पहिया पीछे घूमता है। सन 1936 की 13 जुलाई को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की शांत वादियों में एक बालक ने आंखें खोली। नाम रखा गया सत्यदेव दुबे।
0: घर में कला और संस्कृति का एक अनूठा माहौल पहले से मौजूद था। एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे सत्यदेव के पिता का बिलासपुर में अपना एक स्थानीय सिनेमा हॉल था। उस दौर में जहां आम बच्चों के लिए सिनेमा देखना किसी सपने जैसा होता था, वहीं छोटे सत्यदेव के लिए वह जादुई पर्दा उनका अपना घर था। वो अक्सर अंधेरे हॉल के किसी कोने में बैठ जाते और पर्दे पर चलने वाली कहानियों, लाइव परफॉर्मेंस और इंसानी जज्बातों को बड़े कौतूहल से निहारते। फिल्मों के उन किरदारों को देखकर उनके बाल मन में कहानी कहने और दृश्यों को रचने की समझ अनजाने में ही अपनी जड़ें जमाने लगी थी। लेकिन नियति का खेल भी बड़ा निराला होता है। जिस लड़के को आगे चलकर भारतीय रंगमंच का सबसे बड़ा कप्तान बनना था, उस समय उसका दिल थिएटर के विंग्स में नहीं बल्कि क्रिकेट के हरे मैदान पर धड़कता था। बचपन और शुरुआती लड़कपन के दिनों में सत्यदेव के सिर पर क्रिकेट का भूत सवार था। धूप में तपते हुए हाथ में बल्ला थामे वो गेंद की हर हरकत को वैसे ही भांपते थे जैसे आगे चलकर उन्होंने अभिनेताओं के हाव भाव को भांपा। वो एक पेशेवर क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखते थे। खेल के मैदान की वो एकाग्रता, अनुशासन और कुछ कर गुजरने की जिद, शायद ये सब उन्होंने क्रिकेट की पिच से ही सीखा था, जिसे उन्होंने बाद में थिएटर के तख्ते पर उतार दिया। किसे पता था कि बिलासपुर के मैदानों पर चौके छक्के लगाने का सपना देखने वाला ये लड़का एक दिन माया नगरी मुंबई की पिच पर उतरकर भारतीय नाटक और सिनेमा की पूरी कप्तानी ही बदल देगा।
1: पिता के सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर से निकलती रोशनी की वो चमकीली लकीर, सिल्वर स्क्रीन पर नाचते हुए किरदार और बिलासपुर की तपती दोपहरी में चमचमाता क्रिकेट का बल्ला, सत्यदेव दुबे का बचपन इन्हीं दिलचस्प रंगों से बुना गया था। बिलासपुर की उस माटी में कुछ अजीब सी कशिश थी। अरपा नदी के किनारे खेलते हुए इस बालक के भीतर शब्दों की एक नदी बहने लगी थी। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कोई सरकारी ओहदा संभाले, पर नियति ने तो इस बालक के हाथों में रंगमंच की चाबी सौंप रखी थी। दुबे जी का बचपन कोई बहुत ठाट बाट का नहीं था, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी खोज जो उन्हें शांत नहीं बैठने देती थी। वो किताबों में खो जाते, कहानियों के पात्रों को अपने आसपास ढूंढने लगते।
0: बिलासपुर की शांत हवाओं को पीछे छोड़ जब 16-17 साल का वह दुबला पतला लड़का बंबई के खचाखच भरे वीटी स्टेशन पर उतरा तो उसके पास ना तो कोई बड़ा सूटकेस था और ना ही जेब में पैसों की खनक थी, तो बस आंखों में एक अजनबी सी चमक और दिल में कुछ बड़ा कर गुजरने की बेचैनी। सेंट जेवियर्स कॉलेज की ऐतिहासिक इमारत के ऊंचे मेहराबों के नीचे अंग्रेजी साहित्य के पन्नों को पलटते हुए सत्यदेव दुबे के विचारों को नए पंख मिल रहे थे। कॉलेज उनके लिए सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि एक जादुई प्रयोगशाला बन गया था। वहां वह रोज नए विचार गढ़ते थे, लेकिन इस वैचारिक उड़ान के पीछे एक कड़वी हकीकत भी थी, पेट की भूख और खाली जेब। माया नगरी की चमचमाती रोशनियों के बीच इस नौजवान के संघर्ष की कहानी बड़ी बेदर्द मगर बेहद खूबसूरत थी। जब रात को पूरी मुंबई सो जाती तब सत्यदेव के पास सिर छुपाने की कोई छत नहीं होती थी। कई रातें उन्होंने रेलवे स्टेशनों के ठंडे बेंचों पर या फुटपाथ के सन्नाटे में आसमान को चादर बनाकर गुजारी।
1: श्रोताओं, कहते हैं ना कि जौहरी की नजर में हीरा कभी नहीं छुप सकता। कॉलेज के इन्हीं कई दिनों के बीच नियति ने उनका हाथ थाम लिया। उनकी मुलाकात रंगमंच के उस दौर के सबसे बड़े पारखी और थिएटर यूनिट के मसीहा इब्राहिम अलकाजी से हुई। अलकाजी साहब ने भीड़ में खड़े इस अखड़ स्वाभिमानी और बेहद प्रतिभाशाली लड़के की भीतर सुलगती कला की चिंगारी को पहली ही नजर में पहचान लिया। उन्होंने सत्यदेव को तराशना शुरू किया और बस यहीं से फुटपाथ के उस फकीर का भारतीय रंगमंच के सुल्तान बनने का आधिकारिक सफर शुरू हो गया। कहते हैं जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो कोई शोर नहीं होता, बस एक गहरी अनंत खामोशी छा जाती है। मुंबई की उस उमस भरी शाम को भी शायद समय कुछ पल के लिए ठहर गया था। ये सिर्फ दो इंसानों की मुलाकात नहीं थी, ये रंगमंच के अतीत और भविष्य का एक ऐतिहासिक आलिंगन था। एक तरफ थे इब्राहिम अलकाजी, अनुशासन का दूसरा नाम, सलीका, संजीदगी और थिएटर का वो कड़क पैमाना जिसे छूना हर किसी के बस की बात नहीं थी, और दूसरी तरफ बिलासपुर की धूल से उठकर आया वो अल्हड़ नौजवान सत्यदेव दुबे।
0: अलकाजी का अनुशासन और दुबे का अनगणनपन, इन दोनों का मिलन ऐसा था जैसे बहती हुई उफनती नदी को एक मजबूत बांध मिल गया हो। अलकाजी ने सत्यदेव को शब्दों का सलीका सिखाया और सत्यदेव ने अलकाजी के रंगमंच को अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू दी। इब्राहिम अलकाजी 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली भारतीय थिएटर निर्देशकों में से एक थे। रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से प्रशिक्षित, उन्होंने भारतीय रंगमंच में भारी आधुनिकता और पेशेवर रवैया पेश किया। उन्होंने मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन और गिरीश कर्नाट के तुगलक जैसे 50 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया। 1962 से 1977 तक एनएसडी के प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में अभिनय और रंगमंच की शिक्षा को एक नई दिशा दी। सत्यदेव दुबे

0: नाट, बादल सरकार और विजय तेंदुलकर जैसे नाटक किया। इसके अलावा दुबे ने ही धर्मवीर भारती के अंधा युग की क्षमता को पहचाना था और उसे अलकाजी के पास भेजा था। अलकाजी ने 1962 में एनएसडी में इस नाटक का मंचन किया, जिसने भारतीय रंगमंच के इतिहास में एक नया प्रतिमान स्थापित किया। ये मुलाकात महज एक इत्तेफाक नहीं थी, ये नियति का वो गुप्त समझौता था जिसने फुटपाथ पर सोने वाले एक भूखे फकीर को भारतीय रंगमंच का शहंशाह बनाने की पहली इबारत लिखी थी।
1: सत्यदेव दुबे ने जब महसूस किया कि हिंदी रंगमंच अपने मूल लेखन की कमी से जूझ रहा है, तो उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने मराठी, कन्नड़, बंगाली भाषा के सर्वश्रेष्ठ समकालीन नाटकों को चुना और उन्हें हिंदी में इस तरह ढाला कि वे नाटक हिंदी भाषी दर्शकों की अपनी रूह का हिस्सा बन गए। गिरीश कर्नाड के हैवदन और ययाति जैसे कन्नड़ नाटकों को हिंदी मंच पर लाकर उन्होंने पौराणिक कथाओं को आधुनिक संदर्भ दिए, तो वहीं बादल सरकार के बंगाली नाटक एवं इंद्रजीत के जरिए उन्होंने उस दौर के युवाओं के भीतर की सामाजिक छटपटाहट और अकेलेपन को आवाज दी। वे सही मायने में भारतीय भाषाओं के बीच एक मजबूत और जीवंत सांस्कृतिक सेतु बन गए थे। दुबे जी का ये दृढ़ विश्वास था कि नाटक भव्य सेट, कीमती पर्दों या भारी भरकम साजो सामान का मोहताज नहीं होता, बल्कि रंगमंच की असली ताकत तो अभिनेता, शब्द और दर्शकों के बीच का सीधा संवाद है। उन्होंने बेहद कम खर्चे में सिर्फ कुछ कर्टन्स, एक दो कुर्सियां और बेहतरीन लाइट अरेंजमेंट के दम पर ऐसे नाटक तैयार किए जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखते थे। उनके इस मिनिमलिस्टिक प्रयोग का सबसे बड़ा उदाहरण अंधा युग का मंचन था, जहां उन्होंने किसी बंद ऑडिटोरियम में भारी भरकम खर्चों के बजाय बाण गंगा के खुले खंडहरों को अपना सेट बनाया और प्रकृति तथा माहौल को ही अपने नाटक का एक जीवंत हिस्सा बना दिया।
0: गुरु इब्राहिम अलकाजी के जाने के बाद दुबे जी ने थिएटर यूनिट को देश की सबसे जीवंत रंग कार्यशाला में तब्दील कर दिया, जहां नाटक सिर्फ शाम को मंच पर दिखाने के लिए नहीं होते थे, बल्कि रोज अभिनय, आवाज के उतार चढ़ाव और शब्दों के उच्चारण पर कड़ा विमर्श होता था। दुबे जी भाषा और संवाद अदायगी को लेकर बेहद सख्त थे और यदि कोई अभिनेता किसी शब्द का उच्चारण गलत करता तो वे पूरे नाटक का रिहर्सल तब तक रोक देते थे जब तक वह शब्द बिल्कुल शुद्ध ना निकले। उनका यह खड़पन और गुस्सा किसी दुर्भावना से नहीं, बल्कि कला के प्रति उनके अगाध समर्पण से पैदा होता था और यही वजह थी कि उनका कड़ा अनुशासन कलाकारों को मांझकर हीरा बना देता था। सत्यदेव दुबे के लिए रंगमंच कोई व्यवसाय या मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि वह एक गहरी दार्शनिक साधना और आत्मखोज का माध्यम था। उन्होंने विजय तेंदुलकर के नाटक गिधारे और सखाराम बाइंडर जैसे नाटकों का निर्देशन किया, जो समाज के पाखंड, मानवीय क्रूरता और दबी हुई कुंठाओं पर बेहद तीखा प्रहार करते थे। इन प्रयोगधर्मी नाटकों को लेकर उस दौर में बड़े विवाद भी हुए और सेंसरशिप की तलवारें भी चली, लेकिन दुबे जी कभी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं हुए। उनका मानना था कि नाटक का काम दर्शक को केवल सुलाना या बहलाना नहीं, बल्कि उसकी सोई हुई चेतना को झकझोर कर जगाना है। इसलिए वे रंगमंच और कलाकारों की आत्मनिर्भरता के बहुत बड़े पैरोकार थे। वे हमेशा लोगों से इस बात का आग्रह करते थे कि नाटक को कभी मुफ्त या पास पर नहीं, बल्कि हमेशा टिकट खरीद कर ही देखना चाहिए। उनका मानना था कि जब एक दर्शक टिकट खरीदता है तो वह न केवल कला का सम्मान करता है, बल्कि उस नाटक और कलाकार की आजादी को भी जिंदा रखता है।
1: श्रोताओं, सत्यदेव दुबे सिर्फ पर्दे के पीछे से धागे हिलाने वाले सूत्रधार नहीं थे, उनके भीतर एक ऐसा अभिनेता भी छुपा था जो मंच की खुशबू पाते ही जाग उठता था। अक्सर जब थिएटर की रिहर्सल खत्म होती या शाम को दोस्तों और शागिर्दों की महफिल जमती तो लोग उनसे कुछ सुनाने की जिद कर बैठते। दुबे जी मुस्कुराते, उनके चेहरे की कड़कड़ाहट पल भर में गायब हो जाती और उनकी आंखें किसी गहरे दार्शनिक सोच में डूब जाती। वे हमेशा धर्मवीर भारती के अंधा युग के उस पात्र की पंक्तियां सुनाते जो उनके दिल के सबसे करीब था, अश्वत्थामा। एक ऐसा पात्र जो भटक चुका था, जो कुंठित था, लेकिन जिसके भीतर सत्य को जानने की छटपटाहट थी। जब दुबे जी अपनी बुलंद और भारी आवाज में हाथों को हवा में लहराते हुए ये संवाद बोलते तो कमरे में बैठा हर शख्स अपनी सुध-बुध खो बैठता था।
0: यह मेरा नहीं, यह उस युग का अंधापन है जिसमें हम सब जीते हैं, जिसमें हम सब मरते हैं। मैंने तो सिर्फ उस प्रतिशोध को चुना जो इस समूचे ब्रह्मांड के माथे पर लिखा था। अब न कोई न्याय है, न कोई धर्म है, सिर्फ एक अंतहीन रात है और मैं हूं। इन पंक्तियों को बोलते हुए उनकी आवाज में जो दर्द, जो गुस्सा और जो दार्शनिक ठहराव होता था, वह सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता था। उन्हें ऐसे जटिल पात्र बहुत पसंद थे जो सफेद या काले नहीं होते थे, बल्कि इंसानी स्वभाव के भूरे रंगों को दर्शाते थे। वह कहते थे कि नाटक का असली मजा तब है जब वह आपको अंदर से बेचैन कर दे। आज भी जब थिएटर की पुरानी गलियों में अंधा युग का जिक्र होता है तो लोगों के कानों में अश्वत्थामा के रूप में गूंजती सत्यदेव दुबे की वह बुलंद आवाज आज भी सजीव हो उठती है।
1: इसी वैचारिक आजादी और कड़े अनुशासन की पाठशाला से दुबे जी ने अभिनेताओं की एक ऐसी अद्वितीय पौध तैयार की जो आगे चलकर न केवल थिएटर के स्तंभ बने बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और दिग्गज अभिनेता कहलाए। उनके तराशे हुए हीरो में अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, रत्ना पाठक शाह, अमोल पालेकर और सतीश कौशिक जैसे नाम शामिल थे जिन्होंने अभिनय की परिभाषा ही बदल दी। रंगमंच की इसी धुरी पर काम करते हुए 70 के दशक में सत्यदेव दुबे की मुलाकात मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल से हुई। ये मुलाकात भारतीय समानांतर सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। दोनों की कलात्मक ट्यूनिंग इतनी बेहतरीन थी कि श्याम बेनेगल के शुरुआती और सबसे प्रभावशाली फिल्मों की आत्मा दुबे जी के शब्द ही बने। दुबे जी ने बेनेगल की कालजयी त्रयी, अंकुर, निशांत और मंथन के संवाद और पटकथा लिखी जिन्होंने भारतीय सिनेमा को यथार्थवाद का एक नया चेहरा दिया। इसके बाद 1977 में आई फिल्म भूमिका के लिए तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। उन्होंने बेनेगल की फिल्म कलयुग की पटकथा पर भी काम किया था।
0: शब्दों का जादू बिखेरने के साथ साथ दुबे जी ने पर्दे पर अपनी अदाकारी का हुनर भी दिखाया। उन्होंने श्याम बेनेगल की ही फिल्म निशांत में एक पुजारी की बेहद जीवंत और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने गोविंद निहलानी की मशहूर फिल्म आक्रोश में भी अभिनय किया। इतना ही नहीं, कला सिनेमा से इतर उन्होंने मुख्य धारा के सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने साई पराजपे की बेहद लोकप्रिय फिल्म चश्मे बद्दूर के तीखे और मजेदार संवाद लिखे और निर्देशक उमेश मेहरा की फिल्म हमारे तुम्हारे की पटकथा भी तैयार की। सत्यदेव दुबे ने श्याम बेनेगल की टीवी सीरियल भारत एक खोज में चाणक्य और फिल्म निशांत में पुजारी की भूमिका निभाई। पटकथा लेखन से लेकर कैमरे के सामने अभिनय करने तक सिनेमा का ये पूरा सफर उनके बहुमुखी और अक्खड़ कलाकार होने का सबसे बड़ा प्रमाण था। मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल सत्यदेव दुबे को भारतीय कला जगत का एक अद्वितीय और अपरिहार्य स्तंभ मानते थे। वे अक्सर दुबे जी के बारे में कुछ बेहद खास बातें कहा करते थे। बेनेगल अक्सर तारीफ करते थे कि कि दुबे जी के पास अभिनेताओं को तराशने की एक जादुई कला थी। अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी जैसे दिग्गज कलाकारों को बेनेगल ने अपनी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं दी। वे सब दुबे जी की थिएटर वर्कशॉप की ही देन थे। बेनेगल मानते थे कि दुबे जी जिस अभिनेता पर हाथ रख देते थे वे सोना बन जाता था। श्याम बेनेगल दुबे जी के अक्खड़पन और उनकी फकीरी के मुरीद थे। वे कहते थे कि दुबे एक ऐसे विरल कलाकार थे जिन्होंने कभी पैसों या शोहरत के लिए अपनी कला से समझौता नहीं किया। वे सिनेमा में काम जरूर करते थे लेकिन उनका दिल हमेशा थिएटर के लिए ही धड़कता था। सीधे शब्दों में कहें तो श्याम बेनेगल के लिए सत्यदेव दुबे सिर्फ एक सहलेखक या दोस्त नहीं थे, बल्कि वे उन्हें एक ऐसा क्रिएटिव पार्टनर और थिएटर गुरु मानते थे जिसने भारतीय सिनेमा और रंगमंच को सच बोलना सिखाया।
1: श्रोताओं, वो पूरी तरह से एक फकीर और सन्यासी की तरह जिए, जिनका एकमात्र धर्म और परिवार सिर्फ और सिर्फ रंगमंच ही था। दुबे जी ने जीवन के आखिरी पड़ाव तक नए लड़कों और लड़कियों को तलाशने और उन्हें तराशने का काम कभी बंद नहीं किया। मुंबई का प्रसिद्ध पृथ्वी थिएटर उनका दूसरा घर बन चुका था। वे घंटों वहां के कैफे में ही बैठे रहते थे, जहां कोई भी नया लड़का स्क्रिप्ट लेकर उनके पास आ सकता था। वो बिना किसी फीस के सिर्फ चाय की चुस्कियों पर नए निर्देशकों को नाटक की बारीकियां सिखाते थे। उन्होंने हमेशा नए और युवा नाटककारों को मंच दिया, क्योंकि उनका मानना था कि थिएटर को जिंदा रखने के लिए नए खून और नए विचार का आना बेहद जरूरी है।
0: थिएटर और फिल्मों के अलावा दुबे जी ने जन माध्यमों की ताकत को भी बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने धर्मवीर भारती के अंधा युग को न केवल मंच पर उतारा, बल्कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी उसके कई प्रयोग किए। उन्होंने ध्वनि और संवाद के उतार चढ़ाव का ऐसा ताना बाना बुना कि बिना दृश्यों के भी सिर्फ आवाज के दम पर दर्शकों के सामने महाभारत के युद्ध का सन्नाटा सजीव हो उठता था। रेडियो नाटक के शिल्प को आधुनिक बनाने में भी उनका यह योगदान अतुलनीय है। वे कभी विवादों से डरे नहीं, बल्कि वे मानते थे कि अगर कला समाज में हलचल ना पैदा करे तो वो कला ही नहीं है।
1: श्रोताओं, भारतीय रंगमंच और कला जगत में सत्यदेव दुबे के अद्वितीय क्रांतिकारी और युगांतकारी योगदान के लिए उन्हें समय समय पर देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। उनकी इस अनूठी नाट्य साधना और कला के प्रति अटूट समर्पण को सर्वोच्च सम्मान देते हुए साल 1971 में देश की सर्वोच्च कला संस्था द्वारा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद भारतीय समानांतर सिनेमा को अपनी लेखनी और संवादों से एक नया और यथार्थवादी धरातल देने के लिए साल 1977 में आई उनकी प्रसिद्ध फिल्म भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके जीवन भर के संघर्ष, अमूल्य योगदान और एक महान मेंटोर के रूप में उनके कद को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें बेहद प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान से भी विभूषित किया। आखिरकार उनके इसी फकीराना जज्बे और कलात्मक महानता को सलाम करते हुए साल 2011 में भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से अलंकृत किया, जो उनके जीवन की कला यात्रा पर राष्ट्र की ओर से एक गौरवशाली मोहर थी।
0: दुबे जी मुंबई के एक बेहद साधारण से किराए के कमरे में किताबों और नाटकों की स्क्रिप्ट के बीच अपनी फकीरी में मस्त थे। वे अक्सर अकेले ही मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करते या पृथ्वी थिएटर के बाहर एक कप चाय हाथ में थामे घंटों बैठे रहते। उनके जीवन में ना तो पैसों का लालच था और ना ही किसी सांसारिक सुख की चाह। उनका कोई पारंपरिक परिवार नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी कला को ही अपनी संतान और अपना संसार मान लिया था। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता, तो उन्होंने हंसकर कहा था, जिसके पास शब्दों का मेला हो और मंच की रोशनी हो, वो भला अकेला कैसे हो सकता है। उनका ये निश्चल समर्पण दिखाता है कि वे सिर्फ नाटक करते नहीं थे, वे खुद में एक जीवंत नाटक थे। सत्यदेव दुबे ने जीवन के अंतिम क्षणों तक अपनी कलात्मक ऊर्जा और जीवंतता को

0: सांस ली। उनके निधन का कारण लंबे समय से चल रही बीमारी और दिल का दौरा पड़ना था। उनके जाने से भारतीय रंगमंच का एक बेहद प्रखर, निडर और स्वर्णिम युग हमेशा के लिए समाप्त हो गया, लेकिन अपनी कला और विचारों के रूप में वे आज भी हर रंगकर्मी की चेतना में जीवित हैं। अभिनेता अनुपम खेर ने कहा, हिंदी रंगमंच के दिग्गज सत्यदेव दुबे अब हमारे बीच नहीं रहे। रंगमंच के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता अद्भुत थी। यह एक बड़ी क्षति है, उनकी आत्मा को शांति मिले। फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने कहा, थिएटर जगत के दिग्गज सत्यदेव दुबे का देहांत हो गया। साथ साथ घूमने फिरने के दिनों की प्यारी यादें मुझे घेर लेती हैं। अलविदा दुबे जी, ढेर सारा प्यार। निर्देशक केन घोष ने कहा, सत्यदेव दुबे के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उन्होंने बड़ी विनम्रता से इश्क विश्क की नई कास्ट के साथ एक एक्टिंग वर्कशॉप आयोजित की थी। शांता गोखले उन्हें याद करते हुए कहती हैं
1: कि सत्यदेव दुबे को बहस छेड़ना बहुत पसंद था और उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब होती थी जब वो युवा रंगमंच कलाकारों को अपने विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करने के बजाय प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित कर पाते थे। आधी सदी से भी अधिक समय में उन्होंने हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी में 100 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया, युवा नाटककारों की खोज की और उन्हें अपनी रचनाओं को फिर से लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही अभिनेताओं की कई पीढ़ियों को प्रशिक्षित भी किया। आप हमेशा कलाकारों और अभिनेताओं के दिलों में मशाल बनकर जलते रहेंगे। दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने सत्यदेव दुबे को अपना थिएटर गुरु माना है। वो अक्सर याद करते हैं कि कैसे दुबे जी ने उन्हें मंच पर बिना डरे संवाद बोलना और अपनी ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल करना सिखाया। उन्होंने दुबे जी को एक निडर, स्पष्टवादी और रंगमंच के प्रति जुनूनी व्यक्ति बताया।
0: सत्यदेव दुबे अक्सर कहा करते थे कि एक सच्चे अभिनेता का काम केवल संवाद बोलना या चेहरे पर मुखौटा लगाना नहीं है। उनके लिए अभिनय एक आत्मसमर्पण था। वे कहते थे, एक अच्छा अभिनेता वह नहीं है जो मंच पर आकर खुद को दिखाए, बल्कि वह है जो मंच पर आकर अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा दे और उस पात्र को अपने भीतर जीने दे। अभिनेता का शरीर और उसकी आवाज सिर्फ एक माध्यम है, असली खेल तो उसकी आत्मा की ईमानदारी का है। सत्यदेव दुबे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारतीय कला जगत उनके जिक्र के बिना हमेशा अधूरा रहेगा। वे एक ऐसे फकीर थे जिन्होंने कभी महलों की चाह नहीं की, क्योंकि उनके हिस्से में मंच की वो जादुई रोशनी थी जो इतिहास बदल देती है। उन्होंने सिनेमा को दिग्गज अभिनेता और कालजयी शब्द दिए और हमें सिखाया कि कला कभी मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि समाज को झकझोरने के लिए होती है। तो श्रोताओं, कला कल्लोलिनी में आज इतना ही। अगले भाग में हम आपको फिर ऐसे ही महान शख्सियत से रूबरू कराएंगे। रंगमंच के कबीर फिल्मकार और नाटककार सत्यदेव दुबे जी पर चर्चा आपको पसंद आई होगी। अब समय है आपसे विदा लेने का। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी और मैं था दानिश, और लेखन दीपक नेमा।
1: आपके लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मैंने यानी मनीषा,
0: और मैं दानिश। नमस्कार, नमस्कार।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद का समय बौद्धिक कोलाहल का काल था। अंग्रेजी भाषा के साथ यूरोपीय बुद्धिवाद के प्रचार से भारतवासियों के परंपरागत विचारों को बड़े जोर का धक्का लगा और उनमें से कितने ही लोग गंभीर होकर यह सोचने लगे कि मूर्ति पूजा ठीक है या नहीं, व्रतों और अनुष्ठानों से वास्तविक धर्म का क्या संबंध है, तथा पुराणों में जो विचित्र कथाएं मिलती हैं उनकी सार्थकता क्या है।
1: 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पश्चिमी जड़वाद ने सर उठाया और इस बार उसका आक्रमण ऐसा प्रबल था, अस्त्र ऐसे अमोघ और सहायक ऐसे सबल थे कि भारत की आत्मा को उसके सामने सिर झुका देना पड़ा। और कुछ ही दिनों में हिमालय से कन्याकुमारी तथा पश्चिम से पूरब तक उसकी पताका फहराने लगी।
0: हमारी आँखें इस भौतिक प्रकाश के सामने चौंधिया गईं और हमने अपने प्राचीन तत्व ज्ञान, प्राचीन शास्त्र, प्राचीन समाज व्यवस्था, प्राचीन धर्म और प्राचीन आदर्शों को त्यागना आरंभ कर दिया।
1: इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप समझदार लोगों के मन में चेतना जागी और अनायास ही अपने धर्म में सुधार करने का प्रश्न उनके सामने आ गया। उस समय धर्म ही व्यक्ति और समाज का मूलाधार था, इसके बिना समाज सुधार की कल्पना हो ही नहीं सकती थी। इसीलिए राजा राम मोहन राय ने धर्म संस्कार की ओर ध्यान दिया। सामाजिक कुप्रथाओं पर प्रहार करके समाज सुधार का श्री गणेश भी किया, जो कालांतर में सारे भारत में व्याप्त हो गया।
0: उस काल के समाज सुधारकों में देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, रानाडे, मैडम ब्लावट्स्की, कर्नल अलकाट प्रमुख थे। उसी काल में विवेकानंद का जन्म हुआ था और समाज सुधार और परिवर्तन की हवा में ही वे पले बढ़े।
1: इन सामाजिक आंदोलनों का मुख्य लक्ष्य समाज सुधार था। विधवा विवाह, सती प्रथा का उन्मूलन, सामाजिक कुरीतियों का नाश, जात पात की अवधारणा का बहिष्कार आदि समाज में कुछ बदलाव लाई।
0: कुछ लोग सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। मूर्ति पूजा का बहिष्कार करने का आंदोलन भी चल पड़ा। ये नव पाश्चात्य दर्शन और पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार का फल था। जो कुछ भारतीय या सनातन है उसका बहिष्कार करना उस समय के नव धनाढ्य वर्ग का चलन बन गया था और साधारण जनता हतप्रभ दिग्भ्रमित थी। उसे सही मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं था।
1: इसीलिए हम देखते हैं कि 19वीं सदी में निराकारवादी आंदोलनों का बाहुल्य है। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये सभी आंदोलन हिंदुत्व के उसी रूप को मानते हैं जो निराकारवादी है, जो मूर्ति पूजा के खिलाफ है, जो जात पात को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है।
0: झगड़ा उस समय केवल निराकार और साकार का ही नहीं था, बल्कि विदेशी धर्मोपदेशक हमारे देश में प्रचलित धर्मों से लड़ रहे थे। इस्लाम और हिंदुत्व में भी मत अवरोध था। विज्ञान और बुद्धिवाद के प्रचार से हर जगह खलबली मची हुई थी। प्रत्येक धर्म की दूसरे धर्मों से लड़ाई, धर्म को लेकर भाषण, विवाद और शास्त्रार्थ, ये 19वीं सदी के प्रधान लक्षण थे।
1: 19वीं सदी में भारतीय समाज अनेक कुरीतियों से भरा पड़ा था। स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। विधवाओं पर भयानक कठोर दिनचर्या की पाबंदी थी। सती प्रथा, बहु विवाह प्रथा एवं पर्दा प्रथा के चलते स्त्रियों का जीना दूभर हो रहा था। बाल विवाह के नाम पर हजारों कन्याओं की बलि चढ़ती थी। वे बेजुबान पशुओं की भांति उस जीवन को जीने के लिए मजबूर थीं।
0: स्वामी जी को स्त्रियों का यह अपमान, जाति भेद की कट्टरता तथा धर्मों की आपसी लड़ाई कतई मंजूर नहीं थी। वे कहा करते थे,
2: क्या भारत में कभी सुधारकों की कमी रही है? क्या तुम कभी भारत का इतिहास पढ़ते हो? रामानुज कौन थे, शंकर कौन थे, नानक कौन थे, चैतन्य कौन थे, दादू कौन थे? क्या रामानुज गरीबों की ओर से लापरवाह थे? क्या वे आजीवन इस बात का यत्न नहीं करते रहे कि उनको भी अपने संप्रदाय में सम्मिलित कर लें? क्या उन्होंने मुस्लिमों को अपनी मंडली में मिलाने की कोशिश नहीं की थी? क्या गुरु नानक ने हिंदू मुसलमान दोनों जातियों को मिलाकर एक बनाना नहीं चाहा था? इन सब महापुरुषों ने सुधार के लिए कितने यत्न किए और उनका नाम अभी तक कायम है। वे लोग कटुवादी न थे, उनके मुंह से मीठे वचन ही निकलते थे। वे कभी किसी को गाली नहीं देते थे, किसी की निंदा नहीं करते थे। निसंदेह सामाजिक जीवन के सुधार के इन गुरुतर और महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमने उपेक्षा ही की है और प्राचीनों ने जो मार्ग अपनाया था उससे विमुख हो गए हैं।
1: इस तरह के तमाम प्रश्नों और उलझनों में उनका मन अशांत रहता था। उसी समय उनकी मुलाकात श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई। उस कोलाहलमय युग में वह अविचल और शांत आत्मा कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर मंदिर में बैठे बैठे शांत भाव से साधना करते रहे। उन्होंने भाषण नहीं दिए, अपने मतों के प्रचार के लिए अखबार नहीं निकाला, ना कभी किसी के साथ शास्त्रार्थ में फंसे। रामकृष्ण धर्म के जीते जागते स्वरूप थे।
0: तो फिर परमहंस रामकृष्ण के विचारों का हम विश्वव्यापी प्रचार कैसे देखते हैं? उस एकांत साधक की अनुभूतियां दिग्दिगंत में कैसे फैल गईं?
1: प्रत्येक कृष्ण के साथ किसी अर्जुन का आगमन होता है, प्रत्येक बुद्ध अपने साथ किसी आनंद को ले आते हैं, और जब भी राम का आगमन होता है तब हर बार उनके साथ कोई लक्ष्मण भी पधारते हैं। परमहंस रामकृष्ण को पुरानी दुनिया से जो कुछ कहना था उन्होंने स्वयं कहा, किंतु नई दुनिया में अपना संदेश फैलाने के लिए वे विवेकानंद की आत्मा में प्रविष्ट हो गए। विवेकानंद रामकृष्ण के लक्ष्मण थे, अर्जुन थे, आनंद थे। रामकृष्ण जिए इसलिए कि उन्हें विवेकानंद को तैयार करना था, और विवेकानंद का अवतार ही इसीलिए हुआ था कि वे परमहंस देव के संदेशों का विश्वव्यापी प्रचार करें।
0: स्वामी जी अपनी जाति के आचार व्यवहार, रीति नीति, साहित्य और दर्शन, सामाजिक जीवन, उसके पूर्व काल के महापुरुष और पुनीत भारत भूमि सबको श्रद्धेय सम्मान्य मानते थे। आपने अपने एक भाषण में कहा है,
2: प्यारे देशवासियों, पुनीत आर्यावर्त के बसने वालों, क्या तुम अपनी इस तिरस्करणीय भीरुता से वो स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है? हे भारत निवासी भाइयों, अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री और दमयंती तुम्हारी जाति की ही देवियां हैं। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो, मैं भारतीय हूं, मैं भारत का रहने वाला हूं। हर एक भारतवासी, चाहे वो कोई भी हो, मेरा भाई है। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, गरीब जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। भारतीय मेरा भाई है, भारत मेरा जीवन है, मेरा प्राण है। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। भारत मेरे बचपन का हिंडोला, मेरे यौवन का विलास भवन और बुढ़ापे का बैकुंठ है। हे शंकर, हे धरती माता, मुझे मनुष्य बना, मेरी दुर्बलता दूर कर और मेरी भीरुता का नाश कर।
1: स्वामी जी की शिक्षा का आधार प्रेम और शक्ति है, निर्भीकता उसका प्राण है और आत्मविश्वास उसका धर्म है। उनकी शिक्षा में दुर्बलता और अनुनय विनय के लिए तनिक भी स्थान नहीं था। उनका वेदांत मनुष्य को सांसारिक दुख और क्लेश से बचाने, जीवन संग्राम में वीर की भांति जुटने और मानसिक आध्यात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति की समान रूप से शिक्षा देता है।
0: उनके उपदेशों का सार ये है कि हम स्वजाति और स्वदेश के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें, आत्मबल प्राप्त करें, बलवान और वीर बने, सर्वहारा जातियों को उभारें और उन्हें अपना भाई समझें। जब तक अधिकांश भारतवासी अपने को दीनहीन समझते रहेंगे, भारत में एका और मेल का होना सर्वथा असंभव है।

0: देश की आज की परिस्थिति स्वामी जी के विचारों एवं चिंतन की आवश्यकता को और भी अधिक सिद्ध करती है। आज देश चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ है। देश की सीमाएं आक्रांत हैं। भारत के नंदनवन कश्मीर पर और मुकुट हिमालय पर शत्रु की निगाहें लगी हैं। विदेशी शक्तियां देश में आंतरिक संकट पैदा करने में सचेष्ट हैं। वे देश में अराजकता, हिंसा और अव्यवस्था फैलाने में सक्रिय हैं। दूसरी ओर हमारे देशवासी व्यक्तिगत स्वार्थ, पदलिप्सा, व्यक्तिगत लाभ अथवा अहंकार से ग्रस्त हैं। देशाभिमान से व्यक्तिगत अभिमान अधिक प्रभावी हो रहा है।
1: ये समस्त आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक नेताओं के लिए चुनौती है और निसंदेह स्वामी विवेकानंद जैसी विभूतियों का तपस्वी जीवन तथा उसके उपदेश इस कार्य में मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत सिद्ध होंगे।
0: स्वामी विवेकानंद की प्रतिभा बहुमुखी थी। 40 वर्ष से भी कम आयु तथा लगभग 10 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान वे अपने संपूर्ण जगत और विशेषकर भारत को जो कुछ दे गए वो आगामी अनेक शताब्दियों तक मानवता की धरोहर बनी रहेंगी। धर्म, दर्शन, शिक्षा, संस्कृति, इतिहास, कला, संगीत, साहित्य, विज्ञान, समाज सुधार, अर्थनीति, समाजवाद, नारी जागरण आदि नानाविध विषयों पर स्वामी जी के मौलिक एवं कालजयी विचार उनकी साहित्य में बिखरे पड़े हैं।
1: वस्तुतः अपने जीवन तथा संदेश के माध्यम से उन्होंने विश्व में एक युगांतर उपस्थित किया जिसे पूर्ण रूप से विकसित होने में संभवतः शताब्दियां लग जाएंगी। भारत को यदि जीवित रहना है और प्रगति करते हुए अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त करना है तो अपनी राष्ट्रीय समस्याओं का हल उसे विवेकानंद में ही ढूंढना होगा।
0: राम मोहन, केशव सेन, दयानंद, रानाडे, एनी बेसेंट, रामकृष्ण एवं अन्य चिंतकों तथा सुधारकों ने भारत में जो जमीन तैयार की, विवेकानंद उसमें से पीपल होकर उठे। अभिनव भारत को जो कुछ कहना था वो विवेकानंद के मुख से उत्कीर्ण हुआ। अभिनव भारत को जिस दिशा की ओर जाना था उसका स्पष्ट संकेत विवेकानंद ने दिया। विवेकानंद वो सेतु हैं जिस पर प्राचीन और नवीन भारत परस्पर आलिंगन करते हैं। विवेकानंद वो समुद्र हैं जिसमें धर्म और राजनीति, राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता तथा उपनिषद और विज्ञान सब के सब समाहित होते हैं।
1: यह भारत का परम सौभाग्य था कि उसके इतिहास के संकटपूर्ण काल में उत्तम नेतृत्व एवं पथ प्रदर्शन के लिए ऐसे शक्तिशाली और महान संत उत्पन्न हुए। उनके संवेदनापूर्ण उद्गार हैं।
2: आगामी 50 वर्षों के लिए हमारा केवल एक ही विचार केंद्र होगा और वो है हमारी महान मातृभूमि भारत। दूसरे सब व्यर्थ के देवताओं को तब तक के लिए हमारे मन में लुप्त हो जाने दो। हमारा राष्ट्र पुरुष यही एक देवता है जो जाग रहा है, जिसके हर जगह हाथ हैं, हर जगह पैर हैं, हर जगह कान हैं, जो सब वस्तुओं में व्याप्त है। हम क्यों उन व्यर्थ के देवताओं के पीछे दौड़ें और उस विराट की पूजा क्यों ना करें जिसे हम अपने चारों ओर देख रहे हैं।
1: भारत बहुत काल तक दुर्बल रह चुका है। परिस्थिति की आंधी के थपेड़े खाते हुए बिना लंगर के जहाज की भांति भारतीय जनसाधारण आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास खो बैठा है। उसे जागृत करते हुए स्वामी जी कहते थे,
2: विश्वास, विश्वास अपने आप में विश्वास, विश्वास, विश्वास ईश्वर में विश्वास, यही महानता का रहस्य है।
1: वे पाप को नहीं मानते थे, केवल त्रुटियों को मानते थे। उनकी दृष्टि में यदि कुछ पाप में था तो वह थी दुर्बलता। वे कहते थे कि सत्य बलप्रद है और अहम ब्रह्मास्मि का वेदांतिक सिद्धांत ही सर्वोच्च सत्य एवं परम शक्ति का मूल है, जो सिखाता है कि मैं उस आत्मा से तनिक भी कम नहीं हूँ, जिसे ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना जल भिगा सकता है और ना वायु ही सुखा सकती है।
0: विवेकानंद कहा करते थे कि देश के कल्याण के लिए जनसाधारण का स्तर ऊंचा उठाना परम आवश्यक है। राष्ट्र का निवास गरीबों की झोपड़ियों में है। अगर हमारे कोटि कोटि बंधुगण दरिद्रता और अज्ञान में डूबे रहें, तो हमारी उन्नति कैसे हो सकती है? अपनी विचारधारा को क्रियात्मक रूप देने के लिए उनकी विभिन्न कल्पनाएं थीं। उनमें से एक कल्पना ये थी कि देश भर में ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएं, जहां पहले गरीबों को मौखिक शिक्षा दी जाए, तत्पश्चात कृषि एवं उद्योग की शिक्षा दी जाए और शिल्प कला के शिक्षण के लिए कारखाने खोले जाएं।
1: विवेकानंद पूरे विश्व से अनोखे अनुभवों और आदर्शों की सीख लेकर आए थे, जिनका सार वे भारतवासियों के उत्थान के लिए प्रयोग में लाना चाहते थे। उन्होंने जापान से एक पत्र में लिखा था,
2: सुनता हूं कि यहां जापान में ऐसा विश्वास है कि यदि बालिकाएं अपनी गुड़ियों से पूरे हृदय से स्नेह करें तो उनमें प्राणों का संचार हो जाएगा। हमारे देशवासी समृद्धि के वरदान से वंचित, सौभाग्यहीन, पूर्णता विवेक शून्य, पद दलित, सद्बुमुक्षित, कलह प्रिय और ईर्ष्यालु हो गए हैं। वे अज्ञानता और दीनता के भंवर में फंसकर दिन प्रतिदिन अधिकाधिक पतित होते जा रहे हैं। जापानियों की तरह मेरा भी यह विश्वास है कि यदि कोई भारतीय अपने इन देशवासियों से पूरे दिल से प्रेम कर सके तो भारत पुनः जागृत हो जाए।

कार्य ये देखना है कि वे कहीं दिशा भूल न जाएं। विवेकानंद का विश्वास था कि हमारे युवा भारत की अतीत की धरोहर को और भी समृद्ध कर सकेंगे।

स्वामी विवेकानंद जैसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व को मात्र किसी विशेष जाति या देश की संपत्ति नहीं माना जा सकता। स्वामी जी सार्वभौमिक धर्म तथा विश्व संस्कृति के प्रतीक हैं और उनका उदात्त संदेश संपूर्ण मानवता के लिए है। उनका राष्ट्रवाद आधुनिक काल में भारत द्वारा आत्माभिव्यक्ति के प्रयासों का

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।